जो जुगे जुगो सद पीढ़ी गुरु चलंदी, जो जुग पीढ़ी चले सदगुर की, जिनी गुरमुख नाम ते आया, हर पुरख ना कभी बिनसते जावे, नित देवे चढ़े सुवाया, नानक संत संत हर एको, जप हर हर नाम सुहंदी, हर राम राम मेरे बाबला, फिर मिलतन वेल वधंदी, श्री राग महला पंजवां, शांत एक ओंकार, सतगुर प्रसाद मन प्यारिया जीव मित्रा, गोविंद नाम सुमाले मन प्यारे जी मित्रा, हर निभगे तेरे नाले, संग सगाई हर नाम त्याई, बिरथा कोई न जाए, मन चिंदे से ही फल पावे, चरण कमल चितलाए, जल तल पूरे आपन वारी, घट घट नदर निहाले, नानक सिख दे मन प्रीतम, साध संग प्रम जाले, मन प्यारे जी मित्रा, हर बिन चूड़ पसारे, मन प्यारे जीओ मित्रा, बिरसागर संसारे, चरण कमन कर भोयत करते, सहसा दुख न व्यापे, और पूरा पेटे वडभागी, आड़ पैर प्रभ जापे, आद जुगादी सेवक स्वामी, भगता नाम आधारे, नानक सिख दे मन प्रीतम, पिन हर चूड़ पसारे, मन प्यारे जीव मित्रा, हर लब्दे खेप सवली, मन प्यारे जीव मित्रा, हर दर नेचल मल्ली, हर दर सेवे अलख अपेवे, नेचल या सुनपाया, ते जन्म ना मरण ना आवण जाना, संसार दुख मिटाया, चित्र गुप्त का कागद फारिया, जमदूता कशु न चली, नानक सिख दे मन प्रीतम, हर लदे खेप सवली, मन प्यारे जीव मित्रा, कर संता संग निवासो, मन प्यारे जीव मित्रा, हर नाम जत पर गासो, सिमर स्वामी सुखे गामी, ये सगली कुनिया, पुरबे कुमाए श्री रंग पाए, हर मिले चिरीम शून्या, अंतर बार सरबत रव्या, मन उपजिया विश्वासो, नानक सिख दे मन प्रीतम, कर संता संग निवासो, मन प्यारे जीव मित्रा, हर प्रेम भगत मन लीना, मन प्यारे जीव मित्रा, हर जल मिल जीवे मीना, हर पिया घाने अमृत बाने, सर्व सुखा मन उठे, श्री तर पाए मंगल गाए, यश पुन्नी सदगुर तुठे, लली ने लाए नौंद पाए, नाओ सर्वस ठाकुर दीना, नानक सिख संत समझाई, हर प्रेम भगत मन लीना, श्री राग के शांत महला पंजवा, एक ओंकार, सदगुर प्रसाद दखना, हठ मजाहू मापिरी, पसे क्यों दीदार, संत सरणाई लभणे, नानक प्राण आधार, शंत चरण कमल स्यों प्रीत, रीत संत मन आवे जियो, दुतिया पाओ विपरीत, अनीत दासा ने पावे जियो, दासा ने पावे बिंदर सावे, एक खेन तीर्ज क्यों करे, ना बिहूना तन मन हीना, जल बिल मछली ज्यो मरे, मिल मेरे प्यारे प्राण आधारे, कुण साध संग मिल गावे, नानके स्वामी तार अनुग्रह, मन तन अंत सुमावे, दखना सोहंदड़ो हवठाए, ओए ना दिसे जूझड़ो, खुलड़े कपाट, नानक सतगुर पेड़ ते शंत, तेरे बचन अनूप अपार, संतन आधार, पानी बिचारिये जियो, सिमरत साध गिरास, पूर्ण बिस आस, क्यों मनो बिसारिये जियो, क्यों मनो बिसारिये, निभख नहीं टारिये, गुणवंत प्राण हमारे, मन बांशित फल देत गए स्वामी, जी की बिरथा सारे, अनाथ के नाथे,
سرب کے ساتھ جب جوئے جمن ہاری ہے نارگ کی بے ننتی پرپ ہے کرپا کر پوج لتاری ہے ٹکنا توڑی مجن ساد کے سائی تھی کرپال لدے ہبے تھوکڑے نانک ہر تن مار

सुनयोग शांत प्रेम ठगोरी पाए रिहाए गोविंद मन मोया जियो संतन कै प्रसाद आगाध कंठे लग सोया जियो हर कंठ लग सोया दो सब जोया भगत लखेण तर वस पए मन सरसुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सा मिट गए सखी मंगलो गाया यश पुजाया बौड़ ना माया होया कर गए लीने नानक प्रप्यारे संसार सागर नहीं पोया डकना साई नाम अमोल कीम ना कोई जान दो जिन्ना पागम थागे से नानक हरंग मान दो।

हर आपे परम पुलाएगा, हर आपे ही मत दे, गुरमुखा मन प्रकाश है, से विरले के ही के, हों बलेगारी तिन कौ, जिन घर पाया गुरमते, जन नानक कमल प्रकाशिया, मन हर घर मुठड़ा है, मन हर घर जपन करे, हर गुर सुननाई पज पो जिंदु, साब केल विख दुख पर हरे हरहाओ, धड़कड़ रमैया मन मसे, क्यों पाईए कित पत, गुर पूरा सदगुर पेटीए, हर आयव से मन चेत, मैं तर नाम आधार गए,

लिख ले हो सदा साहिब के रंग रहे कहू न तूड़ स्नेह कलम सजनी जाए सी लिखिया पी ना ले जाए नानक साहिब प्रीत ना जाए सी जो तुर छोडी सच्चे पाए मोहला तीजा नदरी आमदा नाल न चलई वेखो को व्यो पाए सतगुर सच दृढ़ाया सच रहो लिवलाए नानक सबदी सच है करमी पल्ले पाए पौड़ी हर अंतर बार एक तू तू जाने भेद जो कीते सो हर जानदा मेरे मन हर चेत सो डरे जे पाप कमांदा धर्मी विगसेत तू सच्चा आप न्याओ सच तां डरिए केत जिन्ना नानक सच पछाणिया से सच रलेत सलोक महला तीजा कलम जलो सण मसवाणीए कागद पीब जल जाओ लिखन वाला जल बलो जिन लिखिया दूजा पाओ नानक पूर्व लिखिया कमावना अवरण करना जाए महला तीजा होर कूड़ पढ़ना कूड़ बोलना माया नाल प्यार नानक विणनावे को सिर नहीं पढ़ पढ़ होए खुआर पौड़ी हर की वड्याई वड्डी है हर कीर्तन हर का हर की वड्याई वड्डी है।

मीना गए आपे आपे ही आप जाल तू आपे जाल बताएंदा आपे विच से बाल तू आपे कमल अलिप्त है सह हथा विच गुलाल तू आपे मुक्त कराएंदा एक निमक कड़ी कर ख्याल हर तुद हो बार किश नहीं गुरसबदी वेख निहाल सलोक महला तीजा हुक्म न जाने बहुता रोवे अंदर धोखा नींद न सोवे जे तन खसमें चले रजाई दर कर सोभा महल बुलाई नानक करमी ए मत पाई गुर प्रसादी सच समाई महला तीजा मानमुख ना विहूणिया रंग कसुंबा देख ना भुल इसका रंग दिन थोड़िया छोछा इसदा मुल दूजे लगे पचमुए मूर्ख अंध गवार बिष्टा अंदर कीड से पए पते वार हो वार नानक नाम रते से रंगोले गुर के सह सुपाए भक्ति रंग न उतरे सहजे रहे सुमाए पौड़ी सिष्ट उपाई सब तुद आपे रिजक संभाया एक वल छल करके खाम दे मोह कूड़ सत तिनि ढाया तुद आपे पावे सो करे तुद ओते कम ओए लाया एक ना सच बुझायोन तिना अतुट पंडार देवाया हर चेत खाए तिना सफल है अचेता हथ तड़ाया सलोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित बेद वखाण है माया मोह सवाए दूजे पाए हा नाम सारिया मन मूर्ख मिले सजाए जिन जियो पिंड दिता इस कबहू ना चेत जो दिंदा रिजक समाहे जम का फहा गलो ना कटिए फिर आवे जाए मानमुख किशु ना सूझे अंधले पूर्व लिखिया कमाए पूरे भाग सतगुर मिले सुखदाता नाम से मन आए सुख माने सुख पहनना सुखे सुख विखाए नानक सो नाओ मनो नाम सारी है जित दर सच्चे सोभा पाए महला तीजा सतगुर से सुख पाया

जो मिलया हर दीवान सो सो सबनी दीवानी मिलया जिथे ओ जाए इथे ओ सुरखुरु ओस कह मुझ डिठ सब पापी तरिया ओस अंतर नाम निधान है नामो परवरिया नाओ पूजिए नाओ मनिए नाए केलवक सब हिरिया जिनी नाम त्याया एक मान एक चित से अस्थिर जग रहया। सलोक महला तीजा आत्मा देव पूजिए गुर के सह सुपाए आत्मे नू आत्मे दी प्रतीत होए ता कर ही परचा पाए आत्मा अडोल ना डोलई गुर के पाए सुपाए गुर विण सहज ना आवई लोभ मैल ना विचों जाए खिन पाल हर ना मन वसे तब अड़सर तीर्थ नहाए सच्चे मैल ना लगई मन लागे दूजे पाए धोती मूल ना उतरे जे अड़सर तीर्थ नहाए मन मुख कर्म करे अहंकारी सब दुखो दुख कमाए नानक मैला उजल तांथिए जा सतगुर माए सुमाए। महला तीजा मनमुख लोग समझाइए कदो समझाया जाए मनमुख रलाया ना रले पया किरत फराए लिव ताज दो रहा है हुक्मी कार कुमाए गुरमुख अपना मन मारिया सब कसवटी लाए मन ही नाल झगड़ा मन ही नाल सत मन ही मंज सुमाए मन जो इसे सो लै सचे सब सो पाए अमृत नाम सद पुंचिए गुरमुख कार कुमाए विण मने जे होरी नाल लुजना जासी जन्म गवाए मन मुखी मन हड़हारिया कूड़क सत कुमाए गुर प्रसादी मन जने हर सेती लिवलाए नानक गुरमुख सच कमावे मनमुख आवे जाए पौड़ी हर के संत सुनो जन पाई हर सतगुर की एक साखी जिस तुर भाग होवे मुख मस्तक तिन जन लै हिरदय राखी हर अमृत कथा श्रेष्ठ उत्तम गुरबचनी सहजे चाखी ते पया प्रकाश मिटिया अंधियारा ज्यो सूरज रहन के राखी अदिष्टया गोचर अलख निरंजन तो देखिया गुरमुख आखी। सलोक महला तीजा सतगुर से वे अपना सो सिर लेखे लाए विचों आप गवाए कै रहन सच लिवलाए सतगुर जिनी ना सेवे हो तिना बिरथा जन्म गवाए नानक जोत पावे सो करे ऐना किशु ना जाए। महला तीजा मन वेकारी वेड़िया वेकारा कर्म कुमाए दूजे पाए अज्ञानी पूज दे दरगह मिले सजाए आत्मा दे ओ पूजिए बिन सतगुर बूझ न पाए जब तब संजम भाणा सतगुरु का करमी पल्ले पाए नानक सेवा सुरत कमावनी जो हर भावे सो थाए पाए पौड़ी हर हर नाम जपो मन मेरे जित सदा सुख होवे दिन राती हर हर नाम जपो मन मेरे जित सिमरत सब केलख पाप लगाती हर हर नाम जपो मन मेरे जित दाल दे दुख भुख सब लहे जाती हर हर नाम जपो मन मेरे मुख गुरमुख प्रीत लगाती जित मुख भाग लिखिया तुर साचे हर तित मुख नाम जपाती। सलोक महला तीजा सतगुर जिनी न सेवेओ शब्द न कीतो विचार अंतर ज्ञान न आयो मृतक है संसार लख चौरासी फेर पया मर जमे होए कुवार सतगुर की सेवा सो करे जिसनु आप कराए सोए सतगुर विच नाम निधान है कर्म प्राप्त होए सच रते गुर शब्द स्यो तिन सच्ची सदा लिव होए नानक जिसनु मेले ना विछड़े सह सुमावे सोए। महला तीजा सो भगवती जो भगवंत जाने गुर प्रसाद दी आप शाणे ताप तराख इकत कर आने जीवत मरे हर नाम खाणे ऐसा भगवती उत्तम होए नानक सच समावे सोए। महला तीजा अंतर कपट भगवती खाए पाखंड पार ब्रह्म कदे न पाए पर निंदा करे अंतर मल लाए बार मल धोवे मन की झूठ न जाए सत संग स्यो बाद रचाए अन दिन दुखिया दूजे पाए रचाए हर नाम न चेतै बहु कर्म कमाए पूर्व लिखिया सो मिटना न जाए नानक बिन सतगुर सेवे मोख न पाए पौड़ी सतगुर जिनी त्याया से करन स्वाही सतगुर जिनी त्याया से तृप्त अगाही सतगुर जिनी त्याया तेन जम डर नाही जिन को हुआ कृपाल हर से सतगुर पैरी पाही तेन ऐथे ओथे मुख उजले हर दरगह पै दे जाही। सलोक महला दूजा जो सिर साई नानवे सो सिर दीजे डार नानक
جس پنجر میں برہا نہیں،

जननी जानत सुध बड़ा होत है, इतना को ना जाने जे दिन दिन अवद कटत है। मोर मोर कर अधिक लागत तार, पेगत ही जामराव हसे। ऐसा तय जग परमलाया, ऐसे बूझे जम होया गए माया रघाव। कैद कबीर छोड़ बिखिया रस, इत संगत ने चो मरना। रमैया जपो प्राणी अंत जीवन बाणी, एन वेद पवसागर तरना। जत पावे ता लागे पाओ, परम पुलाव चों जाए। उपजे सहज ज्ञान मत जागे, गुर प्रसाद अंतर लिव लागे। इत संगत ना ही मरना, हों पछाण ता खसमें मिलना। रहाओ दूजा श्री राग त्रिलोचन का, माया मोह मन अग लड़ा प्राणी। जरा मरण पो मिसर गया, कुटंब देख विसे कमला ज्यों। पर कर जोग है कपट नरा, दूड़ा आयोह जमह तना। तिन अग लड़े में रहन न जाए, कोई कोई साजन आए कहे। मिल मेरे बीठला ले भाड़ी वलाए, मिल मेरे रमैया मैं ले छड़ाए। रघाव अनक अनक भोग राज बिसरे प्राणी, संसार सागर पे अमर भया। माया मूठा चेत सुनाही, जन्म गवायो आलसिया। बिगम कोर पंथ चलना प्राणी, रवस तय ना प्रवेशन। माया मो तब बिसर गया, जां तजियले संसारं। आज मेरे मन प्रगट पया है, पेखियले तमराओ। तय कर दल करन महाबली, तिन आग लड़े मैं रहन ना जाए। जे को मुंह उपदेश करत है, ता वण त्रिण रतड़ा नारायण। ऐ जी तू आपे सबके जानदा, बदत त्रिलोचन रामैया। श्री राग भगत कबीर जियो का, अचरज एक सुनो रे पंडिया। आप किस कहन ना जाई, थोड़ नाल गणक दर्बजन मोह। तिर पौन मेख लीलाई, राजा राम अनहद किंगुरी बाजे। जाकी दिष्ट नाद लिव लागे रखाओ, पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया। तनक कलश एक पाया, जमें तार चोया त निर्मल। रसमय रसन चोआया, ए जो बाग अनूप बनी है। पवन प्याला साजया, तीन पवन में एको जोगी। कहो कमन है राजा, ऐसे गण प्रगटिया पुरखोत्तम। कहो कबीर रंग रत और दुनिसा परम पुलानी। मन राम रसायन माता।

प्रसाद हर हर नाम में हर मन पाया, वडभागी हर नाम ते आया, गुरपूरे हर नाम सिद्ध पाई, ओ विरला गुरमत चल जियो, मैं हर हर खच लया बन पल्ले, मेरा प्राण सकाई सदा नाल चले, गुरपूरे हर नाम दड़ाया, हर नित हर तन पल्ले जियो, हर हर सज्जन मेरा प्रीत मराया, कोई आन मिलावे मेरे प्राण जीवाया, हो रह न सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वह वह चले जियो, सगुर मित्र मेरा बाल सकाई, हो रह न सका बिन देखे मेरी माई, हर जियो कृपा करो गुर मिलो, जन नानक हर तन पल्ले जियो, माझ महला चौथा मधुसूदन मेरे मंत्र प्राणा, हौ हर बिन दूजा अवर न जाना, कोई सज्जन संत मिले वडभागी, मैं हर प्रप्यारा दसे जियो, हौ मन तन खोजी पाल पाल आई, त्यो प्यारा प्रीत मिले मेरी माई, मेल सत संगत खोज दसाई, विज संगत हर प्रावस्ते जियो, मेरा प्यारा प्रीतम सदगुर रखवाला, हम बारक दीन करो प्रतपाला, मेरा मात पिता गुर सदगुर पूरा, गुर जल मिल कमल विकसे जियो, मैं बिन गुर देखे नींदन आवे, मेरे मन तन वेदन गुर बेहो लगावे, हर घर दया करो गुर मिलो, जन नानक गुर मिल रसे जियो, माझ महला चौथा, हर गुण पढ़िए हर

मेरा जियो पिंड सबरास तुम्हारी, तेरा जोर गोपाला जियो सदा सदा तू है सुखदाई, निव निव लागा तेरी पाई तारक मावा जित पावा, जा तू दे दयाला जियो प्रभ तुम ते लेना, तू मेरा गहना जो तू दे सोई सुख सहना, जिथे रखे पै कुंट साई तू सबना के प्रतपाला जियो, सिमर सिमर नांग सो पाया आड़ पैर तेरे गुण गाया, सगल मनोरथ पूर्ण होए कदे न होए दुखाला जियो, माझ महला पंजवा पार ब्रह्म प्रमेघ बिठाया, जल थल महियल दहत वरसाया, सांध पई बूझी सब तृष्णा अंध पया सब ठाई जियो, सुख दाता दुख पंजन हारा आपे बख्श करे जी सारा, अपने कीते नूं आप प्रतपाले

परम पुहलाणी अग्ञानी अंधा मगना जाने फेर फेर आमन जामने आ गुर सेवा ते सदा सुख पाया होमे मेरा ठाकुर खाया गुर साखी मिटिया अंधियारा बजर कपाट खुलामने आ होमे मार मन नमसाया गुर चरणी सदा चित लाया गुर कृपा ते मन तन निर्मल निर्मल नाम ध्यावने आ जीवन मरना सब तुदे ताई जिस बख्शे ते दे वडियाई नानक नाम ध्याए सदा तू जमन मरण सवारने आ माझ महला तीजा मेरा प्रभ निर्मल अगम अपारा बिन तकड़ी तो लै संसारा गुरमुख होवे सोई बूझे गुण कै गुणी समावने आ होवारी जीववारी हर का नाम मन वसावने आ जो सच लागे से अनदन जागे दर सच्चे सोभा पावने आ रहाओ आ सुने ते आपे वेख जिसनु नदर करे सोई जन लेख आपे लाए लय सो लागे गुरमुख सच कमावने आ जिस आप भुलाए सो किथे खत पाए पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाए जिन सतगुर मिलिया से बड़भागी

जीभे बाजो बोलना क्यों जीवत मरना नानक हुकुम पछाण कै तौ खसमे मिलना महला दूजा जिसे सुनिए जानिए साओ न पाया जाए रोला टुंडा अंधला क्यों गल लगे ताए भय के चरण कर भाव के लोइन सुरत करे नानक कह सियाणिए इव कंत मिलावा होए पौड़ी सदा सदा तू एक है तो दूजा खेल रचाया हौम में गर्भ उपाय कर लोभ अंतर जनता पाया क्यों पावे त्यों रख तू सब करे तेरा कराया।

जनकी उपमा तुझे वडाइया रहाओ। मंदर कर आनंद हर, हर जस मन भावे, सब समीठे मुख लगे जा हर गुण गावे। हर जन परिवार सुधार है, एक ही कुली सब जगत छिड़ावे। जो किया सो हर किया, हर की वडियाई, हर जी तेरे तू वरतदा, हर पूज कराई, हर भगत भंडार लहाएंदा, आपे वरताई लाला।

आओ जो हमरे मन चित है स्वामी साबिद तुम घर जानो मेरी अन दिन नाम जपी सुख पाई निज जीवा आस घर तेरी गौर सतगुर दाते पंत बताया हर मिलिया आयपा मेरी अन दिन अंध पया बड़पागी सब आस पूजी जन केरी जगन्नाथ जगदीशर करते सब वस गत गहर केरी जन नानक सरनांग ते आए हर रखो पए जन केरी गौड़ी पूर बी महला चौथा प्यो मनुआ खिन्ना टिके बहु रंगी दहे दहे चल चल हांडे गुर पूरा पाया वडभागी हर मंत्र दिया मन ठांडे राम हम सतगुर लाले कांडे रखाओ हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बहु सांडे पर विकार पुन बहु किया हो दुत्तर पार पराडे जिन को प्रीत हृदय हर नाही तिन कूरे गंडन गांडे ज्यों पानी कागद बिनस जात है तो मन गर्भ गलाडे हम जाने कछु न जाने आखे ज्यो हारा खेतो ठांडे हम पूर चू गुर कृपा तारो या नानक उतरे कांडे गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बो परिया मिल साधु खंडल खंडा है पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मान हर ले मंडल मंडा है पर साधु

हर आपे कान उपायदा मेरे गोविंदा, हर आपे गोपी खोजी जियो, हर आपे सब कड़ भोगदा मेरे गोविंदा, आपे रसिया भोगी जियो, हर सो जानना भुली।

जियो, गुर सबदी पाई गए हर प्रीत मराओ जियो, वडभागी जपनाओ जियो, मेरे मन तन वडड़ी गोविंद प्रव्यासा जियो, हर मेलो संत जियो, गोविंद प्रापासा जियो, गुरमत नाम सदा प्रगासा जियो, जन नानक पूरेड़ी मन आसा जियो, गौड़ी माज मगला चौथा, मेरा बिरगी ना मिले ता जीवा जियो, मन अंदर अमृत गुरमत कर लीवा जियो, मान हर अंगरतड़ा हर सदा पीवा जियो, हर पायड़ा मन जीवा जियो, मेरे मन तन प्रेम लगा कर बाण जियो, मेरा प्रीत मित्र कर पुरख सुजान जियो, गुरमेले संत हर सुड़ सुजान जियो, हौ ना मिटो कुरबान जियो, हौ हर हर सज्जन हर मीत साई जियो, हर दसो संतो जी।

चाखे सार जागत होए रहे बिस्मार अमर तरना पियो प्यारी हे रसराती हुए तृप्तारी हरहाओ हे देवे तू राम गुण गाओ निमख निमख हार हर हर त्याओ आन सुनिए कत हूं जाइये सा संत बड़ भागी पाईये आड़ पर जेवे आराध पार ब्रह्म ठाकुर आगाध ईगा उवा सदा सुहेली हर गुण गावत रसन अमोली अनंत मोली फल फुल पेडे इरस राती बोर न छोडे आन ना रस कस लवे न लाई कहो नानक पुर पय है सहाई गौड़ी ग्वारे री मोहल्ला पंजवा मन मंदिर तन सजी बार एसी मध्य बस्ते पार एसी पीतर सुनी साहो तन व्यापारी जाका उआ विसाहो नाम रतन को ब्योहारी अमृत

तू है मेरा गहना, तुझ निप न जाई रहना। तू मेरे लालन, तू मेरे प्राण, तू मेरे साहेब, तू मेरे खान। रहाओ जो तुम राखो तिवगी रहना, जो तुम कहो तोई मुए करना। जय पेखो ता तू बसना, निरपो नाज पोतरा रसना। तू मेरी नवर तू पंडार, रंग रसा तू मने आधार। तू मेरी शोभा तुम संग रचिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया। मन तन अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुर ते पाया। सा गुर ते दृढ़िया एक एक है, नानक दास हर हर हर टेक है। गौड़ी गुआरे री मोहल्ला पनवा, व्याप्त हर सोग विस्तार। व्याप्त सुरग नरक अवतार, व्याप्त तन निरतन पेख शोभा। मूल व्याधि व्याप्त लोभा, माया व्याप्त बहु प्रकारी। संजीवे प्र ओढ़ तुम्हारी रघाओ। व्याप्त अंगबुद का माता, व्याप्त पुत्र कलत्र संगराता। व्याध हस्त कोड़े अर बस्ता, व्याप्त रूप जोवन मल मस्ता। व्याप्त भूम रंग अरंगा, व्याप्त गीत ना सुन संगा। व्याप्त सेज महल सीगार, पंच दूत व्याप्त अंधियार। व्याप्त कर्म करे हो फासा, व्याप्त ग्रस्त व्याप्त उदासा। आचार व्यवहार व्याप्त ए जात, सब व्याप्त बिना रंग रात। संतन के बंधन काटे हर राय, ताको खां व्यापे माए। कहो नानक जन तूर संत पाई, ताके निटन आवे माई। गौड़ी ग्वारे री मोहल्ला पंजवा, नैनो नींद हर दृट विकार। श्रमण सोए सुनंद विचार, रसना सोई लो मीठे साध। मन सोया माया विस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रहे। साव तवस्त को अपनी लय रहाओ, सकल सहेली अपने रसमाती। गए अपने की खबर न जाती, मुस्तनहार पंच बटवारे। तूने नगर परे ठगहारे, उनते राखे बाप न माई। उनते राखे मीत न पाई, सर्व सियाणप ना ओए रहते। साध संग ओए दुष्टवास होते, हर कृपा मुझ सारंग पान। संतन तूर सर्वनधान, साध पूजनी सदगुर संग।

मिटे कलेस सुखी हो रही है। ऐसा दाता सतगुर कहिए, तो सुख दाता जे नाम जो पावे, हर कृपा ते संग मिलावे, रहाओ जिस होए दयाल आप मिलावे, सर्वन दान गुरु ते पावे, आप जग मिटे आमन जाना, साध के संग पार ब्रह्म पछाण।

चरण हृदय विसाए, दुख दुश्मन तेरी हते बलाए, गुर का शब्द तेरे संग सहाय, दयाल पय सगले जी पाई, गुर पूरे जब कृपा करी, पंत नानक मेरी पूरी परी, गौड़ी महला पनवा, अनकरसा खाए जैसे टोर, मुँह की जेवरी बद चोर, मृतक दे सासंग बिहुना, आत जात जोनी दुखी ना रखाओ, अनक बस्त्र सुंदर पहराया, जो डरना खेत मह डराया, सगल शरीर आव सब काम, निफुल मान को जपे नीना, कहो नानक जा को पय दयाला, सासंग मल परे गोपाला, गौड़ी महला पंजवा, कल कलेश गुर शब्द निवारे, आमन जान रहे सुसारे, है बिन से निरपो हर त्याया, सा संघर के गुण गाया रहाओ, चरण कबल अंतर तारे, अग्न सागर गुर पारे उतारे, बूढ़ जात पूरे गुर काढे, जन्म जन्म के टूटे गांडे, कहो नानक ते गुर बलिहारी, जिस पेड़ तगत पई हमारी, गौड़ी महला पंजवा, सा संगता की सरणी परहो, मंतन अपना आगे तरहो, अमृत नाम पीवो मेरे पाई, तेमर सिमर सब तत् बुझाई, रहाओ तज अपमान जन मरण निवार हो, हर के दास के चरण नमस्कार हो, सास सास प्रामणे समाले, तो तन संचो जो चाले नाले, जिसे प्राप्त जिस मस्तक भाग, कहो नानक ताकि चरणी लाग, गौड़ी महला पनवा, तुके हरे किए खिन माहे, अमर दृष्ट संत जीवाए, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेव को दीनी अपनी सेव, हरहाओ मिड़गी चिंत पुनी मन आसा, करी दया स्व गुर गुणतासा, दुख नाठे सुख आए सुमाए, तील ना परीजा गुर फुरमाए।

संयोग जित भेटे पार ब्रह्म निर्जोग ओ बेला को हो बल जाओ चित मेरा मन जपे हर नाओ रहाओ सफल मुहूर्त सबल ओ करी जित रसना उतरे हर।

जामी पार ब्रह्म पूर्ण जन ओट तेरी शरण उधरे जन कोट रखाओ जेते जीते ते सब तेरे तुमरी कृपा ते सूह कनेरे जुगज वरते सब तेरा पाणा हुगम बूझे सो सच समाणा हर कृपा दीजे प्रदान नानक सिमरे नाम निधान गौड़ी महला पंजवा ताका दिस पाई गे वडभागी जाकी राम नाम लिवलागी जाके हर वसिया मनमाही ताको दुख सुपने पी नाही हरहाओ सरबन धन राखे जनमागे ताके संग केल विख दुख जाहे जनकी महिमा कसी न जाए पार ब्रह्म जन रहया सुमाए हर कृपा प्रभु बिनो सुनीजे दास की तूर नान को दीजे गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत तेरी जाए बलाए सर्व कल्याण वसे मने आए

मिल नानखर अंतर जामी गौड़ी मोहल्ला पनवा आड़ पर संगी पटवारे कर कृपा प्रलय निवारे ऐसा हार सरमो सब कोय सर्वकला पूर्ण प्रसोए रहाओ महा तप्त सागर संसार प्रखिर में पार उतारन हार अनक बंधन तोरे नहीं जाहे सिमरत नाम मुक्त फल पाहे उगत सियानप इस्ते कशनाहे हर कृपा नान गुण गाहे गौड़ी मोहल्ला पनवा थाती पाई हर को नाम बिचर संसार पूर्ण सब काम वड़ भागी हर कीर्तन गाई है पार ब्रह्म तू देता पाई है रहाओ हर के चरण हृदय उतार पाल सागर चढ़ उतरे पार साधु संग करो सब कोय सदा कल्याण फिर दुख न होए।

सधी सोपाया मया करी पूर्ण हराया रहाओ। कहो नानक जाके पूरे पाग हर हर नाम अस्त्र सुहाग। गौड़ी मोहल्ला पनवा धोती खोल विछाए हेठ गर्द वांगू लागे पेठ। बिनकर तूती मुक्त न पाई है मुद पदार्थ नाम त्याई है रहाओ। पूजा तिलक करत इस नाना

कवन गुण प्राण पद मिलो मेरी माई रहाओ रूप हीन बुद्ध बलहीनी मोए परदेसन दूर ते आई नाहिन दर्बन जो बन माती मोए नाद की करो समाई खोजत खोजत पई बैरागन प्राप्त दर्शन कौ फिर तुसाई दीन दयाल कृपाल प्रभु नानक सा संग मेरे जल बुझाई गौड़ी महला पंजवा प्रभ मिलबे को प्रीत मन लागी पाए लगो मुझे करो बेनती को संत मिले बड़ भागी रखाओ मन अर्पो तन राखो आगे मन की मत मुझे सगल त्यागी जो प्रभ की हर कथा सुनावे अन दिन फिरो पिछे वैरागी पूर्व कर्म अंकुर जा प्रगटे भेट्यो पुरख रसक बैरागी मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी गौड़ी महला पंजवा निकसरे पंखी सिमर हर पांख मिल साधु शरण गौ पूर्ण राम रतन हीरे संग राख रखाओ प्राम की कोई जनारज पंकज आद तीखेण मोह की बात ताटन हार जत गुरु गोविंद चरण कमल ताके करो निवास हर कृपा गोविंद प्राप्रीतम दीना ना सुनो अरदास कर गलो नानक के स्वामी जियो पिंड सब तुम रीरास गौड़ी महला पंजवा हर पेखन को सिमरत मन मेरा आस प्यासी चितवो दिन रहनी है कोई संत मिला वे नेरा रहाओ सेवा करो दा दासन की अनक पांत जे करो निहोरा तुला तार तोले सो सगले बिन घर दर्स सबो गी तोरा संत प्रसाद गाये गुण सागर जन्म जन्म को जात बहोरा आंध सूख पेड़ हर नानक जन्म कृतार्थ सबल सवेरा राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद किन बद मिले गुसाई मेरे राम राय कोई ऐसा संत सह सुखदाता मुई मार्ग दे बताई रखाओ अंतर अलख न जाई लखिया तिज पड़दा हो मैं पाई माया मुए सब जग सोया तो परम कहो क्यों जाई एका संगत एक गृह बसते मिल बात न करते पाई एक बदन बज दुहेले ओ बसते अगो त्रिठाई जिसका गृह दिन दी आताला कुंजी गुर सो पाई आन क्यों पाप करे ही नहीं पावे बिन सदगुर शरणाई जिनके बंधन काटे सदगुर तिन सा संग तिलवलाई पंज ना मिल मंगल गाया हर नानक भेद ना पाई मेरे राम राय इन बिद मिले गुसाई सहज पया प्रमुखिन में नाठा मिले ज्योति जो समाई रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा ऐसो परचो पायो करी कृपा दयाल बीठले सतगुरु मुझे बतायो रहाओ जात का देखो तात तात तुम ही मुझे यो विश्वास हो आयो कह पे करो अरदास बेनती जो सुन तो है रग रायो ले सहसा बंधन गुर तोरे ता सदा सहसो पायो होना सा सोई फुन होसी तुद का दिखायो खंड ब्रह्मांड का एक कोठाना गुर पर्दा खोल दिखायो नौ निध नाम दान इकठाई तो बार कैठे जायो एक कनक अनक पांसा जी बहु प्रकार जायो कहो नानक परम गुर खोई है इव तत्ते तत् मिलायो गौड़ी महला पंजवा औध कटे दिन सरणारे मान गुरमिल का सवारे रखाओ करो बेनंती सुन मेरे मीता संत पहल की बेला ईहा खाड़ चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला एव संसार विकार से मैं तरे ओ ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पी आए हर रस अकथ कथा तिन जानी जाको आए सोई विहाजो हर गुरते मने बसेरा निज कर मैल पौसु सहजे बौर ना होए गो फेरा अंतर जामी पुरख बेधाते सरदा मन की पूरे नानक दास यही सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे गौड़ी महला पंजवा राख पिता प्रा मेरे मुझे निर्गुण सब गुण तेरे रहाओ पंच बिखादी एक गरीबा रखो रखन हारे खेद करे अर बो संतावे आयो शरण तुहारे कर कर हारो अनक बो पाती छोड़े कतहु नाही एक बासुनता की ओटा सा संग मन जाही कर कृपा संत मिले मुए तिनते तीर जपाया संती मन दियो मुए निरपो गुर का शब्द कमाया जीत ले ओए महा बिखादी सह सोहेली बाणी कहो नानक मन पया प्रगासा पाया पद निर्वाणी गौड़ी महला पंजवा ओ अविनाशी राया निरपो संग तुम्हारे बसते यो डरन कहां ते आया रखाओ एक मैल तू होए अफारो।

अनक बंधन माया परमत परमाया गुण निध नहीं गाया मान बिखे ही मैं लुजी है जाको रे कृपा करे जीवत सोई मरे सा

प्रेम संजम में रहता, इनका आड़ न पाया। आगे चलन और है पाई, ऊहा कामना आया। तीर्थ नहाए और तरणी प्रमता, आगे ठौर न पावे, ऊहा कामना आवे। ए विद ओ लोग नहीं पति आवे, चतर वेद मुख बचनी उच्चर, आगे महल न पाई है। बूझे नाही एक सुधाखर, ओ सगली झाख चुखाई है। नानक कहतो यो विचार, जे कमावे सो पार ग्रामी। गुर सेवो हर नाम त्यावो, जगो मनो गुमानी। गौड़ी माला महला पंजवा, माधो हर हर हर मोह कही है। हम ते कछु न हो वै स्वामी, ज्यो राखो त्यों रही है रहाओ। क्या कछ करे के करने हारा, क्या इस हाथ बिचारे। जित तुम लाभ हो तित ही लागा, पूर्ण खस

मित्र सब पदार्थ सब भला सर्व गुणा जिस माहे क्यों गोविंद मनो मसारीए जिस सिमरत दुख जाहे जिस लड़ लगे है जीवीए भवजल पईए पार मिल साधु संग उधार होए।

साधो यो मन गयो न जाई, चंचल तृष्णा संग बस्त है, या ते थिर न रहाई, रहाओ कठन क्रोध कट ही के पीतर, जे शुद्ध सब सराई, रतन ज्ञान सब को हर लीना, तासु कछना बसाई, जोगी जतन करत सब हारे, गुनी रहे गुन गाई, जन नानक हर पय दयाला, तौ सब विद बन आई, गौड़ी महला नामा, साधो गोविंद के गुन गावो, मानस जन्म अमोलक पायो, बिरथा काय गवाव और हाओ, पतत पुनीत दीन बंद हर, शरण ताए तुम्हें आओ, गाय को त्रास मिट्यो जे सिमरत, तुम काहे बिसरावो, ताज अभमान मोह माया फोन, भजन राम चित ला को माई, उल्लेओ मन समझाए, वेद पुराण साल मग सुनकर, निमखन हर गुण गावे रखाओ, दुर्लभ दे पाए मांस की, बिरथा जन्म सिरावे, माया मोह महासंकट बान, तास्यो रुच उपजावे, अंतर बाहर सदा संग प्रभ, तास्यो निहो न लावे, नानक मुक्त ताए तुम मानो, जे कड़ राम सुमावे, गौड़ी महला नावा, साधो राम शरण बिसरामा, वेद पुराण पढ़े को ए गुण, सिमरे।

खेमा गई ब्रतशील संतोखं, रोग न व्यापे ना जम दोखं, मुक्त पय प्ररूप न रेखं, योगी कौ कैसा डर होय, रोग बिरख गृह

वेद पुराण पढ़े सुन थाटा, बिन रस राते मन भोर नाटा, ज्यो चातरक जल प्रेम प्यासा, ज्यो मीना जल भाए उलासा, नानक हरस पी त्रिपतासा, गौड़ी महला पहला, हट कर मरे ना लेखे पावे, वेस करे बो पसम लगावे, नाम सार बोर पछतावे, तू मन हर जियो तू मन सूख, नाम सार सह जम दू।

से मुकाम सा मरे संचे माया दाम मैं तन दीजे हर अमृत नाम रैयत मैर मुकदम सिकदार निचल कोई ना दिसे संसार अफर काल कूड़ सिर मार निचल एक सच्चा ससोई जिन कर साजी तिने सब गोई ओ गुरमुख जापे तां पद होई काजी सेख पेह फकीरा वड्डे कहावे होमे तन पीरा काल ना छोड़े बिन सतगुर की तीरा काल जल जेवा अरनैणी कानी काल सुने बिखबैणी बिन शब्दे मूठे दिन रैणी हिरदे साच वसे हरनाए काल ना जोए सके गुण गाए नानक गुरमुख सब सुमाए गौड़ी महला पहला बोले साज मिथ्या नीराई चाले गुरमुख हुक मर जाई रहे अतीत सच्चे सरनाई सत कर बैसे काल ना जोह मनमुख को आवत जावत दुख मोह रहाओ आप्यो पियो अकथ कथ रहिए निज कर बैस सहज कर लइए हस माते उस कहिए गुरमत चाल निचल नहीं डोले गुरमत साच सहज कर बोले पीवे अमृत तत विरोले सतगुर देखिया दिखिया लीनी मन तन अर्प्यो अंतरगत कीनी गत मित पाई आत्म चीनी भोजन नाम निरंजन सार परमहंस सजो त्यो पार जय देखो है एक अंकार रहे निरालम एक असर करणी

पद पाईए ना मने सुख होए सगुर ते नाम पाईए धर्म मिले प्रसोए सगुर ते जो मोह फेरे ओए परम दे ना टिकन तरत असमान ना चलई विच विष्टा पए पचन यो जग परम भुलाया मोए ठगो ली पाए जिन्ना सगुर फिटया ते नेड़ ना फिटे माए सगुर सेवन सो सोहणे होमे महल गवाए कुदरते से निर्मले चले सतगुर पाए हर प्रदाता एक तू तू आपे बख्श मिलाए जन नानक शरणागति जो पावे तवे छिड़ाए राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा करहले एक ओंकार सतगुर प्रसाद करहले मन परदेसिया क्यों मिल गए घर माए गुर भाग पूरे पाया गल मिलिया प्यारा आए मन करहला सतगुर पुरख ते आए हरहाओ मन करहला विचारिया हर राम नाम ते आए जिथे लेखा मंगिए हर आपे

देख देख जीवा, गुर के चरण तोय तोय पीवा, गुर की रेण नित मज्जन करो, जन्म जन्म की होमे मलहरो। इस गुर को चूला भू पाखा, मां अग्न ते हास दे राखा, तिस गुर कै ग्रह टोभो पाणी, जिस गुर ते अकल कद जानी।

हर रंग रंगो, जप जेवा हर एक मंगो, रहाओ तज होमे गुर ज्ञान भजो, मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दिसे सो संग न गयो, सागत मूड़ लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रब रहे हो, कोड़ मदे किने गुरमुख लहे हो।

जानी। मात पिता सु भाई खरे प्यारे जियो, डूब मोए बिन पानी, डूब मोए बिन पानी, गत नहीं जानी। होमे ताज संसारे, जो आया सो सब को जासी, उबरे गुर विचारे। गुरमुख होवे राम नाम वखाणे, आप तरह कुल तारे। नानक ना वसे कटे अंतर, गुरमत मिले प्यारे।

मोहन तो सत संग आवे दर्श त्याना मोहन जम नेड़ न आवे तुद जपे निदाना जम काल तिन को लगे नाही जो एक मन त्याग है मन बचन कर्म जे तुद आराध है से सबे फल पाव है मल मूत मूल जे मुक्त होते से देख दर्श सुगयाना बिन वंतनान कराज निचल पूर्ण पुरख भगवाना मोहन तू सुबल फलिया सन परवार मोहन पुत्र मीत भाई कुटम सब तारे तारिया जहान लया अभिमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुदनु तन कहया तेन जम नेड़ न आया बेंत गुण तेरे कथे ना जाही सदगुर पुरख मुरारे बिनवंत नानक टेक राखी जित लगतरिया संसारे गौड़ी महला पंजवा सलोक पतत असंख पुनीत कर पुनः पुनः बलिहार नानक राम नाम जप पाप को तिन किलबख दानहार शंत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधो त्याए मना मुरार मुकंदे कटिये काल दुख फादो दुख हरण दीन सरण श्री तार चरण कम आराधिय जं पंथ बिखड़ा अग्न सागर निम

शास्त्र कर पातो ज्ञानी सोए जाके दृढ़ सोउ कहत सुनत कस जोग न हो ज्ञानी रहत आज्ञा दृढ़ जाके उसन सीत संसर सबताक ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा थारी श्लोक आमन आए से तुम्हें बिन बूझे पल ठोर नानक गुरमुख सो बुझे जाके पाग मथोर पौड़ी या जुग में एक है को आया जन्म तुम होयो मोहनी माया गर्भ कुंट में उर तब करते सास सास सिमरत प्रव रहते उर्ज परे सो छोड़ छिड़ाना देवन हार मने बिसराना तारो कृपा जिसे कुसाई एत उत नानक इस बिसरो नाही श्लोक आवत हुक्म विनाश हुक्म आज्ञा पिन ना कोय आमन जाना ते मिटे नानक जे मन सोए पौड़ी एओ जी बहुत गर्भ वासे मोह मगन मीड जोन फासे इन माया त्रैगुण बस कीने आपन मोह कटे खड़ दीने ए साजन काशिप कहो उपाया जा ते तरो बिखम ए माया कर कृपा सत संग मिलाए नानक ताके निट न माए श्लोक किरत कमामन शोभ अशोभ इन्ने तिन प्रभे आप बस आपन हो करे नानक बिन हर खां कमात पौड़ी एक है आप करा मनहारा आप है पाप उन विस्तारा या जोग जित जित आप है लायो सो सो पायो जो आप

जम मरे गर्भ जोन दुख पाए, मोह मगन लपटत रहे आहो आवे जाए। टहे तो टहे अब टहे परे साजना सरनाए, दुके फाहे काटिया नानक लिए सुमाए।

हर हर नाम श्रवण जे सुनिया गुरमुख जे कट रहे सुमाई नानक ते जन मिली वडाई श्लोक नानक नाम नाम जब जपया अंतर बाहर रंग गुर पूरे उपदेसया नरक नाए सा संग पौड़ी नन्ना नरक परे ते नाही जाते मन तन नाम सही नाम निधान गुरमुख जो जपते बिख माया मैं ना ओए खपते नन्ना कार न होता ताको ना मंत्र गुर दीनो जाको निद निधान हर अमृत पूरे ते बाजे नानक अनघ तूरे स्वरूप पतरा की गुर पार ब्रह्म।

दृष्टि आया उस्तद करण जोग पौड़ी खखा खरा सरा होता हु जो खिर में ऊने सुबर पराहु खरा निमाना होत परानी आनदन जापे प्रव निर्बानी पावे खसम ता उआ सुख देता पार ब्रह्म ऐसो आगंता असंख खते खिन बख्सनहारा नानक साहेब सदा दयारा तलोक सत कहो सुन मान मेरे तरन परो हर राय उगत सियानप सगल त्याग नानक लए समाए पौड़ी ससा सियानप शाड एयाना हिकमत हुक्म ना प्रपतियाना सहज पाद करे चतराई संग तुहारे एक

स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन गुरुदेव बंदप सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश गुरुदेव मंत नरोदरा गुरुदेव सांत सत बुद्ध मूर्त गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतत पवित करा गुरुदेव आदि जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत हर जा कुदरा गुरुदेव संगत प्रामेल कर कृपा हम मूढ़ पापी जित लगतरा गुरुदेव सदगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा इहो श्लोक आद अंत पढ़ना गौड़ी सुखबनी महला पंजवा श्लोक एक ओंकार सदगुर प्रसाद आदगुर ए नम है जुगादगुर ए नम है सदगुर ए नम है श्री गुरुदेव ए नम है अष्टपदी सिमराओ सिमर सिमर सुख पावो कल क्लेश तन मय मिटावो सिमरो जास विषम पर एक नाम जपत अगणत अनेक वेद पुराण सिमरत सुधाखिर इन्ने राम नाम एक आखिर इनका एक जे जी बसावे ताकि महिमा गनी न आवे कांखी एक दस्त हुआरो नानको संग हुए उधारो सुख बनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कई मन बसराम रहाओ प्रभ के सिमरन गर्भ न बसै प्रभ के सिमरन दुख जम नसै प्रभ के सिमरन काल पर हरै प्रभ के सिमरन दुश्मन टरै प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै प्रभ के सिमरन अन दिन जागै प्रभ के सिमरन पौ न व्यापै प्रभ के सिमरन दुख न संतापै प्रभ का सिमरन साध के संग सर्वनिधान नानक हर रंग प्रभ के सिमरन हृद सिद्ध नव निध प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ के सिमरन जपता पूजा प्रभ के सिमरन बिनसै दूजा प्रभ के सिमरन तीर्थ इस नानी प्रभ के सिमरन तरख मानी प्रभ के सिमरन हुए सो भला प्रभ के सिमरन सुफल भला से सिमरे जिन आप सिमराए नानक ताके लागो पाए प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा प्रभ के सिमरन उदरे मूचा प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझ प्रभ के सिमरन सब के सुज प्रभ के सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ के सिमरन पूर्ण आसा प्रभ के सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम हृदमाए सुमाए प्रभ जी बसे साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभ को सिमरह से तनवंत प्रभ को सिमरह से पुतवंत प्रभ को सिमरह से जन परवान प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान प्रभ को सिमरह से बे मोहताज प्रभ को सिमरह से सर्व के राजे प्रभ को सिमरह से सुखवासी प्रभ को सिमरह सदा अविनाशी सिमरन ते लागे जिन आप दयाला नानक जन की मंगे रवाला प्रभ को सिमरह से पर उपकारी प्रभ को सिमरह तिन सद बलिगारी प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे प्रभ को सिमरह तिन सुख बिहावे प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरह तिन रमल रीता प्रभ को सिमरह तिन अंध कनेरे प्रभ को सिमरह बसे हर नेरे संत कृपा ते अन दिन जाग नानक सिमरन पूरे भाग प्रभ के सिमरन कार्य पूरे प्रभ के सिमरन कबहू ना चूरे प्रभ के सिमरन हर गुरबानी प्रभ के सिमरन

नाम की महिमा, संत दिवस, संत प्रताप, तुरत सवनस, संत का संगवड़ भागी पाईए, संत की सेवा नाम ते आईए, नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन को ए श्लोक, बहु सतर बहु सिमरति, पेखे सर्ब टंडोल, पूज सनाही हर हरे, नानक नाम अमोल, अष्टपदी, जाप तव ज्ञान सब ध्यान, खड़ सातर सिमर तव ख्यान, योग अभ्यास कर्म त्रम किरिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया, अनक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना, शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती, नहीं तोल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नौ खण पृथ्वी फिरे तिर जीव, मां उदास तपी सरतीव, अग्र माए होमद प्राण, तानक असव हैवर भूमदान, न्योली कर्म करे बो आसन, जैन मार्ग संजम अध साधन, निमख निमख कर शरीर कटावे, तो पी होमे मैल न जावे, हर के नाम तमसर कश नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गद पाहे, मन कामना तीर्थ दे छुट्टे,

अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समगरी तुमरे सूत्र थारी तुमते होए सो आज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी सलोक तेन हार प्रभ छोड़ कै लागे आन सो आए नानक कहू न सीजई पिन नावे पद जाए अष्टपदी तस वस्तु ले पाछे पावे एक बस्त कारण विखोड़ गवावे एक पी ना दे दस पी हिर ले तो मूड़ा को खां करे जे ठाकर सो ना ही चारा ताको कीजे सद नमस्कारा जाके मन लागा प्रा मीठा सर्व सुख ताहू मन उठा जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगंत सो अपनी दे रास खाद पीत बरते अनदे उलास अपनी अमान कछ भौर साहो ले अज्ञानी मन रोस।

सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मल जैसे मैल न लागे जल। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अवमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा मन अपने गए सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पए नानक जिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब परमय ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समंदर सी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता।

बिनाश ब्रह्मज्ञानी कै गरीबी समाह ब्रह्मज्ञानी परे पुकारे माह ब्रह्मज्ञानी कै नागी तंदा ब्रह्मज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्मज्ञानी कै हो सो पला ब्रह्मज्ञानी सोबल पला ब्रह्मज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्मज्ञानी जपे सगल संसार ब्रह्मज्ञानी कै एक कै रंग ब्रह्मज्ञानी कै बसे प्रसंग ब्रह्मज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्मज्ञानी कै नाम परवार ब्रह्मज्ञानी सदा सजागत ब्रह्मज्ञानी अंगबोध त्यागत ब्रह्मज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्मज्ञानी कै घर सदा आनंद ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्मज्ञानी एक संहेता ब्रह्मज्ञानी कै होए अचिंत ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्मज्ञानी करे प्रव्याप ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्मज्ञानी का दस बड़ भागी पाई है ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइए ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्मज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्मज्ञानी कै सगल मन माहे ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्मज्ञानी का तथ्या न जाए अधाखेर ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्मज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने ब्रह्मज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्मज्ञानी सबसठ का करता ब्रह्मज्ञानी ता जीवे नहीं मरता ब्रह्मज्ञानी मुक्त जुत जी का दाता ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता।

प्रीत निरंजन दर्श पर त्रे रूपना पेखे नेतर साध की टहल संत संग हेत करना सुने काहू की निंदा तब ते जाने आपस को मंदा गुर प्रसाद बिखिया पर हरे मन की बासना मन ते टरे इंद्रिजित पंच दुख ते रहत नानक कोड़ मध्य को ऐसा अपरस वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न विष्णु की माया ते होए पिन कर्म करत होवे ने कर्म जिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बचे केवल भगत कीर्तन संग रचे मन तन अंतर सिमरन गोपाल तब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवरह नाम जपावे नानको वैष्णो परम गल पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग मन ते बिरसे सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म सा संग पापा मन खोवे इस भगवती की मत उत्तम होवे भगवंत की टहल करे नित नीत मन तन अर्प विष्णु प्रीत हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत कौ पावे तो पंडित जो मन प्रबोध राम नाम आत्म मैं शुद्ध राम नाम सार रस पीवे उस पंडित कै उपदेश जग जीवे हर की कथा हृदय बसावे तो पंडित फिर जो न आवे वेद पुराण तिमृत बूझे मूल सुख मैं जाने अस्तूल चौवरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवरना में जपे को नाम जो जो जपे जिसकी गद होए सा संग पावे जन कोय कर कृपा अंतर और तार पास प्रेत मुग्ध पाथर को तार सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जूत कते न पाई गे धर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास जिसका नाम सत रामदास आत्म राम तुझ नदरी आया दाद संतन पाए तिन पाया सदा निकट निट हर जान तो दास दर गए प्रवान अपने दास को आप कृपा करे ते दास को सब सोजी परे सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभु की आज्ञा आत्म खेतावे जीवन मुक्त सोऊ कहावे तैसा हरक तैसा ओ सोग सदा अनंत नहीं बेयोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बेख खाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजान जो वर्ता ऐसा ही जुत नानको पुरख कहिए जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित का रखे तैसा तिन नाओ आपे करन करामन जोग प्रभ पावे सोई पुन हो पसर आप हो अंत तरंग लखे न जागे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अविनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पय निहाल श्लोक उस्तुत करे अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रभृति बहुविध अनक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पे तीर्थवासी कई कोट बन प्रमेय उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान तार कई कोट सबका विचार कई कोट नर्तन नाम त्याव है नानक करते का अंत न पावे कई कोट पय अवमानी कई कोट अंत अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अपेग आत्मन कोर कई कोट पर दर्व को हिरे कई कोट पर दुख न करे कई कोट माया श्रम माहे कई कोट प्रदेश परमाहे जित जित लाभ हो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर प्यो पाए कई कोट पाथर बिरख निप जाए कई कोट पवन पानी बह कई कोट ससियर सूर नक्षत्र कई कोट देव दान इंद्र सिर शतर सगल समग्री अपने सूत तार नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तार कई कोट राजस तामस साधक
ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰ ਤਰ ਸਾਸਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਰਤਨ ਸਮੁੰਦ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਤ੍ਰਿਜੀਵੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸਵਰਨ ਤੀਵੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਜਖ ਕਿੰਨਰ ਪਸਾਚ, ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਤੂਕਰ ਮਿਰਗਾਚ, ਸਭ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤਹੂ ਤੇ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਲਿਪਤ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮੈ ਜੀਵੇ ਮਰੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਬਹੁ ਜੋ ਨੀ ਫਿਰੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠ ਤੀ ਖਾਹੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲੇ ਥਕ ਪਾਹੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਧਨਵੰਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚਿੰਤ, ਜੈ ਜੈ ਭਾਣਾ ਤੈ ਤੈ ਰਾਖੇ, ਨਾਨਕ ਸਬਜ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਹਾਥੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਪੈ ਬੈ ਰਾਗੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤਿਲਨ ਵਿਲਾਗੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋਜਨ ਤੇ, ਆਤਮ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਖਨ ਤੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਪਿਆਸ, ਜਿਨ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਅਵਨਾਸ, ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗੇ ਸਤਸੰਗ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ, ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਏ ਆਪ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਧਨ ਧਨ, ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰਖੰਡ, ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ।

कोय आपे आप नानक प्रसोय कई कोड पार ब्रह्म के दास तिन होते या तुम परगास कई कोड तत् के बेते सदा निहारे एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीव अमर भय सदसदही जीव कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस तुग सह सुमावे अपने जन कौ सा सा सुमारे नान कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर ना ही कोय नानक बलिहारण जल तल मही अल सोय अष्टपदी करण करावन करने जोग जोत पावे सोई होग खिन में था भी था पनहार अंत नहीं किस पारावार हुक्मे तार अतार रखावे हुक्मे उपजे हुक्म सुमावे हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वड्याई नानक सब में रहा सुमाई प्रभ पावे मानुख गद पावे प्रभ पावे ता पात्र त्रावे प्रभ पावे बिन साह ते रख प्रभ पावे ता हर गुण पख प्रभ पावे ता पतत उधारे आप करे अपन विचार दुआ सिरिया का आप स्वामी खेले बिगसे अंतर जामी जो पावे सो कार करावे नानक दृष्टि अवर न आवे कहो मानुते क्या होए आवे जो तु पावे सोई करावे इसके हाथ होए ता सब किछ ले जो तु पावे सोई करे अनजानत दिखिया में रत जे जानत अपने आप बचे परमे पूला दर्द तावे निव कमाए चार कुंट फिरे आवे कर कृपा जे अपनी भगत दे नानक ते जन नाम मिले खिन में नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जाका दिश कशु न आवे तिस तत्काल दैज प्रटावे जाको अपनी तरह बगशीस ताका लेखा ना गने जगदीश जियो पिण सत की रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बनत आप बनाई नानक जीवे देख बढ़ाई इसका बाल नाई इस हाथ करण करामन सर्व

करंग हस कभू निंद चिंद व्यवहार कभू ऊबकस पयाल कभू बेता ब्रह्म विचार नानक आम मिला मनहार कभू नित करे बोपात कभू सोए रहे।

कभू अब कीर्त में आवे, कभू पला पला कहावे, यूं प्रवरा के तिल ही रहे, गुर प्रसाद नांग सच कहे, कभू होए पंडित करे बखियान, कभू मोन तारी लावे ध्यान, कभू तड़ती स्नान, कभू सिर साधक हो ज्ञान, कभू कीड़ हस्पतंग हो जिया, अनक जोन परमे परमिया, नाना रूप जो स्वांगी दिखा।

निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कर कर सुनी श्रवण बखियाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपे नानक मन प्रीत श्लोक संत शरण जो जन पर हो जन उदर नहार संत की निंदा नानका बौर बौर अवतार अष्टपदी संत के दुख निहार जा कटे संत के दुखन जनते नहीं छुटे संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुखन नरक में पाए संत के दुखन मत होए मलीन संत के दुखन शोभा ते हीन संत के हत्ते को रखे ना कोय संत के दुखन थान प्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदक पीतर संत के दुखन ते मुख पावे संतन के दुखन काग जू लावे संतन के दुखन सर्प जोन पाए संत के दुखन त्रिगत जोन किर माए संतन के दुखन तृष्णा में जले संत के दुखन सब को शले संत के दुखन तेज सब जाए संत के दुखन नीच नीच आए संदोकी का थाओ को नागे नानक संत पावे ता वे पीगत पागे संत का निंदक मां अतताई संत का निंदक खिन टिकन ना पाई संत का निंदक महा तेयारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज ते हीन संत का निंदक दुखिया अरदीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा बिजोग संत की निंदा दोख मैं दोख नानक संत पावे ता उसका पी होए मोख संत का दुखी सदा अपवित्र

गत नानक जब एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोह है। प्रभ की जोत सगल कड़ सोह है। तनवंता होए क्या को गर्भ है।

एको होए। सच करणी सचता की रहत, सच हृदय सत मुकहत, साची दृष्ट सचा आकार, सच वर्ते सचा पासार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच समाता। सलोक रूप न रेख न रंग केश, त्रयो गुण ते प्रापिन, तिसे बुझाए नानका, जिस होवे सो प्रसन्न। अष्टपदी

गैर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निधान दयाल बगसंद साथ तेरे की चरनी पाओ नानक के मन एव अनराओ।

आनंद रूप मंगल सुजाक सर्व थोक सुनहे करताक राजमय राज जोग मय जोगी तप मय तपीसर गृहस्थ मय भोगी त्याए त्याए भगते सुख पाया नानक थ पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाग सगल देव हारे अवगाह पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्यावे से त्यो गुण मै जा को फरमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊंच नीच इसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेख करे एक रंग नाना विद तीनो विस्तार प्रभ अविनाशी एक अंकार नाना चलत करे खिन माहे पूर रहे हो।

कै रंग सेवक को प्रपालन हार सेवक की रखे निरंकार सो सेवक जे दया प्रवतार नानक सो सेवक सास सास सुमार अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक की सर पर रखे अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पत रखे ताकि गत मित कोई ना लख प्रभ के सेवक को ना पहुंचे प्रभ के सेवक ऊचते ऊचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दहत से प्रगटाया निकी कीरी में कल रख पसम करे लस्कर कोट लख जिसका साधन काटते आप ताको राखत दे कर हाथ मानस जतन कर्तव पात जिसके कर्तव्य व्यर्थ जात मारे ना रखे अवर न कोय सर्व जिया का रखा सोय काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडाणी बारंबार बार प्रभ जपीए ई अमृत यो मन तन त्रपीए नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किश अवर नाही दृटाया नाम तन नाम रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन त्रिवतान ने मन तन नामे नाम सुमान।

निर्गुण आप सरगुण पी ओही कला तार जिन सगली मोही अपने चित्त प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोय सर्व निरंतर एको सोय ओत पोत रव्या रूप रंग पय प्रगास साध के संग रच रचना अपनी कलतारी अनकबार नानक बलिहारी श्लोक साधना चले बिन भजन बिखिया सगली शार हर हर नाम कुमावना नानक यो तनसार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव समीत बसारो चरण कमल हृदमय उरतारो करण कर्ण सो प्रसमरथ दृढ़ कर गहो नाम घर वथ यो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस रखो मन माहे सर्व रोग नारक मिट जाहे ये तन को चार कुण टुड़तावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस कोवनत बाछे मीत सो सो साधु संग परीत जे सोभा को करे पली करनी सा सोभा पज हर की सरनी अनको पावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवख दलाए सर्वन दान मय हर नाम निधान जप नानक दरगह परवान मन पर बुद्ध हर कै नाए दस तावत आ बैठाए ताको बिगन ना लागे कोय जा कर दे बसे घर सोए कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ भव बिन से पूर्ण होए आस भगत पाया तुम परगास दिल कर जाए बसे अविनाशी।

सेव पूर्ण होई, सेवक की सेव आल जंजाल बेकारते रहते, राम नाम सुन रसना कहते, कर प्रसाद दया प्रतारी, नानक निधि खेप हमारी, प्रभु की उस्तक तरो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसे सो होत निधान, सर्व इच्छाता की पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रण सबल होए, सब ते ऊज पाए स्थान, बौर न होवे आमन जान, हरतन खाड़ चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए, खेम सांत रिद्ध नव निध, बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध, विद्या तप जो प्रत्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, चार पदार्थ कमल परगास, सबके मध्य सगर ते उदास, सुंदर चतुर तत् का बेता, समदर्शी एक दृष्टेता, ए फल हे जन के मुख पने, गुरु नानक ना बचन मन सुने, एहो निधान जपे मन कोय, सब युग में ताकी गद होय, गुण गोविंद नाम सुनवाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी, सगलम तांग केवल हर नाम, गोविंद भगत के मन बसराम, कोड अपराध सासंग मिटे, संत के पाते जमते छुट्टे, जाके मस्त कर्म प्रपाए, साध शरण नानक ते आए, जिस मन बसे सुने लाए प्रीत, तेजन आवे हर प्रचीत, जन्म मरणता का दुख निवारे, दुलभ देह तत्काल उधारे, निर्मल शोभा अमृतता की बानी, एक नाम मन माये सुमानी, दुख रोग बिनसे पै परम, साध नाम निर्मलता के कर्म, सब ते ऊचता की शोभा बनी, नानक ए गुण नाम सुखमनी, स्थिति गौड़ी महला पंजवां श्लोक, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जल थल मही अल पूरिया, त्वमी सृजनहार, अनक पांत होए पसरिया, नानक एकंकार पौड़ी, एकम एकंकार प्रभ, करो वंदना त्याय, गुण गोविंद गोपाल प्रभ, शरण परो हर राय, ताकि अस कल्याण सुख, जाते सब कश होए, चार कुंट दैस प्रमेयो, तिस बिन अवर न कोय, वेद पुराण सिमरत सुने, बौद्ध करो विचार, पत उदाहरण पय हरण, सुख सागर निरंकार, दाता पुता देनहार, तिस बिन अवर न जाए, जो चाह सोई मिले, नानक हर गुण गाए, गोविंद जस गई।

आए परम कटिए नानक साध संग द्वितीया पाओ मिटाए पौड़ी द्वितीया दुर्मत दूर कर गुर सेवा कर नीत राम रतन मन तन बसे तय काम क्रोध लोभ मीत मरण मिटे जीवन मिले बिनसे सगल कलेस आप तजो गोविंद भजो पाओ भगत प्रवेश लाभ मिले तोटा हिरे हर दरगे पतवंत राम नाम तन संचवे साच सहा भगवंत उठत बैठत हर पजो साधु संग प्रीत नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म बसे चीत श्लोक तीन ब्यापे जगत को तुरिया पावे कोय नानक संत निर्मल पय जिन मन वस्या सोए पौड़ी तृतीया त्रै गुण बिखे फल कब उत्तम कब नीच नरक सुर्ग भ्रमतो कहो सदा सिंहारे मीत हरक शोक सहसा संसार हो करत बिगाए जिन किए तसे ना जाननी कितवे अनके उपाय आद ब्याद उपादरस कबू न टूटे ताप पार ब्रह्म पूर्ण तरी न बूझे परताप मोह परम बूढ़ कणो महानरक में वास कर कृपा प्रवराख लेहो नानक तेरी आस श्लोक चतर सियाणा सूढ़ सोए जिन तरिया अवमान चार पदार्थ अष्ट सिद्ध भज नानक हर नाम पौड़ी चतर्थ चारे वेद सुन तुद तत विचार सर्व खेम कल्याण निध राम नाम जब सार नरक निवारे दुख हरे टूटे अनक कलेस मीच हुटे जमते छुटे हर कीर्तन परवेश पौ बिन से अमृत रस रंग रते निरंकार दुख दार्द अपवित्रता नसे नाम आधार सुर नरमुंजन खोजते सुख सागर गोपाल मन निर्मल मुख उजला कोई नानक साधरवाल श्लोक पंच

रते माया संग साध संग होए निर्मला नानक प्रभु कै रंग पौड़ी पंचम पंच प्रधान ते जे जानो पर पंच कुसुम बास बहु रंग घणो तम इसिया बलबंच न जापे न बूझिए न कछु करत विचार स्वाद मोह रस बेदयो अज्ञान रचियो संसार जन्म मरण बहु जोन प्रमण किन्ने कर्म अनेक रचनहार न सिमरियो मन ना विचार विवेक भाव पवित्र भगवान संग माया लिप्त नारंच नानक बिरले पाई है जो नारचे परपंच श्लोक खट सतर ऊचो कह अंत न पारावार भगत सोह है गुण गावते नानक प्रभु के द्वार पौड़ी खष्टम खट सतर कह सिमरत कथे अनेक ऊतम ऊचो पार ब्रह्म गुण अंत न जाने शेख नारद मुंजन सुख व्यास जस गावत गोविंद रस गिदे हरसो बीदे भगत रचे भगवंत मोह मान प्रम बिनसयो पाई शरण दयाल चरण कमल मन तन बसे दर्शन देख निहाल लाभ मिले तोटा हिरे साध संग ले बुलाए खाट खजाना गुण दखरे नानक नाम ते आए श्लोक संत मंडल अर्ज कथे बोले सत सुपाए नानक मन संतोखी है एक सिउ लिवलाए पौड़ी सप्तम संचो नाम तान टूट न जाए पंडार संत संगत मैं पाई है अंत न पारावार आप तजो गोविंद भजो शरण परो हर राय दुख हर भवजल तर मन चिंदिया फल पाए आड़ पैर मां हर जपे सबल जन्म परवान अंतर भार सदा संग करने हार पछाण सो साजन सो सखा मीत जो हर की मत दे नानक तस बलिहारण हर हर नाम जपे श्लोक आड़ पैर गुण गाई है तजिए अवर जंजाल जम कंकर जोए न सकई नानक प्रभु दयाल पौड़ी अष्टमी अष्ट सिद्ध नाम निध सगल पदार्थ पूर्ण बुद्ध कवल प्रगास सदा आनंद निर्मल रीत निरोधर मंत सगल धर्म पवित्र स्नान तब में ऊज बसेख ज्ञान हर हर भजन पूरे गुर संग जब तरिये नानक नाम हर रंग श्लोक नारायण ने सिमरियो मोयो स्वाद विकार नानक नाम विसारे नरक सुर्ग अवतार पौड़ी नौमी नवे शिदर अपवीत हर नाम न जपे तर्क विपरीत पात्र रमे बके साध निंद कर न सुनहि हर्ज बिंद हिरे पर दर्भ उदर कहताई अग्न न निवरे तृष्णा न बुझाई हर सेवा बिन ए फल लागे नानक प्रभ विसरत मर जमे अपागे श्लोक तद देखो तुम्हें फिरयो जब देखो तस सोए मन बस आवे नानका ये पूर्ण कृपा होए पौड़ी दसवीं ददवार बस पीने मन संतोख नाम जब लीने करनी सुनिए जस गोपाल नैनी पेखता सा दयाल रसना गुण गावे बेअंत मन में चितवे पूर्ण भगवंत हस्त चरण संतैल कमाई है नानक यो संयम प्रभु कृपा पाई है श्लोक एको एक बखानी है बिरला जाने स्वाद गुण गोविंद न जानी है नानक सब समाद पौड़ी एकासी निमित पेखो हर राम इंद्री बस कर सुनो हर नाम मन संतोख सर्व जी दया इन वेद वर्त संपूर्ण पया तावत मन राखे इकठाए मन तन शुद्ध जपत हर नाय सब में पूर है पार ब्रह्म नानक हर कीर्तन कर अटल एहो धर्म श्लोक दुर्मत हरी सेवा करी भेटे सद कृपाल नानक प्रसु मिल रहे बिनसे सगल जंजाल पौड़ी द्वासती दान नाम स्नान हर की पद करो तजमान हर अमृत पान करो साध संग मन तृप्ता से कीर्तन प्रवरंग कोमल बाणी सबको संतोख पंच पू आत्मा हर नाम रस पुख गुर पूरे ते ए नह चौपाइये नानक राम रमत फिर जोन न आइये श्लोक तीन गुणा में व्यापया पूर्ण होत न काम पतत उदाहरण मन बसे नानक छूटे नाम पौड़ी त्रौसी तीन ताप संसार आपत जात नरक अवतार हर हर भजन मन में आयो सुख सागर प्रभ निख न गायो हर शोक का देह कर बाध्यो दीर्घ रोप माया आसाध्यो दिने पकार कर संपायो
नैनी नींद सुपन बरड़ायो हर बिसरत होवत ए हाल सरनांग प्रपुरख दयाल श्लोक चार कुंट चौदे पवन सगल व्याप्त राम नानक पून ना देखी है पूर्णता के काम पौड़ी चौदे चार कुंड प्रव्याप सगल पवन पूर्ण प्रताप दसे दिशा रव्या प्रभ एक तरण आकाश हमें प्रापेख जल थल वन पर्वत पाताल परमेश्वर ते बसे दयाल सूक्ष्म अस्थूल सगल भगवान नानक गुरमुख ब्रह्म पछान श्लोक आत्म जीता गुरमति गुण गाए गोविंद संत प्रसादी पै मिटे नानक बिन सी चिंद पौड़ी अमावस आत्म सुखी भय संतोख दिया गुरदेव मंतन शीतल सांत सहज लागा प्रभु की सेव टूटे बंधन बहु विकार सबल पूर्णता के काम दुर्मत मिटी होम मैं छुटी सिमरत हर को नाम शरण गई पार ब्रह्म की मिटिया आवा गमन आप तरिया कोटम स्यो गुण गोविंद प्रभ्रमन हर की टहल कमावनी जपगे प्रभु का नाम गुरपूरे ते पाया नानक सुख विश्राम श्लोक पूर्ण कभू ना डोलता पूरा किया प्रभ आप दिन दिन चढ़े सुवाया नानक होत ना काट पौड़ी पूर्णमा पूर्ण प्रवेक करण कारण समरथ जी जंत दयाल पुरख तभी ऊपर जा का हथ गुण निधान गोविंद गुर किया जा का होय अंतरजामी प्रसुजान अलख निरंजन सोय पार ब्रह्म परमेश्वर सबद जानन हार संत सहाई शरण जोग आठ पैर नमस्कार अकथ कथा न बूझिए सिमरो हर के चरण पतत उदाहरण अनाथ नाथ नानक प्रभु की शरण श्लोक दुख बिन से सहसा गयो शरण गही हर राय मन चिंदे फल पाया नानक हर गुण गाए पौड़ी कोई गावे को सुने कोई करे विचार को उपदेश को दृढ़ जिसका हुए उधार किलवे काटे हुए निर्मला जन्म जन्म मल जाए फलत पलत मुख उजला न पोहे तुमाए तो सुरता सो बैसनो तो ज्ञानी तनवंत तो सूरा कुलवंत सोए जिन पढ़िया भगवंत खत्री ब्राह्मण सूद बैस उदरे सिमर चंडाल जिन जान्यो प्रव्यापना नानक तिसहरवाल गौड़ी की वार महला चौथा एक ओंकार सदगुर प्रसाद श्लोक महला चौथा सदगुर पुरख दयाल है जिसनु संत सब कोय एक दृष्ट कर देखदा मन भावनी ते सिद्ध होय सगुर विच अमृत है हर उत्तम हर पासोय नानक कृपा ते हर त्याई है गुरमुख पावे कोय महला चौथा होमे माया सा बिख है नित जग तोटा संसार लहार तन खटिया गुरमुख शब्द विचार होमे मायल बिख उतर हर अमृत हर और तार सब काज तन के सिद्ध है जिन गुरमुख कृपा तार नानक जो तुर मिले से मिल रहे हर मिले सृजनहार पौड़ी तू सच्चा साहिब सच है सच सच्चा गोसाई तुदनु सब ते आए दी सब लगे तेरी पाई तेरी सिवत सवाले स्वरूप है जिन कीती तुझ पार लंघाई गुरमुखा नु फल पाएगा सच नाम सुमाई वड्डे मेरे साहेबा वड्डी तेरी वड्याई श्लोक महला चौथा रिण नावे होर सलाहना सा बोलन फिका साध मानव अंकार सलाह दे होमे ममतावाद जिन सालाहन से मरे खप जावे साप अपवाद जन नानक गुरमुख उबरे जप हर घर परमानाद महला चौथा सतगुर घर प्रदस नाम त्याई मन हरी नानक नाम पवित हर मुख बोली सब दुख पर हरी पौड़ी तू आपे आप निरंकार है निरंजन घर राया जिनी तू एक मन सच त्याया इनका सब दुख गवाया तेरा शरीक को नाही जिसनू लवे लाए सुनाया तू जेवड़ दाता तू है निरंजना तू है सच मेरे मन पाया सच्चे मेरे साहेबा सच्चे सचनाया श्लोक महला चौथा मन अंतर हो मैं रोग है पर भूले मन मुख दुर्जना नानक रोग गवाए मिल सतगुर साधु सज्जना महला चौथा मन का रत्ता रंग स्यों गुरमुख हर गुण तास।
जन नानक हर शरणागति हर मेले गुरसाबास पौड़ी। तू करता पुरख अगम है इस नाल तू वड़ी है, तो जेवड़ हो सो आखी है, तो जेगा तू है पड़ी है। तू घट घट एक वर्तदा गुरमुख पर गड़ी है, तू सच्चा सब सदा खसम है, सब दू तू चढ़ी है। तू करे सो सच्चे होए सी ता कायत कड़ी है। श्लोक महला चौथा, मैं मंत्र प्रेम प्रम का अठे पैर लगन, जन नानक कृपा तार प्रभ सदगुर सुख वसन। महला चौथा, जिन अंदर प्रीत प्रम की जो बोलन तिवे सुहन, नानक हर आपे जानदा जिन लाई प्रीत प्रन पौड़ी। तू करता आप फुल है फुलन विच नाही, तू करे सो सच्चे पला है गुर शब्द बुझागी। तू करण कान समर्थ है दूजा को नाही, तू साहेब अगम दयाल है सब तुद त्यागी। सब जीत तेरे तू सब सदा तू सब छिड़ागी। श्लोक महला चौथा, सुन साजन प्रेम संदेसरा अखी तार लगन, गुर तुठे सज्जन मेलिया जन नानक सुख सुवन। महला चौथा, सतगुर दाता दयाल है जिसनू दया सदा होए, सतगुर अंदरो निरवैर है सब देखे ब्रह्म एक सोए। निरवैरा नाल जे वैर चलाएंदे तिन विचों तिष्ठिया ना कोए, सतगुर सबना दा भला मनाएंदा एदा बुरा क्यों होए। सतगुर नू जिया को इच्छदा तेखा फल पाए कोए, नानक करता सब कुछ जानदा जिदू किश गुजा ना होए पौड़ी। जिसनू साहेब वड्डा करे सोई वड जानी, जे साहेब पावे थे बख्स लै सो साहेब मन पानी। जे को उस दी रीस करे सो मूड अजानी, जिसनू सतगुर मिले सो गुण रवे गुण आख वखाणी। नानक सच्चा सच है बुझ सच सुमाणी। श्लोक महला चौथा, हर सत निरंजन अमर है निरभौ निरवैर निरंकार, जिन जप्या एक मन एक चित तिन लथा होमे पार। जिन गुरमुख हर आराध्या तिन संत जिना जयकार, कोई निंदा करे पूरे सदगुरु की तिसनु फिट फिट कहे सब संसार। सगुर विच आप वर्तदा हर आपे रखनहार, तन तन गुरु गुण गावंदा तिसनु सदा सदा नमस्कार। जन नानक तिन कौ वारिया जिन जप्या सिरजनहार। महला चौथा, आपे धरती साजियन आपे आकाश, विच आपे जंत उपायन मुख आपे दे गिरास। सब आपे आप वर्तदा आपे ही गुणतास, जन नानक नाम ते आए तू सब किलवख कटे तास पौड़ी। तू सच्चा साहिब सच है सच सच्चे पावे, जोत सच सलाह दे तिन जम कंकर नेड़ न आए। इनके मुख दर उजले जिन हर हिरदे सच्चा पावे, कूड़ियार पिशाह सटियन उड़ हिरदे कपट महा दुख पावे। मोह काले कूड़ियारियां कूड़ियार कूड़ो हो जावे। श्लोक महला चौथा, सगुर तरती तरम है तिस विच जेगा को बीजे तेगा फल पाए, गुर सिखी अमृत बीजिया तिन अमृत फल घर पाए। ओ न हलत पलत मुख उजले ओ हर दरगे सच्ची पय नाए, एक न अंदर खोट निर खोट कमावे। वे जेगा बीजे तेगा फलकाए, जा सतगुर सराब नजर कर देखे स्वाब गीर सब उगड़े आए। वे जेगा चितवे नित तेगा पायन, वे तेहो जेगे दईये बजाए। नानक दुई श्री खसमे आपे वरत, नित कर कर देखे चलत सुबाए। महला चौथा, एक मन एक वरतदा जित लगे सोथा ए पाए, कोई गल्ला करे कनेरियां जे कार वत होवे साई खाए। बिन सतगुर सोजी ना पवे अंकार ना विचों जाए, अंकारियां नू दुख पुख है हथडे कर कर मंगाए। कूड़ ठगी गुजी ना रहे मुलम्मा पाज ले जाए, जिस होवे पूर्व लिखया तेस सतगुर मिले प्रवे आए। जो लोहा पारस पेटी है मिल संगत स्वर्ण हो जाए, जन नानके प्रा तू तनी जो पावे तेरे चलाए पौड़ी। जिन घर गिर दे सेवया तिन घर आप मिलाए, गुण की सांझ तिन स्यो करी तब अवगुण शब्द जलाए। अवगुण विकण पलरी जे दे सो सच्चे पाए, बलिहारी गुरे अपने जिन अवगुण मेट गुण प्रगटी आए। वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख आ लाए। श्लोक महला चौथा, सतगुरु विच वड्डी वड्याई जो अनगिन घर घर नाम ते आवे,
ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਮਤ ਸੁ ਸੰਜਮ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਤਾਣ ਹਰ ਨਾਮ ਦੀਵਾਨ, ਹਰ ਨਾਮੋ ਰਖ ਕਰਾਵੇ, ਜੋ ਚਿਤ ਲਾਏ ਪੂਜੇ ਗੁਰਮੂਰਤ, ਸੋ ਮਨ ਇੱਛੇ ਫਲ ਪਾਵੇ, ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਸੋ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ, ਜੇ ਕਰਤਾ ਮਾਰ ਦੇਵਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਉਸ ਹੱਥ ਨ ਆਵੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੀਜਿਆ ਆਪੇ ਖਾਵੇ, ਨਰਕ ਕੋਰ ਮੋਏ ਕਾਲੇ ਖੜਿਆ, ਜੋ ਤਸਕਰ ਪਾਏ ਗਲਾਵੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਭਰੇ, ਜਾਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਵੇ, ਹਰ ਬਾਤਾਂ ਆ ਸੁਣਾਏ ਨਾਨਕ, ਹਰ ਕਰਤੇ ਇਹ ਵੇ ਪਹਾਵੇ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਅਗਿਆਨ ਮੁੱਠਾ ਦੁਖਮਾਇਆ, ਉਸ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਕੂੜ ਕਰ ਬੁੱਝੇ, ਅਣਹੋਂਦੇ ਝਗੜੇ ਦਈਏ, ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਫਰੋਸੀ ਕਰੇ ਬਹੁ ਤੇਰੀ, ਉਸ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਕਰ ਕਰ ਹੰਡੇ ਜੋਰਨ ਦੁਹਾਗਣ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੋਹ ਜੋੜੇ, ਉਸ ਪੀ ਲੱਛਣ ਲਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੋ ਅਲਿਪਤੋ ਵਰਤੇ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਸ ਛੱਡ ਗੁਰ ਪਾਸ ਬਹਿ ਜਾਇਆ, ਜੋ ਗੁਰ ਗੋਪੇ ਆਪਣਾ ਸੋ ਪਲਾ ਨਾਹੀ ਪੰਚੋ, ਉਹ ਲਾਹ ਮੂਲ ਸਭ ਗਵਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਗਮ ਨਿਗਮ ਨਾਨਕ ਆਗ ਸੁਣਾਏ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਉਪਰ ਆਇਆ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਡਿਆਈ ਭਾਵੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ, ਮਨ ਮੁੱਖਾਂ ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਇਆ ਪੌੜੀ, ਸੱਚ ਸੱਚਾ ਸਬਦੂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸੋ ਲਏ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਟਿੱਕੇ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਸੱਚ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਸੱਚ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕੇ, ਸੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜੇ ਦੂਧ ਕੀਤੇ ਵਸ ਛਿੱਕੇ, ਜੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਆਪ ਗਣਾਏਂਦੇ, ਤਿਨ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਫਿੱਟ ਫਿੱਟ ਮੋਹ ਫਿੱਕੇ, ਹੋਏ ਬੋਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਾਵਨੀ, ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਚੁੱਕੇ, ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਭ ਖੇਤ ਹੈ, ਹਰ ਆਪ ਕਿਰਸਾ ਨੀ ਲਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਖਸ ਜਮਾਈਨ ਮਨਮੁਖੀ ਮੂਲ ਗਵਾਇਆ, ਸਭ ਕੋ ਬੀਜੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਪਾਵੇ ਸੋ ਖੇਤ ਜੁਮਾਇਆ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਜਿਆ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ, ਜਮ ਚੂਹਾ ਕਿਰਸਨਿਤ ਕੁਰਕ ਦਾ, ਹਰ ਕਰਤੇ ਮਾਰ ਕਢਾਇਆ, ਕਿਰਸਾਣੀ ਜੰਮੀ ਭਾਉ ਕਰ, ਹਰ ਬੋਲ ਬਖਸ ਜੁਮਾਇਆ, ਤਿਨਕਾ ਕਾੜਾ ਅੰਦੇਸਾ ਸਭ ਲਾਇਓਨ, ਜਿਨਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਤੇ ਆਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ, ਆਪ ਤਰਿਆ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ, ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਾਲ ਚਿੱਟਿਆ, ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਰੇ ਗੱਲਾਂ, ਰਾਤੀ ਉਗੇ ਦੱਬਿਆ, ਨਵੇਂ ਸੋ ਸਭ ਠਿੱਲਾ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜੋਰਾ ਅਮਰ ਹੈ, ਨਿਦੇ ਵੇ ਫੱਲਾ, ਜੋਰਾ ਦਾ ਆਖਿਆ ਪੁਰਖ ਕਮਾਮ ਦੇ, ਸੇ ਅਪਵਿਤ ਅਮੇਦ ਖਲਾ, ਕਾਮਿਆ ਪਿਕ ਸੁਧ ਨਰ, ਸੇ ਜੋਰਾ ਪੁਛ ਚੱਲਾ, ਫਲ ਗੁਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਚੱਲੇ, ਸੋ ਸਦ ਪੁਰਖ ਫਲ ਫਲਾ, ਜੋਰਾ ਪੁਰਖ ਸਭ ਆਪ ਉਪਾਇਨ, ਹਰ ਖੇਲ ਸਭ ਖਿਲਾ, ਤਉ ਤੇਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਵਣੀ, ਨਾਨਕ ਫਲ ਫਲਾ ਪੌੜੀ, ਤੂੰ ਵੇ ਭਰਾਓ ਅਥਾਓ ਹੈ, ਅਤੁਲ ਕਿਉ ਤੁਲੀਏ, ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਜੇ ਤੁਧ ਤੇ ਆਏਂਦੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਰੀਸੈ ਹੋਰ ਕੱਚ ਪਿਚ ਬੋਲਦੇ, ਜੇ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਚੜ ਪੜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜਗਮਰ ਦੇ ਕੜੀਏ, ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰਮਲੀ, ਨਿਰਮਲ ਜਨ ਹੋਏ ਸੋ ਸੇਵਾ ਕਾਲੇ, ਜਿਨ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਝੂਠ, ਹੋਏ ਆਪੇ ਸੱਚੇ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਿਨੂੰ ਮਾਲੇ, ਸਚਿਆ ਸਿੱਖ ਬਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਕਾਲਨ, ਕੂੜਿਆਰ ਨਾ ਲੱਭਣੀ ਕਿਤੇ ਥਾਏ ਪਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਆਖਿਆ ਸੁਖਾਵੇ ਨਾਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਮੋਹ ਭਲੇਰੇ ਤੇਰੇ ਦਈਏ ਗਾਲੇ, ਜਿਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਗਰਕੇਰੀ, ਸੇ ਕਿਚਰਕ ਵੇਰਾਈਨ ਮਨਮੁਖ ਬੇਤਾਲੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਥਾਏ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਆ ਵਰਤੇ ਆਪਣੀ ਵਥ ਨਾਲੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਕ ਨਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸੁਖ ਦੇਵੇ, ਇਕ ਆਪੇ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਠਗਵਾਲੇ, ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹਰ, ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਦਈਏ ਅੰਧੇ ਰਾਸ, ਤਿਨ ਚੁੱਕੀ ਮੋਹਤਾ ਜੀ ਲੋਕਨ ਕੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਅੰਗ ਕਰ ਬੈਠਾ ਪਾਸ, ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਵੱਲ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਵੱਲ, ਸਭ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕਰੇ ਸਾਬਾਸ, ਸਾਹੋ ਪਾਸਾਓ ਸਭ ਹਰ ਕਾ ਕੀਆ, ਤਾਂ ਜਨ ਕੋ ਆਏ ਕਰੇ ਰਹਿ ਰਾਸ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਵੱਡਾ ਸੇਵ ਅਤੁਲ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਦਾਨ ਦੀ ਹਰ ਨਿਚਲ, ਨਿਤ ਬਖਸੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਕ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੇ, ਤੂੰ ਕਰਤੇ ਆਪ ਪਚਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਬੋਲੇ ਕਰਤੇ ਕੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਪੌੜੀ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਮ ਦਇਆਲ ਹੈ, ਵੜਦਾ ਤਾ ਦਾਣਾ, ਤੂੰ ਜੇਵੜ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋ ਦਿਸ ਨਾ ਆਵਈ,
तू है सुगड़ मेरे मन पाना, मोक टम दिस आमदा सब चलन गारा आमन जाना, जो बिन सच्चे होरत चित लाएंदे से कूड़ियार कूड़ा तिन माना, नानक सच त्याए तू बिन सच्चे पज पज मोए अजाना। सलोक महला चौथा, अगों दे सदभाओ ना दिच्चे पिछों दे आख्या कम न आवे, आदज फिरे मनमुख वेचारा गली क्यों सुख पावे, जिस अंदर प्रीत नहीं सरगुर की सो कूड़ी आवे कूड़ी जावे, जे कृपा करे मेरा हर प्रभु करता ता सतगुर पा।

तपे तरम हारिया, भाई ए तपा ना होवी बगला है, भय साधना विचारिया। सतपुरख की तपा निंदा करे, संसारे की

पद हर प्रवान, सर्व त्याग फल केवल राम। गौड़ी कबीर जी, नग्न फिरत जाओ पाई है जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग, क्या नांगे क्या बाधे चाम। जब नहीं चीन सयात्म राम, हरहाओ मूड मुडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति पेड़ न गई आकाई। बिंद राख जाओ तरिये पाई, खुसरे क्यों ना परमगत पाई, कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बेन किन गद पाई। गौड़ी कबीर जी, संध्या प्रात स्नान कराही, ज्यो पै दादुर पानी माही, जाओ पै राम राम रत नाही, के सब धर्म राय कै जाही रहाओ। काया रत बहु रूपर चाही, तिन को दया सुपने पी नाही, चार चरण कह बहु अगर, साधु सुपावे कल सागर। कहो कबीर बहु काय करी जय, सर्व छोट

आप मोहे मिलो है जिया मनहारा रहाओ। या देखी परमल महकंदा तासुक बिसरे परमानंदा कूटा एक पंच पनहारी टूटी लाज परे मत सारी कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी ना ओ कुवटा ना पनहारी गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा अनक जन्मा किए बहुरंगा ऐसे कार हम बहुत बसाए जब हम राम गर्भ हो आए रघाव योगी जति तपी ब्रह्मचारी कबहू राजा शद्रपत कबहू पेघारी सागत मरे संत सब जीव राम रसायन।

कहे तो कबीर पले असवारा, बेर कतेबते रह निरारा, गौड़ी कबीर जी। जे मुख पांचो अमृत खाए, ते मुख देखत लूप टलाए, एक दुख राम राय का टो मेरा, अग्न दहे

ग्वारेरी अष्टपदी कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख मांगत दुख आगे आवे सो सुखमो न मांगया पावे बिखिया अजो सुरत सुख आसा कैसे हुई है राजा राम निवासा रहाओ इस सुखते से ब्रह्म डराना सो सुखमो साज कर जाना संकादक नारद मुन सेखा तिन पी तर मैं मन नहीं पेखा इस मन को कोई खुद जो पाई ता छूटे मन कहां सुमाई गुर प्रसादी जय दो नामा भगत के प्रेम इन ही है जाना इस मन को नहीं आवन जाना जिसका परम गया तिन साज पछाना इस मन को रूप न रेख्या काई हुक्मे होया हुक्म बूझ सुमाई इस मन का कोई जाने पेओ ए मनलीन पय सुख देओ जियो एक हर सगल शरीरा इस मन को रव रहे कबीरा गौड़ी ग्वारेरी आहे निस एक नाम जो जागे केतक सिद्ध पय लिव लागे रहाओ साधक सिद्ध सगल मुनहारे एक नाम कल्प तरतारे जो हर हरे सो होए न आना कहे कबीर राम नाम पछाना गौड़ी पी सोठ पी रे जी न लज लाज तोय नाही हर ताज कद काहू के जाही रहाओ जाको ठाकुर ऊंचा होई सो जन पर कर जातन सोही सो साहेब रहया पर पूर सदा संग नाही हर दूर।

या तत लियो शरीर बिचारी, कहे कबीर ठग स्यो मन मानिया, गई ठगौरी ठग पहचानिया। आ मोको पए राजा राम सहाई, जन्म मरण कट परम गद पाई। हरहाओ साधु संगत दियो रलाए, पंच दूत ते लियो छिड़ाए। अमृत नाम जपो जब रसना, अमोल दास कर लीनो अपना। सतगुर कीनो पर पुकार, काढ लीन सागर संसार। चरण कमल स्यो लागी प्रीत, गोविंद बसे निता नद चीत। माया तप्त बुझिया अंगियार, मन संतोख नाम आधार। जल थल पूर रहे प्रस्वामी, जत पेखो तत अंतर जामी। अपनी भगत आप ही दरड़ाई, पूर्व लिखत मिलिया मेरे पाई। जिस कृपा करे तिस पूर्ण साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज। जल के सूतक थल के सूतक, सूतक ओपत होई। जन्मे सूतक मुगे फुन सूतक, सूतक परज बगोई। कौरे पंडिया कौन पवीता, ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता। रघाओ नयनो सूतक बयनो सूतक, सूतक श्रमणी होई। उठत बैठत सूतक लागे, सूतक परे रसोई। फासन की बेद साव को जाने, छूटन की एक कोई। कहे कबीर आराम हृदय बेचारे, सूतक तिने ना होई गौड़ी। झगड़ा एक न बेरहो राम, जो तुम अपने जन सौ काम। हरहाओ यो मन बड़ा के जासो मन मानिया, राम बड़ा कह रामे जानिया। ब्रह्मा बड़ा के जास उपाया, वेद बड़ा के जाते आया। कहे कबीर हो पया उदास, तीर्थ बड़ा के हर का दास। अराग गौड़ी चेती, देखो पाई ज्ञान की आई आंधी। सवे उड़ानी प्रम की टाटी, रहे ना माया बांधी। हरहाओ दुचित्ते की दो थून गिरानी, मोह बलेंडा टूटा। तिसना शान परी तारी ऊपर, दुर्मद पांडा फूटा। आंधी पाचे जो जल बरख, ते तेरा जन पीना। कहे कबीर मन पया परगासा, उदय पान जब चीना। गौड़ी चेती एक ओंकार, सदगुर प्रसाद। हर जस सुने न हर गुण गावे,

बैकुंठ जाइए ना पदार्थ मने बसाइए। हृदय सुजो निंदा होए हमरे कपड़े निंदक तोए। निंदा करे सो हमारा मीत निंदक माए हमारा चीत। निंदक सोजो निंदा हो रे हमारा जीवन निंदक लोर। निंदा हमरी प्रेम प्यार निंदा हमारा करे उधार। जन कबीर को निंदा सार निंदक डूबा हम उतरे पार। राजा राम तू ऐसा निरपो तरन तारन राम राया। रहाओ जब हम होते तब तुम नाही अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक पय है एक के देखत मन पतियाही। जब बुध होती तब बल कैसा अब बुध बल ना खटाई। कहे कबीर बुध हर ली मेरी बुध बदली सिद पाई गौड़ी। खट नेम कर कोठड़ी बंदी बस अनूप बीच पाई। कुंजी कुल्प प्राण कर राखे करते बार न लाई। अब मान जागत हो रे पाई गाफल हुए के जन्म गवायो। चोर मुसे कर जाई रहाओ। पंच पैरुआ दर में रहते इनका नहीं पतियारा। चेत सुचेत चेत हुए रहो तौले प्रगास उजारा। नाव कर देख जो कामन पूली बस अनूप न पाई। कैत कबीर नवे कर मुसे दसवें तत् सुमाई। गौड़ी माई मुहे अवर ना जान्यो आना ना। थे सुनकाद जस गुण गावे तस बसे मोरे प्राणा ना। रहाओ हृदय प्रगास ज्ञान गुरगमत गगन मंडल में ध्याना ना। बिखे रोग पय बंधन पागे मन निज कर सुख जाना ना। एक सुमत्रत जान मान प्राप्त दूसर मने ना आना ना। चंद्र बाज पय मन बासन त्या कट्यो अब माना ना। जो जन गाये त्याय ठाकुर तास प्रभु है थाना ना। ते बड़पा बस्यो मन जाके कर्म प्रधान मथाना ना। काढ़ सकत शिव सह प्रगास्यो एक एक समाना ना। कहे कबीर गुर पेट महासुख परम तरह मन माना ना। राग गौड़ी पूर्वी बावन

अक्षर लो त्रै सब कुछ इन की माग ए अखर खिर जाएंगे ओए अखर इन मैं नागे जा बोलते अक्षर आवा जय अबोल तय मन ना रखावा बोल अबोल मद है सोई जस ओ है तस लखे ना कोई अले लहो तो क्या कहो कहो ता को उपकार बड़क बीज मैं रव रहे हो जाको तीन लोग विस्तार अले लहंता पेद शय कश कह पायो भेद उल्ट भेद मन भेदयो पायो अपंग अछेद तुरक तरीक तजानिए हिंदू वेद पुराण मन समझावन कारण कशुक पढ़िए ज्ञान ओ अंकार आदमय जाना लिखर मेटे ताए न माना ओ अंकार लखे जो कोई सोई लख मिटना ना होई कक्का किरण कमल में पावा सद विकास संपट नहीं आवा हर जे तह कुछ मरस पावा आके कहा कह का समझावा खखा ए खोड़ मन आवा खोड़े शाड़ ना दैद सतावा खसमे जान खिमा का रहे तो होए नख्याओ अखय पदल है गग्गा गुर के भजन पछाना दूजी बात न तरई काना रहे बेहंगम कते ना जाई आगे गहे गह गगन रखाई तग्गा काट काट निमसे सोई काट फूटे कड़ कबे न होई।

आद करे भगत आरंभ, काया मंदर मनसा थंभ, अहिर अखंड सो रही जाए, तो अनहद बेण सहज मय बाय, सोमवार सज अमृत चरे, त्यागत बेग सगल बिखरे।

बुद्ध करे परगास, हृदय कामल मैं हर का वास, गुर मिल दो एक सम तरे, उर्द पंकले सूदा करे, बृहस्पति दिखिया दे बिहाय, तीन देव एक संगलाय, तीन नदी ते त्रिगुटी नागे, अंश कसमल तो वे नागे, सुकृत सहारे तो ए व्रत चढ़े, अंत ने आप आप स्यो लड़े, सुरखी पंचो राखे सब, तो दूजी दृष्ट न पैसे कबे, थावर थिर कर राखे सोए, जोत दी वट्टी कड़ में जोए, बाहर पीतर पया परगास, तब हुआ सगल कर्म का नास, जावला कट में दूजी आन, तौलो महल न लावे जान, रमत राम स्यों लागो रंग, कहे कबीर ता निर्मल अंग, राग गौड़ी चेती बाणी नाम दियो जियो की, एक ओंकार सदगुर प्रसाद देवा पान तारी ले, राम कहत जन कसना तरे, रघाओ तारी ले गनका बिन रूप कुबजा, ब्याल अजामल तारी ले, चरण बदक जन तेउ मुक्त पहे, औ बल बल जिन राम कहे, दासी सो जन बिद्र सुदामा, उग्रसैन को राज दिए, जापहीन तपहीन कोलहीन क्रमहीन, नामे के स्वामी तेउ तरे, राग गौड़ी रविदास जी के पदे, गौड़ी गुवारेरी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद, मेरी संगत पोत सोज दिन राती।

मन का अंधला माया का बंद खीन खराब होवे नित कंद खान जीवन की बहुती आस लेखे तेरे साध गिरास ऐस अंधले दीपक दे भौजले डूबता चिंत करे कहे सुने जो माने नाव।

सबना का सोई जे सकता सकते को मारे ता मन रोस न होई रहाओ सकता सियो मारे पै वगे कसमे सा पुरसाई रतन विगाड़ भगोए कुत्ती मोया सार न काई आपे जोड़ विछोड़े आपे वेख तेरी वड्याई जे को नाव तराए वड्डा साध करे मन पाणे खसमे नदरी कीड़ा आवे जेते चुगे दाने मर मर जीवे ता किश पाए नानक नाम खाने अराग आसा कर दूजा महला तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर दर्शन पावे वडपाग गुर के शब्द सच्चे बैराग खड़ दर्शन वरते वरतार गुर का दर्शन अगमे पार गुर के दर्शन मुक्त गद होए साचा आप वसे मन सोए रहाओ गुर दर्शन उदरे संसारा जे को लाए पाओ प्यारा पाओ प्यारा लाए विरला कोए गुर के दर्शन सदा सुख होए गुर के दर्शन मुख द्वार सदगुर सेवे परवार सधार निगुरे कहो गद काई नाही अवगुण मुठे चोटा खाही गुर के शब्द सुख सांत शरीर गुरमुख ताको लगे ना पीर जम काल ते नेड़ न आवे नानक गुरमुख साज सुमावे आसा महला तीजा शब्द मुआ विचू आप गवाए सदगुर सेवे तिल ना तुमाए निरपो दाता सदा मन होए सती बाणी पाए पाग कोए गुण संग्रह विचू अवगुण जागे पूरे गुर के शब्द समाह रहाओ गुणा का गाहक होवे सो गुण जाने अमृत शब्द नाम खाने साची बाणी सुचा होए गुण ते नाम प्राप्त होए गुण अमोलक पाए ना जागे मन निर्मल साचे शब्द समागे सेवड भागी जिन नाम ते आया सदा गुण दाता मन वसाया जो गुण संग्रह तिन बलिहारे जाओ दर साचे साचे गुण गाओ आपे देवे सहे सुपाए नानक कीमत कहन न जाए आसा महला तीजा सतगुर विच वड्डी वड्याई किरी मुछुने मेल मिलाई आपे मेले मेल मिलाए अपनी कीमत आपे पाए हर की कीमत किन विद होए हर अपरंपर अगम अगोचर गुर के शब्द मिले जन कोए रहाओ गुरमुख कीमत जाने कोए विरले कर्म प्राप्त होए ऊची बाणी ऊचा होए गुरमुख शब्द वखाणे कोए विण नावे दुख दर्द शरीर सागुर पेटे ता उतरे पीर बिन गुर पेटे दुख कमाए मनमुख बहुती मिले सजाए हर का नाम मीठा अतरस होए पीव तरह पी आए सो।

सोई जन जाने हर गुण सदगी आख वखाण जिन घर सेवया तिन सुब पाया सहजेगी घर नाम सुमाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोय तू कर कर वेख जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए।

आग हमारो अब हुन सोयो, कंत मिलियो मेरो सब दुख जोयो, आंगन मेरे शोभा चंद, निसबसर प्रे संग आनंद, बस्तर हमारे रंग चलूल, सगल अपर्ण शोभा कंठ फूल, प्रे पेखी दिट पाए सगल निधान, दुट दूत की चूकी कान, सद खुशियां सदा रंग माने,

माया मूठा चेत नाही, परमे पूला बोती राही, बाहर पेह करे कनेरे, अंतर बिखय उतरी केरे, आवर उपदेश आप ना बूझे, ऐसा ब्राह्मण कही ना सीजे।

रब रहे आपर सबके साथ, पूरा गुर पूरी बंत बनाई, नानक भगत मिली वडियाई। आसा मोहल्ला पंजवां, गुर के शब्द बनावो इहो मन, गुर कर दर्शन संचो हर तन, उत्तम मत मेरे हृदय तू आव, त्यावो गावो गुण गोविंदा, अत प्रीतम मोहे लागे नाव, रहाओ तृप्त अगामन साचे नाय, हर सड मजन संत तू राय, सामे जानो करता एक, साध संगत मिल बुद्ध विवेक, दास अगल का छोड़ अब महान, नानक कौ गुर दीनो दान। आसा मोहल्ला पंजवां, बुद्ध परगास पई मधपूरी, ताते बिनसी दुरमत दूरी, ऐसी गुरमत पाई अले, बूढ़द कोर अंधकूप मह, निकस्यो मेरे भाई रे, रहाओ मां अगा अगन का सागर, गुर भोयथ तारे रतनागर, दुत्तर अंध बिखम ए माया, गुर पूरे प्रगट मार दिखाया, जाप ताप कश उगत न मोरी, गुर नानक सरण।

पूरे, अंध भया सा मिटे रसूरे, हरहाओ जी जंत सगल सुख पाया, पार ब्रह्म नानक मन त्याया, आसा महला पंजवा बाशत नाही सो बेला आई, बिन हुक्मे क्यों बुझे बुझाई, ठंडी ताती मिट्टी खाई, ओ ना बाला बूढ़ा पाई, हरहाओ नानक दास साध शरणाई, गुर प्रसाद को पार पराई, आसा महला पंजवा सदा सदा आत्म परगास, साध संगत हर चरण निवास, राम नाम नित जप मन मेरे, शीतल शांत सदा सुख पावे, केलबक जाहे सबे मन तेरे, रहाओ कौ नानक जाके।

साध संग गुण गाए अतोली, हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा मोहल्ला पंजवा, काम क्रोध माया मद मस्तर, ए खेलत सब जुए गारे। सत संतोख दया धर्म सच, ए अपने ग्रह पीतर वारे। जन्म मरण चूके सब पारे, मिलत संग पयो मन निर्मल। गुर पूरे लेखिन में तारे, रहाओ सबकी रेन होए रे मनुआ। सगले दिसे मीत प्यारे, सब मध्ये रव्या मेरा ठाकुर। दान देत सब जी सम्हारे, एको एक आप एक एक, एक कहे सगला पासारे। जप जप होए सगल साल जन, एक नाम तय बहुत उधारे। गैर गंभीर बेंत गुसाई, अंत नहीं किश पारा वारे। तुमरी कृपा ते गुण गावे, नानक त्याए तय प्रभु को ना।

पार ब्रह्म का छोड़ चलिया एक दिहाड़े कर्म धर्म जुगत बो करता करणे हार न जाने उपदेश करे आप ना कमावे तत् शब्द ना पछाने नांगा आया ना गोजासी ज्यों हस्ती खाक शाने संत सज्जन

नहीं दरगह टोई, जम पुर जाए पचावे, निंदक ऐ ला जन्म गवाया, पहुंच न सके काहू बाते, आगे ठौर न पाया रहाओ। किरत पया निंदक बपरे का, क्या ओ करे बिचारा, तहां बेगूता ते कोई न रखे, ओ किस पे करे बुकारा, निंदकी गत तथु नागी, खसमे ए वे पाना, जो जो निंद करे संतन की, त्यों संतन सुख माना, संता टेक तुम्हारी स्वामी, तू संतन का सगाई, कहो नानक संत खरा रखे, निंदक दिए रुढ़ाई, आसा मोहल्ला पंजवा, बाहर तोय अंतर मल मैला, दोए ठौर अपने खोए, ईहां काम क्रोध मुए व्यापया, आगे मुस मुसरोए, गोंद पजन की मत है होरा, वर्मी मारी साप न मरी, नाम न सुई डोरा, रहाओ। माया की किरत छोड़ गवाई, भक्ति सार ना जाने, वेद शास्त्र को तर्कन लागा, तत् योग ना पछाने, उगर गया जैसे खोटा टबुआ, नदर सरापा आया, अंतरजामी सब के जाने, उसते कहां छुपाया, कूड़ कपट बंच ने मुनियादा, बिनस गया तद काले, सत सत सत नानक कहया, अपने हृदय देख समाले, आसा महला पंजवा, उदम करत होवे मन निर्मल, नाचे आप निवारे, पंच जनाले वस गद रख, मन में एक अंकारे, तेरा जान निरत करे गुण गावे, रबाब पखावज ताल कुंगुरु, अनगद शब्द वजावे रखाओ, प्रथमे मन पर बोध अपना, पाछे अवर दी जावे, राम नाम जप हृदय जप, मुक्ते सगल सुनावे, पर संग साधु चरण पखारे, संत तूर तन लावे, मन तन अर्प तरे गुर आगे, सत पदार्थ पावे, जो जो सुने पेखे लै सरदा, ताका जन्म मरण दुख पागे, ऐसी निरत नरक निवारे, नानक गुरमुख जागे, आसा महला पंजवा, अदम चंडाली पई ब्रह्मणी, सूदी ते सृष्टाई रे, पाताली आकाशी सखनी, लैबर बूजी खाई रे, घर की बलाई अबर सखाई, मूसा देख डराई रे, अज के वसगुर कीनो केहर, कुकर तने लगाई रे, रहाओ। बाज थूनिया छपरा थामिया, नी करया कर पाया रे, बिन जड़िए ले जड़ो जड़ावा, हेवा अचरज लाया रे, दादी दाद ना पहुंचन हारा, टूपी निरनो पाया रे, मार दुलीचे बैठी ले मृतक, नयन दखालन ताया रे, सोई अजान कहे मैं जाना, जानन हार नशाना रे, कहो नानक गुर अम्यो पी आया, रसक रसक बिरसाना रे, आसा महला पंजवा, बंधन काट बसारे औगुण, अपना बिरध संहारिया, होए किरपाल माध पित न्याई, बारग ज्यों प्रद पारिया, गुरसिख राखे गुर गोपाल, काढ़ लिये महापवजल ते, अपनी नजर निहाल रखाओ, जाके सिमरन जम ते छुटिए, हलत पलत सुख पाईए, साध गराज जपो जप रसना, नीत नीत गुण गाईए, भगत प्रेम परम पद पाया, साल संग दुख नाठे, छिजे न जाए ही पौ ना व्यापे, हर तन निर्मल गाठे, अंतकाल प्र पय सहाई, एत उतरा कनहारे, प्राण मीत हीर तन मेरे, नानक सब बलिहारे, आसा महला पंजवा, जा तू साहेब ता पौ केहा, हौ तुद बिन के सालाही, एक तू ता सब किश है, मैं तुद बिन दूजा नाही, बाबा बिग देख्या संसार, रख्या करो गुसाई मेरे, मैं नाम तेरा आधार, रहाओ। जाने बिरथा सभा मन की, और किस पे आग सुनाइए, विण नावे सजर बौराया, नाम मिले सुख पाइये, क्या कहिए इस आग सुनाइए, जे कहना सो प्रभु जी पास, सब कुछ कीता तेरा वर्त, सदा सदा तेरी आस, जे दे वड्याई ता तेरी वड्याई, एत ओत तुझे ते आओ, नानक के प्रसदा सुखदाते, मैं तान तेरा एक नाओ, आसा महला पंजवा, अमृत नाम तुम्हारा ठाकुर, इहो महारस जने पियो, जन्म जन्म टूके पै पारे, दुर्त बिनासियो परम बियो, दर्शन पेखत मैं जियो, सुनकर भजन तुम्हारे सतगुर, मंतन मेरा ठार थियो,
रहाओ, तुमरी कृपा ते पयो साध संग, यो काय तुम आप कियो, दृढ़ कर चरण गए प्रा तुमरे, है जे विखिया पई कियो, सुखन दान नाम प्रा तुमरा, यो अविनाशी मंत्र लियो, हर कृपा में सतगुर दीना, ताप संताप मेरा बैर गियो, तन सो मानस देही पाई, जित प्रभ अपने मेर लियो, तन सो कलयुग सा संकीर्तन गाई है, नानक नाम आधार हीओ, आसा महला पंजवां, आगे ही ते सब किशुआ, अवर के जाने ज्ञाना, पूर चूक अपना बार्ग बक्सेया, पार ब्रह्म भगवाना।

आई जो प्रभु जी मन पानी तू दाना तू सद मेहरवाना ना मिले रंग माणी तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाओ न जाने मेरा आसा महला पंजवा कर कृपा प्रभ अंतर जामी सा संग हर पाईए खोल किवार दिखाले दर्शन पुनरप जन्मन आईए मिलो प्रीतम स्वामी अपने सगले दुख हर ओरे पार ब्रह्म जन दे आराध्या ताके संग तरोरे रहाओ मां उद्यान पाव सागर पे हरग सोग में बसना सदगुर पेट पया मन निर्मल जप अमृत हर रसना तान तन थाप कियो सब अपना कोमल बंधन बंधया गुर प्रसाद पय जनमुक्ते हर हर नाम आराध्या राख लिये प्रभ राखन हारे जो प्रभ अपने पाणे जियो पिंड स तुमरा दाते नानक सद कुरबाणे आसा महला पंजवा मोह मलन नी ते छुटकी कौन अनुग्रह पयोरी महामोनी तुद ना व्यापे तेरा आलस कहां गयोरी रहाओ काम क्रोध अंकार गाखरो संजम कौन छुट्योरी सुर नर देव असुर त्रै गुनिया सगलो पवन लुट्योरी दावा अगन बहु तृण जाले कोई हरिया बूट रहोरी ऐसो समरथ वर्ण न साको ताकि उपमा जात ना कहोरी काजर कोठ में पई नकारी निर्मल वर्ण बनेओरी मां मंत्र गुर हृदय बस्यो अजर दे नाम सुनेओरी कर कृपा पर नजर अवलोकन अपने चरण लगाई प्रेम भगत नानक सो पाया साधु संग समाई एक ओंकार सदगुर प्रसाद राग अस कर सतवा महला पंजवा लाल चोलना तय तन सोया तुरजन पानी ता मन मोया कवन बनी री तेरी लाली कमल रंग तू पई गुलाली रहाओ तुम ही सुंदर तुम्हे सुहाग तुम कर लालन तुम कर भाग तू सुवंती तू प्रधान तू प्रीतम पानी तू ही सुर ज्ञान प्रीतम पानी ता रंग गुलाल कहो नानक शुभ दृष्ट निहाल सोनरी सखी ए हमरी काल प्रभ आसीगा सवारन हार रहाओ दूजा आसा महला पंजवा दुख कनो जब होते दूर आ मसलत मुझे मिली हदूर चुका निहोरा सखी सहेरी परम गया गुर पिर संग मेरी रहाओ निकटियान प्रे से तरी तान कटन ते शूट परी मंदर मेरे शब्द उजारा अंध बेनोदी खसम हमारा मस्तक पाक मैं फिर कर आया फिर सुहाग नानक जन पाया आसा महला पंजवा सात नाम मेरे

गुरपूरे के चरण गए, कोट जन्म के पाप लहे, रतन जन्म यो सबल पया, कहो नानक प्रभु करी माया, आसा महला पंजवा। सतगुर अपना साध सदा सम्हारे, गुर के चरण के संग चारे, जाग रे मन जागन हारे, बिन अवर न आवस कामा, झूठा मोह मिथ्या पसारे, हरहाओ गुर की बाणी सो रंग लाए, गुर किरपाल होए दुख जाए, गुर बिन दूजा ना ही ताओ, गुर दाता गुर देवे नाओ, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप, आठ पैर नानक गुर जाप, आसा महला पंजवा। आपे पेड़ विस्तारी साख, अपने खेती आपे राख, जद कद पेखो एक ओगी, कड़कड़ अंतर आपे सोई, हरहाओ आपे सूर किरण विस्तार, तोई गुप्त सोई आकार, सरगुण निर्गुण थापे नाव, दो मिल एक की नो ठाव, कहो नानक गुर ब्रह्म पखोया, अंद रूप सब नयन अलोया, आसा महला पंजवा। उगत सियानप किशु न जाना, दिन रहन तेरा नाम मखाना, मैं निर्गुण गुण ना ही कोय, तरन करावन हार प्रसोय, रहाव मूर्ख मुग्ध अज्ञान विचारी, नाम तेरे की आस मन तारी, जब तब संजम कर्म न साधा, नाम प्रभु का मने अराधा, किशु ना जाना मत मेरी तोरी, विनवत नानक ओड प्रातोरी, आसा महला पंजवा। हर हर अखर दोए ए माला, जबत जबत पै दीन दयाला, करो बेनती सदगुरे अपनी, कर कृपा रखो सरनाई, मुको देव हरे हर जपनी, हरहाओ हर माला और अंतर तारे, जन्म मरण का दुख निवारे, हृदय संभाले मुख हर हर बोले, सो जान ए तुत कते न डोले, कहो नानक जोरा चय नाए,

ते आवे तेरी माया, सिमरत नाम सगल रोग खया, हरहाओ अनक दुख देवे अवरा कहो, पहुंच न सके जन तेरे कहो, दर्श तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद बसे बैरागी, नानक की अरदास सुनीजे, केवल नाम हृदय मैं दीजे, आसा महला पंजवा, मन तृप्तानु मिटे जंजाल, प्रभ अपना होया कृपाल, संत प्रसाद परी बनी, जाके गृह सब किस गए पूर्ण, हो फेटिया।

ताका चवर सब ऊपर चूल ले, ताका तूप सदा प्रफुल ले, काट काट संपट भय रे जाका, अपाग सब संघ है सदा, आरती कीर्तन सदा आनंद, महिमा सुंदर सदा बेअंत, जिसे प्राप्त तिस ही लेना, संत चरण ओ आयो सरना, आचर

ऐसी स्त्री एक राम उपाई, उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे पाई। रहाओ पाठ गौरी सब जग जोया, ब्रह्मा विष्णु महादेव मोया, गुरमुख नाम लगे से सोया, वर्त नेम कर थाके पुनः चरना, तट तीर्थ पवे सब तरना, से उबरे ये सदगुर की सरना, माया मोहे सबो जग बाधा, हमे पचे मनमुख मुँह राखा, गुरु नानक बाँ पकड़ हम राखा, आसा महला पंजवा, सर्व दुख जब सरे स्वामी, ईगा उहा कामना प्राणी, संतर्पता से हर घर त्याय, हर कृपा अपने नाए लाए, सर्व सुख पर तुमरी रिजाए, रहाओ संग होवत को जांत दूर, सो जन मरता नित नित चूर, जिन किसी दिया ते चित्त नाहे, मां बिखिया में दिन रहन जाहे, कहो नानक प्रसिमरो एक, गद पाएगे गुर पूरे टेक, आसा महला पंजवा, नाम जपत मन तन सब हरिया, काल मर दोख सगल पर हरिया, सोई दिवस पला मेरे पाई, हर गुण गाए परम गद पाई, रहाओ साध जना के पूजे पैर, मिटे उपद्रे मन ते बैर, गुर पूरे मेल चगर चुकाया, पांच दूत सब वसगत आया, जिस

बंधन काट सेवक कर राखे, अमृत बानी रसना चाखे, वडे भाग पूज गुर चरना, सगल प्यार पाई प्रसरना, गुर नानक जाको पया दयाला, सो जन होआ सदा निहाला, आसा महला पंजवा, सतगुर साचे दिया भेज, चिर जीवन उपजिया संजोग, उदरे माए आए किया निवास, माता कै मन बहुत विगास, जम्या पूत भगत गोविंद का, प्रगटिया सामे लिखिया तुरका, रहाओ दसी मासी हुकुम बालक जन्म लिया, मिटिया सोग महा आनंद चिया, गुरबाणी सखी आनंद गावे, साचे साहिब कै मन भावे, वदी वेर बो पीढ़ी चाली, धर्म कलागर बंद बहाली, मन चिंदिया सदगुरु दिवाया, पय अचिंत एक लिवलाया, ज्यो बालक पिता ऊपर करे बहुमान, बुलाया बोले गुर के पान, गुजी शनी नाही बात, गुरु नानक तुठा की नी दात, आसा महला पंजवा, गुरपुरे राख्या दे हाथ, प्रगट पया जन का प्रताप, गुर गुर जपी गुरु गुर त्याई, जी की अरदास गुरु पे पाई, रहाओ शरण परे साचे गुरदेव, पूर्ण होई।

ओंकार सदगुर प्रसाद मैं बंदा बैखरीद सच साहिब मेरा जियो पिंड सब किसद सब किश है तेरा मान निमाने तू तनी तेरा परवासा बिन सचे अनटेक है सो जानो काचा रहाओ तेरा हुक्म अपार है कोई अंत न पाए जिस गुरपूरा पेड़ सी सो चले रजाए चितराई सियाणपा किते काम न आई है तुठा साहेब जो देव है सोई सो पाई है जे लह कर्म कमाई है ई पवे ना बंधा जन नानक कीता नाम तार होर छोड़िया तंदा आसा महला पंजवा सर सुखा में पालिया हर जेब न कोई गुर तुठे ते पाई है सच साहेब सोई बलिहारी गुरे अपने साध सर कुरबाना नाम ना विसरो एकन चसा यो कीजे दाना रहाओ भागट सच्चा सोए है जिहर तन अंतर सो छूटे महा जालते जिल गुर शब्द निरंतर गुर की महिमा क्या कह गुर विवेक सत सार हो आजुगा दी जुग है जुग पूरा परमेश्वर नाम ते आवो सत सदा हर घर मन रंगे जियो प्राण तन गुरु है नानक के संगे आसा महला पंजवा साई अलख पार भोरी मन वसे दुख दर्द रोग माए मैंडा हब नसे हो वन्या कुर्बान साई अपने होवे अंधकणा मन तन जापने रहाओ बिंदक गाल सुनी सचे तिस तनी सुखी हूं सो पाए माए ना कीम गणी नैन पसंदो सोए टेख मुस्ताक पही मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई बेक तेव संसार हब्बा हूं बहारा नानक का पातशाह दिसे जहारा आसा महला पंजवा लाग भगत आराध्य जब ते पियो पियो कवन जूत में लावो निर्गुण बखई जियो तेरी टे गोविंद गोपाल दयाल प्रभ तू सबना के नाथ तेरी सिट सब रहाओ सदा सहाई संत पेखे सदा हजूर ना बिहूनड़िया से मरन वेसूर वेसूर दास दासन पाए मिटिया तिना गौन विसरिया जिन्ना नाम तिनाड़ा हाल कौन जैसे पस हरे आओ तैसा संसार सब नानक बंधन काट मलाव आ प्रभ आसा महला पंजवा हब्बे थोक विसार हिको ख्याल कर झूठा लाए गुमान मंत्र अर्प तार आड़ पैर सार आहे सिरजनहार तू जीवा तेरी दात किरपा करो मुंह रहाओ तोई कम कमाए जित मुख उजला सोई लगे सच जे तू दे अला जो न टहंदो मूल सो कर रस कर इको चित वसाए कदे ना जाए मर तिना प्यारा राम जो प्रा पाणिया गुर प्रसाद अकथ नानक वखाणिया आसा महला पंजवा जिन्ना ना विसरे नाम से कनेहा खेद न जानो मूल साई देया मन तन होए निहाल तुम संग पेटिया सो पाया जन प्रसाद दुख सब मेटिया रहाओ जेते खंड ब्रह्मांड उधारे तिनखे जिन मन मुठा आप पूरे भगत से जिसनु मने आप सोई मानिए प्रगट पुरख प्रवान सब ठाई जानिए दिन सरैन आरात संभाले साहा सहा नानक की लोचा पूर सचे पात सह आसा महला पंजवा पूर रहा सर्वठाए हमारा खसम सोए एक सहब सिर छत दूजा ना है कोय जो पावे त्यों राख रखन हारिया तुय बिन अवर न कोय नदर निहारिया रहाओ प्रद पाले प्रवे आप धड़कड़ सारिये जिस मन उठा आप तिस नाम सारिये जो करे सो आप अपन पाणिया भगता का सहाई जुग जुग जानिया जप जप हरका नाम कदे ना चूरिये नानक दर्स प्यास लोचा पूरिये आसा महला पंजवा क्या सोवे नाम सार गाफल गह लिया किती ए दरियाए वंजन वहन्दिया बोतड़ाहा चरण मन चढ़ लंगीए आड़ पैर गुण गाए साधु संगीए रहाओ भोगे भोग अनेक विण नावे सुनिया हर की भगत बिना मर मर रुनिया कपड़ पो सुगंध तन मर्दन मालना बिन सिमरन तन शार सर पर चालना
ਮਾਂ ਵਿਗਮ ਸੰਸਾਰ ਵਿਰਲੇ ਪੇਖਿਆ ਛੂਟਣ ਹਰ ਕੀ ਸਰਣ ਲੇਖ ਨਾਨਕ ਲੇਖਿਆ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੀ ਸੰਗ ਕਾਹੇ ਗਰਬੀਏ ਏਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਪੌਜਲ ਤਰਬੀਏ।

तद गीते बंदा गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा जावला हुक्म ना बूझता तभी लो दुखिया गुरम हुक्म पछाणिया तभी ते सुगिया ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा गुर की सेवा सेवको नानक खसमे बंदा आसा महला पंजवा सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ गृह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ बलिहारी गुरे अपने साध सद बल जाओ गुरु विटो हो वारिया जिस मिल सच सुवाओ रहाओ सागन अपसागन किसको लग गए जे चीत न आवे।

मार्ग पंथ सुम्हारी ना दृढ़ गुरमन में दिया मोरी तसा बुझारी बिन पी गावो रह नहीं गावो गावो सास सास रसनारी सत्संगत में विश्वास होए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक कहो त्यो दान दो प्रभ पावो संतरेन उरतारी श्रवणी कथा नयन दर्श देखो।

आवे, सेवक कौ निकटी हुए दिखावे, जो जो कहे ठाकुर पै सेवक तत्काल हुए आवे। रहाओ तिस सेवक के हों बलिहारी, जो अपने प्रभावे, तिस की सोए सुनी मन हरिया।

नटुआ पे दिखावे बहु विद, जैसा है ओ तैसारे, अनक जोन प्रम्यो प्रांपीतर, सुखे नहीं परवे सारे, साजन संत हमारे मीता, बेन हर हर अनीता रे, सा संग मिल हर गुणगा।

मो कुटुंब बिखे रसमते मिथिया गहन गहे मिथन मनोरथ शोभन आनंद उलास मान मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संग तेल मर्म ना लहे कर कृपा रखे सत्संग नानक शरण आहे आसा महला पंजवा ए पदे ओहा प्रेम प्री हरहाओ कनक मानक गज मोती न लालन नह नहा नहीं राजन पागन हुकुम न साधन किश किश न चाही चरणन शरणन संतन बंदन सुखो सुख पाही नानक तप्त हरी मिले प्रेम प्री आसा महला पंजवा गुरे दिखायो लोए न रहाओ ईत ऊत कट कट कट कट तू ही मोहना कारण करना तारण करना एक सोयना संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोयना आसा महला पंजवा हर घर नाम अमोला ओ सहज सुहेला रहाओ संग सहाई छोड़ न जाई ओ अगह अतोला प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओला अलख लखाया गुरते पाया नानक ओ हर का चोला आसा महला पंजवा अपनी भगत निभागे ठाकुर आयो आहे हरहाओ ना पदार्थ हुए सकारत हृदय चरण बसाहे ये मुक्ता ये जूता रखो संत संगाहे।

आया सेवक माया गौन रस रस गावे एक है अस दर्स ते अस आन ना पावे दया तुहारी क्या जंत विचारी नानक बल बल जावे आसा महला पंजवां एक सिमर मन माही रहाओ नाम ते आवो हृदय बसाओ जिबन को नाही प्रसरणी आईगे सर्व फल पाई है सगले दुख जाही जीन को दाता पुरख बेधाता नानक कड़ कड़ आही आसा महला पंजवां हर बिसरत सो मुआ रहाओ नाम ते आवे सर्व फल पावे सो जन सुखिया हुआ राज कहावे हों कर्म कमावे बाध्यो नलनी प्रंसुआ कहो नानक जिस सतगुर केटिया सो जन ने चलतिया आसा महला पंजवां कर चौदवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद ओह निहो नवेला अपने प्रीतम स्यों लाग रहे रहाओ जो प्रापावे जन्म न आवे हर प्रेम भगत हर प्रीत प्रचय प्रसंग मिलीजे यो मन दीजे नानक नाम मिले अपनी दया करो आसा महला पंजवां मिल राम प्यारे तुम बिन तीरज को ना करे रहाओ सिमरत शास्त्र बहु कर्म कमाए पर तुमरे दर्श बिन सुख नाही वर्त नेम संजम कर थाके नानक साध शरण प्रभु संग वस आसा महला पंजवां तार पंद्रवां पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद विकार माया माद सोयो सूझ बूझ ना आवे पकर केस जम उठारियो तही कर जावे लोभ विखिया विखे लागे हर विदचित दुखाही खिर पंगना के मान माते असुर जाने नागी रहाओ वेद सतर जन पुकारे सुने नाही डोरा निपट बाजी हार मुका पछतायो मन पोरा ध्यान सगल गैर वजे परया दीवान लेखे ना परे जे कार्ज रहे उल सोए काम ना करे ऐसो जग हुए बुरे दिखायो तो एक कीर्त गाया मान तान असयान सर नानक आया आसा महला पंजवां बापार गोविंद नाए साध संत मनाए प्रे पाए गुण गाए पंच नाद तूर बजाए रखाओ कृपा पाए सह जाए दर्शाए अबरात्या गोविंद स्यों संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए गुर ज्ञान मन दृढ़ाए रहसाए नहीं आए सह जाए मन धान पाए सब तजी मन की काम करा चेर चेर चेर चेर पया मन बहुत प्यास लागी हर दर्शनों दिखावो मुझे तुम बतावो नानक दीन शरण आए गल लाए आसा महला पंजवां।

अनप्राणः रवयो सर्वथानः लयो जं पयानः पायो पेड़ थानः तो चुकी सगल कान लैनो जिस मथानः पय पावक पार प्राणः निकर्त से थानः हार रस रसे मानः लाती त्रिपुगानः नानक सह सुमायो रे मना आसावरी महला पंजवा हर हर हर गुणीगा जपिगे सहज तुनीगा साधु रसन पनीगा छूटन बिद सुनीगा

संत उपदेसया मेरे बण, जे जन नाम सुख हा तेस निकट ना कदे दुख हा, जो हर हर जस सुनेगा सब को तस मन्नेगा, सफल सु आया हा नानक प्रपाया मेरे मन। आसावरी महला पंजवा, मेर हर जगाइए हा परम पद पाइए हा, हुआरा जो विदेगा ताको सगल सिद्धेगा, अनदन जागया हा नानक बड़भाग्या मेरे मन। हरहाओ संत भगत होइए हा दुरमत खोइए हा, दस रेन होए हा व्यापे दुख न कोए हा, भगता शरण पर हा जन्म न कदे मर हा, अस्त्र से पए हा हर हर।

अंतर बार अवर ना कोए, जोत पावे सो पुन होए, तुन परतर नानक कहे विचार, निर्मल नाम मेरा आधार, आसा महला पहला, सब जाप, सब ताप, सब चतराई, उजड़ पर में रहे न पाई, बिन बुझे को थाए न पाई, ना बिहुने माते शाई, साज तड़ी, जग आए बिनासा, छूट प्राणी गुरमुख दासा, अरहाव जग में बदा भोती आसा, गुरमती एक पै उदास, अंतर नाम कमल परगास, तिन को नागी जमकी त्रास, जग त्रे जित कामण हितकारी, उत्तर कलत्र लग नाम सारी, बिरथा जन्म गवाया बाजी हारी, सदगुर सेवे करनी सारी, बारो होमे कहे कहाए, अंदरों मुक्त लेप कदे ना लाए, माया मोह गुर शब्द जलाए, निर्मल नाम सद हृदय त्याए, ताप राखे ठाक रखाए, सिख संगत कर्म मिलाए, गुर बिन पुलो आवे जाए, नदर करे संजोग मिलाए, रूड़ो कहो न कहे आ जाए, अकथ कहो न कीमत पाई, सब दुख तेरे सूखर जाई, सब दुख मिटे सत्य नाई, कार बिन वाजा पग बिन ताला, जे शब्द बुझे ता सच निहाला, अंतर साच सबे सुख नाला, नदर करे राखे रखवाला, तिर पवन सूजे आप गुवावे, बाणी बुझे सच सुमावे, शब्द विचारे एक लिवतारा, नानक तन सुवारण हारा, आसा महला पहला, लेख असंख लेख लेख मान, मन माने सच सुरत वकान, कथनी बदनी पढ़ पढ़ पार, लेख असंख अलेख अपार, ऐसा साचा तू एक को जान, जमन मरण हूं पछाण, रहाओ माया मोहे जगबादा जमकाल, बंदा शूटे नाम समाल, गुरसुख दाता अवर न पाल, हलत पलत निर्गी तुद नाल, सद मरे ता एक लिवलाए, अचर चरे ता परम चुकाए, जीवन मुक्त मन नाम साए, गुरमुख होए ता सच सुमाए, जिन तर साजी गगन आकाश, जिन सब तापी ताप उताप, सर्ब निरंतर आपे आप, किसे ना पूछे बगसे आप, तू पुर सागर मानक हीर, तू निर्मल सज गुणी गहीर, सुख माने पेटे गुरपीर, एको साहेब एक वजीर, जग बंदी मुक्ते हो मारी, जग ज्ञानी विरला आचारी, जग पंडित विरला विचारी, बिन सगुर पेटे सा फिरे अंकारी, जग दुखिया सुखिया जन कोय, जग रोगी भोगी गुण रोए, जग उपजे बिन से पल खोए, गुरमुख होवे बूझे सोए, महंगो मोल पार अपार, अटल अछल गुरमती तार, पाए मिले पावे पैकार, नानक नीच कहे विचार, आसा महला पहला, एक मरे पंचे मिल रोवे, हौ में जाए शब्द मल तोवे, समझ सूझ सहज कर होवे, बिन बूझे सगली पर खोवे, कौन मरे कौन रोवे ओही, कारण कारण सबसे सिर तोही, रहाओ मुए कौ रोवे दुख कोए, सो रोवे जिस बेदन खोए, जिस बीती जाने प्रस होए, आपे करता करे सुहोए, जीवित मरना तारे तरना, जय जगदीश परमगल सरना, हौं बलिहारी सदगुर चरणा, गुर बोहेत शब्द पै तरना, निरप आप निरंतर जोत, बिन नावे सूत।

दिन नावे मन झूठ अनीते कहां चलो मन रहो करे गुरमुख राम नाम तृप्तासे खोजत पाओ सहज हरे हरहाओ काम क्रोध मन मोह शरीरा लब लोभ अहंकार सुपीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा अंतर नाम साच पछाणे अंतर की गात गुरमुख जाने साज शब्द बिन मैल ना पछाणे निरंकार में आकार समावे अकल कला सज साज टिकावे सोनर गर्भ जोन नहीं आवे जहां नाम मिले तह जाओ गुर प्रसादी कर्म कमाओ नामे राता हर गुण गाओ गुर सेवा ते आप शाता अमृत नाम स्या सुखदाता अनदन बाणी नामे राता मेरा प्रलाए ता को लागे होमे मारे सब दे जागे ऐथे उथ सदा सुख आगे मन चंचल बिद ना ही जाने मनमुख मैल शब्द ना पछाणे गुरमुख निर्मल नाम खाणे हर जू आगे करी अरदास साधु जन संगत हुए निवास किल दुख काटे हर नाम प्रगास कर विचार आचार पराता सदगुर बचनी एको जाता नानक राम नाम मन राता आसा महला पहला मन मैगल सागत देवाना बन खंड माया मोहे हैराना एक तुत जाहे काल के चापे गुरमुख खोज लहे कर आपे बिन गुर शब्दे मन नहीं ठौरा सिमरो राम नाम अत निर्मल अवर त्यागो होमे कौरा रहाओ यो मन मुगध कहो क्यों रहसी बिन समझे जम का दुख सहसी आपे बगसे सदगुर मिले काल कंटक मारे सज पेले यो मन कर्मा यो मन तर्मा यो मन पंच तद ते जन्मा सागत लोभी ओ मन मूड़ा गुरमुख नाम जपे मन रूड़ा गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख तेरे पमन सोजी होई यो मन जोगी भोगी तब तप गुरमुख तीने हर प्रवे आपे मन बैरागी होमे त्यागी कड़ कड़ मनसा दुबदा लागी राम रसायन गुरमुख चाखे दार कर मैलनी हर पत राखे यो मन राजा सूर संग्राम यो मन निरपो गुरमुख नाम मारे पंच अपने वस किए होमे ग्रास एक दिथाय किए गुरमुख राग स्वाद अन त्यागे गुरमुख यो मन भगती जागे अनघ सुन मान्या शब्द विचारी आत्मा चीन पय निरंकारी यो मन निर्मल दर कर सोई गुरमुख भगत पाओ तन होई अहे निस हर जस गुर प्रसाद कड़ कड़ सो प्रभ आ जुगात राम रसायन यो मन माता सर्ब रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के दासन दासा आसा महला पहला तन बिन से तनका को कहिए बिन गुर राम नाम कत लईए राम नाम तन संग सगाई आयरस निर्मल हर लिवलाई राम नाम इन कमन हमारा सुख दुसम कर नाम न छोड़ो आपे बगस मिलामन हारा अरहाओ कनक कामनी हेत गवारा दुबदा लागे नाम सारा जिस तू बगसे नाम जपाए दूत ना लाग सके गुन गाए हर गुरदाता राम गोपाला क्यों पावे त्यों राख दयाला गुरमुख राम मेरे मन पाया रोग मिटे दुख ठाक रगाया आवर न औखद तंत न मंता हर घर सिमरन केल वखंता तू आप भुलावे नाम सार तू आपे रखे कृपा तार रोग परम पेद मन दूजा गुर बिन परम जपे जप दूजा आदि पुरख गुर दर्शना देखे बिन गुर सब दे जन्म के लेख देख अचरज रहे बिस्माद कट कट सुर नर सह समाध परपुर तार रहे मन माही तुम संसर अबर को नाही जा की भगत हेत मुख नाम संत भगत की संगत राम बंधन तोरे सहज त्यान छूटे गुरमुख हर गुर ज्ञान ना जमदूत दूत लागे जो जन राम नाम लिव जागे भगत वचल भगता हर संग नानक मुक्त पय हर रंग
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਤੁਕੀ ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੋ ਠਾਕੁਰ ਜਾਣੇ ਦੁੱਖ ਮਿੱਟੇ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੇ ਆਰਾਮ ਜਪੋ ਮੇਰੀ ਸਖੀ ਸਖੈ ਨੀ ਤਦ ਗੁਰਸੇਵ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਣੈ ਨੀ ਰਹਾਓ ਬੰਧਨ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੰਸਾਰ ਬੰਧਨ

नीत नीत कर बंधिए जे रहना होई, पिंड पवे जीव चरसी जे जाने कोई, ओही ओही क्या करो है होसी सोई, तुम रोवोगे ओसनो तुमको कौन रोई, धंधा पिट्यो पाई हो तुम कूड़ कमावो, ओ ना सुनी कथी तुम लोक सुनावो, जिते सुत्ता नानका जागा ए सोई, जे कर बूझे अपना ता नींद ना होई, जे चलदा ले चल्या केश संपे नाले, ता तन संचो देख के बूझो बीचारे, वंज करो मसूद लहो

तनी साचा मुख नाम रखाओ। सिद्धा सेवन सिद्ध पीर मांगे रिद सिद्ध, मैं एक नाम ना विसरे साचे गुर बुद्ध। जोगी पोगी कापड़ी क्या पवे दिसंतर।

एक गर्भ बन जाएंगे। मन मुखिया सिर मार वादक पाई है, ठग मुठी कूड़ियार बन चलाई है। साहिब हृदय बसाए न पछोताव ही, गुण गा बख्सनहार शब्द कुमाव ही। नानक मंगे सच गुरमुख खाली है, मैं तुझ बिन अवर न कोए नदर निहाली है। आसा महला पहला क्या जंगल ढूंढी जाए, मैं कर बन हरियावला सच टिके कर आए शब्द उतावला। जय देखा तैसोए अवर न जानिए, गुर की कार कुमाए मैल पछाणिए। रहाओ आ मिलावे सच ता मन पावई, चले सदार जाए अंक समावई। सच्चा साहिब मन वसे वस्या मन सोई, आपे दे वड्याईया दे तोट न होई।

नाम अमोलह तू उत्तम हो नीच सेवक कांडिया नानक नदर करे हो मिले सच वांडिया आसा महला पहला आमन जाना क्यों रहे तो मिला होई जन्म मरण का दुख कणो निर्शेषा दोई बिन नावे क्या जीवना फिट त्रिगच तराई सदगुर साध ना सेवया हर भगत ना पाई हरहाओ आमन जामन तौ रहे पाइये गुरपूरा राम नाम तन रास दे बिन से प्रमकूरा संत जिना को मिल रहे तान तान जस गाये आदि पुरख अपरंपरा गुरमुख घर पाए नडुए सांग बनाया।

दास तुम्हारे रिस प्राण आधारी ताके रूप न जागी लखने क्या कर आग विचारी तीन गुणा तेरे जोगी अंतर प्यारे तेरी आखाणी कर्म होवे ता परम पद पाइये कथे अकथ कहानी तू करता किया सब तेरा क्या को करे प्राणी जा को नदर करे तू अपनी साई सच समाणी नाम तेरा सब कोई लेत है जेती आमन जानी जान तो पावे ता गुरमुख बूझे होर मनमुख फिरे ए आणी चारे वेद ब्रह्मे को दिए पढ़ पढ़ करे विचारी ताक मना बूझे बपड़ा नरक सुर्ग अवतारी जुगे जुगे के राजे किए गावे कर अवतारी इन पी अंत न पाया ताका क्या कर आग विचारी तू सच्चा तेरा किया सब साचा देता साच वखाणी जा को सच बुझावे अपना हृदय नाम समाणी आसा मोहल्ला तीजा सदगुर हमरा परम गवाया हर नाम निरंजन मन वसाया शब्द चीन सदा सुख पाया सुन मन मेरे तत् ज्ञान देवन वाला शब्द जाने गुरमुख पाएगे नाम निधान रहाओ सतगुर भेटे की वडियाई जिर ममता अग्न तृष्णा बुझाई सहजे माता हर गुण गाई बिन गुर पूरे कोए न जानी माया मोहे दूजे लोभाणी गुरमुख नाम मिले हर बाणी गुर सेवा तपा सिर तप सार हर जीव मन वस सब दुख विसारण हार दर साचे दिसे सत्यार गुर सेवा ते तिरपावन सोजी होए आप शान कर पावे सोए साची बाणी महल प्राप्त होए गो सेवा ते सब कुल उधारे निर्मल नाम रखे उर तारे साची शोभा साग दुआरे सेवड़ भागी जे गुर सेवा लाए आन दिन भगत सच नाम दृढ़ाए नामे उधरे कुल सबाए।

तीजा अष्टपदिया कर अठवा काफी गुरते सांग उपजे जिन कृष्णा अगन बुझाई गुरते नाम पाइये वड्डी वड्याई एको नाम चेत मेरे पाई जगत जलंदा देख के पर पै शरणाई।

नाम ते आई है, ज्ञान प्रगट होए, ए मन मत जाने हर दूर है, सदा वेख अधूर, सद सुनदा सद वेखदा, शब्द रहा भरपूर रहाओ, गुरमुख आप पछाणिया, तिनी एक मन ध्याया, सदा रवे तेरे अपना, सच्चे नाम सुख पाया, ए मन तेरा को नहीं, कर वेग शब्द विचार, हर सरनाई पज पौ पाए मोह द्वार, सब सुनिए शब्द बुझिए, सच रखे लिवलाए, सब देखो में मारिए, सच्चे महल सुख पाए, इस युग में शोभा नाम की बिन नावे शोभ न होए, ए माया की शोभा चार दिहाड़े जांदी बिलम न होए, जिन्नी नाम सारिया से मोए मर जागे, हर जात न आयो दिष्टा माए सुमाए, एक आपे बक्स मलायन अनदन नामे लाए, सच कुमारे सच रहे सच्चे सच सुमागे, बिन शब्दे सुनिए ना देखिए, जग बोला अन्ना परमाए, बिन नावे दुख पाए सी ना मिले तसे रजाए, जिन बाणी से चित लाया सेज निर्मल परमान, नानक नाम तिना कदे ना विसरे ते दर सच्चे जान, आसा महला तीजा शब्दो ही भगत जाप दे, जिनकी बाणी सच्ची होए, विचू आप गया नव मनिया सच मिलावा होए, हर हर नाम जन की पत होए, सब तिना का जन्म है तिन माने सब कोए, रहाओ हमे मेरा जात है अत क्रोध अवमान, सब मरे ता जात जाए ज्योति ज्योत मिले भगवान, पूरा सदगुर फेटे सबल जन्म हमारा, नाम न मेरे दे पाया परे अखुट पंडारा, आवे इस राशि के वापारिये जिन्ना नाम प्यारा, गुरमुख होवे सो तन पाए तिन अंतर शब्द विचारा, भक्ति सार ना जाननी मनमुख अहंकारी, तुरु आप खुआयन जुए बाजी हरी, बिन प्यारे भगत न होवई ना सुख होए शरीर, प्रेम पदार्थ पाईए गुर भगती मन तीर, जिसनु भगत कराए सो करे गुर शब्द विचार, हृदय एको नाम से होमे दुबदा मार, भगता की जद पत एको नाम है आपे लए सवार, सदा शरणाई तिसकी ज्यों पावे त्यों कार्ज सार, भगत नराली अलहादी जापे गुर विचार, नानक नाम है।

साध संग हर हर जपत निर्मल साची रीत रखाओ दर्शन की प्यास घणी चितवत अनक प्रकार तरो अनुग्रो पार ब्रह्म हर कृपा तार मुरार मन परदेसी आया मिलो साध के संग जिस वखर को चाहता सो पायो नम है रंग जेते माया रंग रस बिरस जाए खिन माहे भगत रते तेरे नाम से सुख पुंचे सब ठाए सब जग चल तो पेकिए नेचल घर को नाओ तर्म तराई सास्यो नेचल पा बैठाओ मीत साजन सुत बंद पर को होत ना साथ एक निवाहू राम नाम दीना का प्रभनाथ चरण कमल भोयत पये लग सागर तरे होते हे पेट्यो पूरा सदगुरु साचा प्रस्यो नेह सा तेरे की जाचना विसरना सास गिरास जो तु पावे सो फला तेरे पाने कार्ज रास सुख सागर प्रीत मिले उपजे महा आनंद कहो नानक सब दुख मिटे

सदगुर प्रसाद पार ब्रह्म प्रसिमरिए प्यारे दर्शन कौ बल जाओ जे सिमरत दुख बीसरे प्यारे सो क्यों तजना जाए क्यों तन वेती संत पह

सो करी प्यारे, आवर किश करण न जाए। दिन रैन सब सुहावने प्यारे, जे चपिए घर नाओ। साई कार कमावनी प्यारे, पुर मस्तक लेख लिखाए। एको आप वर्तदा प्यारे, घट घट रहा समाए। संसार कूब ते उधर ले प्यारे, नानक हर सरणाए। राग आसा महला पहला, पट्टी लिखी एक ओंकार। सतगुर प्रसाद ससे सोए सिट जिन साजी, सबना साहेब एक पया। सेव तरह चित जिनका लागा, आया तिनका सबल पया। मन का गे पूले मूड मना, जब लेखा देवे बीरा तौ पड़िया। रहाओ ईवड़ी आद पुरख ए दाता, आपे सच्चा सोई। इना अखरा में जो गुरमुख बूझे, तेस सिर लेख न होई। ऊड़े उमा ताकी कीजे, जाका अंत न पाया। सेवा करे सही फल पावे, जिन्नी सच कमाया। नंगे ज्ञान बूझे जे कोई, पढ़िया पंडित सोई। सर्व जिया में एको जाने, ताहो में कहे न कोई। कक्का केस पुंडर जब हुए, विन साबूने उजलिया। जमराज के हेरू आए, माया के संगल बंद लया। खखे खुंद कार सा आलम, कार खरीद जिन खर्च दिया। बंधन जाके सब जग बंधया, अवरी का नहीं हुकुम पया। गगे गोए गाय जिन छोड़ी, गली गोबिंद गर्व पया। ताड़ पांडे जिन आवी साजी, प्याड़ नवागे तई किया। कगे काल सेक जे ताले, शब्द गुरु के लाग रहे। बुरा पला जे सम कर जाने, इन बिद साहेब रमत रहे। चचे चार विरजन साजे, चारे खानी चार जुगा। जुग जुग जोगी खानी पोगी, पढ़िया पंडित आप थिया। छछे छाया वर्ती सब अंतर, तेरा किया परम हुआ। परम उपाय भुलाई ने आपे, तेरा कर्म हुआ। तिन गुरु मिलया, जजे जान मंगत जन जाचे। लग चौरासी पीह पवया, एको लेवे एको देवे। अवर ना दूजा मैं सुनया, झजे चूर मरो क्या प्राणी। जो कुछ देना सो दे रहा, दे दे वेखे हुकम चिलाए। ज्यो जिया घर जक पया, न्यन्ये नदर करे जा देख। दूजा कोई नाही, एको रवर या सब थाई। एक वसया मन माही, तट टंच करो क्या प्राणी। तड़ी के मौत के उड़ चलना, जुए जमन हारो अपना। पाज पड़ो तुम घर सरना, ठठे ठाण वर्ती तिन अंतर। हर चरणी जिनका चित लागा, चित लागा सेई जा निस्तरे। तो प्रसादी सुख पाया, डडे डंप करो क्या प्राणी। जो किश हुआ सो सब चलना, किसे सिरे वो तासु पाव। सर्ब निरंतर रब रहे, टड्डे टाए उसारे आपे। यूं तुझ पावे तिवे करे, कर कर वेखे हुकम चलाए। तिस निस्तारे।

दिया सब नी लिया, तर्मी कर्मी हूं पया, नन्ने ना पूनित पुगे, ना डीठा ना सम्मलया, गली हो सोहागण पैने, तंतन कबहू मैं मिलया, पपे पासाओ परमेश्वर, वेखण को प्रपंच किया, देखे बूझे सबक जाने, अंतर बाहर रब रहे, पपे फाही सब जग फासा, जम के संगल बंद लया, गुर प्रसादी सेनर उबरे, जे हर शरणागत

मन बैरागी सुन मंडल कर पाया आद पुरख अपरंपर प्यारा सतगुर अलख लखाया आसन बैसन फिर नारायण इत मन राता विचारे नानक नाम रते बैरागी अनहद रोन चुनकारे तेत अगम पुरे ओ कित बिद जाइए राम सच संजमो सार गुणा गुर शब्द कमाइए राम सच शब्द कमाइए निज कर जाइए पाइए गुणी निधाना तित साखा मूल पत नहीं डाली सिर सबना प्रधाना जब तब कर कर संजम थाकी हट निग्रह नहीं पाइए नानक सहज मिले जग जीवन सदगुर बूझ बुझाइए गुर सागरो रतनागर तित रतन कणे रे राम कर मजनो सप्त सरे मन निर्मल मेरे राम निर्मल जल नहाए जा प्रपाए पंच मिले विचारे काम क्रोध कपट बिखिया ताज सच नाम उरथारे होमे लोभ लहर लभता के पाए दीन दयाला नानक गुरसमान तीर्थ नहीं कोई साचे गुर गोपाला ओ बन बनो देख रही किरण देख सुभाया राम तिर पवन तुझे किया सब जगत सुभाया राम तेरा सब किया तू थिर थिया तो सुमान को नाही तू दाता सब जाचक तेरे तुद बिन के सालाही अण मंगया दान दीजे दाते तेरी भगत परे पंडारा राम नाम मुक्त ना कोई नानक कह विचारा आसा महला पहला मेरा मनो मेरा मन रता राम प्यारे राम सच साहेब आद पुरख अपरंपरो तारे राम अगम अगोच अपर अपारा पार ब्रह्म प्रधानो आजुगा दी है पी होसी अवर झूठा सा मानो कर्म धर्म की सार न जाने सुरत मुक्त क्यों पाई है नानक गुरमुख शब्द पछाणे महर्ष नाम ते आई है मेरा मनो मेरा मन मानिया नाम सिखाई राम हो मैं ममता माया संग न जाई राम माता पित भाई सुच तराई संग न संपे नारे सायर की पुत्री पर घर त्यागी चरण तले विचारे आद पुरख चलत दिखाया जे देखा तै सोई नानक हर की भगत न छोड़ो सहजे होए सो होई मेरा मनो मेरा मन निर्मल साच समाले राम अगुण मेड़ चले।

स्वामी इन फल तोट न आवे किन जरा न मरना नरक न परना जो हर नाम ते आवे हर हर करे से सूके नाही नानक पीड़ ना खाए जियो नाम लैन से सोह है तिन सुख पल होवे मन सेजन जाए जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला पहला शांत कर तीजा तू सुन हरना कालिया ई वाड़गेरा ताराम बिखबल मीठा चार दिन फिर होवे ताता राम फिर होए ताता खरा माता ना बिन परताप ओ जेव सायर दे लहरी बिजली जिवे चमक हर बाज राखा कोए नाही सोए तुझे बिसारिया सदकहे नानक चेत रे मन मरे हरना कालिया पावरा फूल पहंतिया दुख अद पारी राम मैं गुर पूछा अपना साचा बिचारी राम बिचार सगुर मुझे पूछया पवल बेली रातो सूरज चढ़या पिंड पड़या तेल तामन तातो जाओ मग बादा खाए चोटा शब्द बिन बेतालिया सदकहे नानक चेतरे मन मरे पवरा कालिया मेरे जीड़या परदेसिया इत पवे जंजा ले राम साचा साए मन मस की फासे जम जा ले राम मछली विशुन्नी नैन रुन्नी जाल बद्ध कपाया संसार माया मोह मीठा अंत परम चुकाया परत कार चित लाए हरस्यो छोड़ मनो अंदेसिया सदकहे नानक चेतरे मन जीड़या परदेसिया नदियां माव शून्या मेला संजोगी राम जुग जुग मीठा विस परे को जाने जोगी राम कोई सहज जाने हर पछाण सदगुरु जिन चेतया बिन नाम हर के परम पूले पचे मूद अचेतया हर ना भगत नारे साचा से अंत ताही रुनिया सदकहे नानक शब्द साचे मेल चिरी मछुनिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला तीजा शंत कर पहला हम करे साचा सोहला साचे शब्द सुहाया राम तान पिर मेल पया प्रभ आप मिलाया राम प्रभ आप मिलाया सच मन वसाया कामन सहजे माती गुर शब्द

तेरा गंढ लाग गुरमंग सदा समाले। यों कहे नानक जय मन तू तामदा ते हर तेरे सदा नाले। सदगुर मिले तावत थम्या ने कर बसया आए। नाम हिया जे नाम लय नाम रहे सुमाए। तावत थम्या सदगुर मिले दसवां द्वार पाया। तिथे अमृत भोजन सहज तुन उपजे जित शब्द जगत थम रखाया। ते अनेक वाजे सदा अंध है सच्चे रहा सुमाए। यों कहे नानक सतगुर मिले धारत थम्या निकर वस्या आए। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन हर जी तेरे नाल है गुरमति रंग माण। मूल पछाणे ता सो जाण है मरण जीवन की सोझी होई। गुर प्रसादी एको जाण है ता दूजा पाओ ना होई। मन सांत आई वजी वधाई ता होआ परवान। यों कहे नानक मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन तू गर्भ अटिया गर्भ लदया जाहे। माया मोहनी मोया फिर जूनी पवाहे। गर्भ लागा जाए मुगद मन अंत गया पछतावे। अहंकार सना रोग लगा बिरथा जन्म गवावे। मनमुख मुगद चेते नाही अगे गया पछतावे। क्यों कहे नानक मन तू गर्भ अटिया गर्भ लदया जावे। मन तू मत मान करे ते हौ खज जानदा गुरमुख निमाणा हो। अंतर अज्ञान हौ बुद्ध है सच शब्द मलखो हो। ओ निमाणा सतगुरु अगे मत किश आप लखावे। अपने अहंकार जगत जलिया मत तू अपना आप गवावे। सतगुर के पाणे करे कार सतगुर के पाणे लग रहो। यों कहे नानक आप छड सुख पावे मन निमाणा होए रहो। तन सो वेला जित में सतगुर मिलिया सो सो चित आया। मां आनंद सहज पया मन तन सुख पाया। सो सो चित आया मन वसाया अवगुण सब विसारे। जांच पाणा गुण प्रगट होए सतगुर आप सवारे। सेजन प्रवान होए जिन्नी एक नाम दिड़या दुतिया पाओ चुकाया। यों कहे नानक तन सोवेला जित मैं सतगुर मिलिया सो सो चित आया। एक जंत परम फुले तिन सह आप फुलाए। दूजे पाए फिरे होमे कर्म कुमाए। तिन सह आप फुलाए कुमार्ग पाए तिनका किश ना वसाई। तिन की गत अवगत तू है जाने जिन ए रचन रचाई। हुगम तेरा खरा पारा गुरमुख किसे बुझाए। क्यों कहे नानक क्या जंत विचारे जा तुझ परम फुलाए।

हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम हर जपिए सतगुर पाए जियो हर घर मन पाया परम सुख पाया हर लहा पद निर्वाण जियो हर प्रीत लगाई हर नाम सखाई प्रभु चूका आमन जान जियो।

तारो कर ले वो शब्द सुपाए जियो। आसा मोहल्ला चौथा मन नाम जपाना हर घर मन पाना हर भगत जना मन चाओ जियो। जो जन मर जीवे तिन अमृत पीवे मन लागा गुरमत पाओ जियो। मन हर हर पाओ गुर करे पसाओ जीवन मुक्त सुखोई। जीवन मरण हर नाम सुहेले मन हर हर हृदय सोई। मन हर हर वसया गुरमत हर रसया हर हर रस गटाग पी आओ जियो। मन नाम जपाना हर घर मन पाना हर भगत जना मन चाओ जियो। जग मरण न पाया निद आप लुकाया मत जम पकरे ले जाए जियो। हर अंतर बार हर प्रभ एको यो जीड़ा रखिया ना जाए जियो। क्यों जियो खीजे हर वस्तु लुड़ीजे जिसकी वत सो ले जाए जियो। मन मुख करण पलाव कर परमे सब औखद दारू लाए जियो। जिसकी वस्त प्रभ लय स्वामी जन उबरे शब्द कमाए जियो। जग मरण न पाया नित आप लुकाया मत जम पकरे लय जाए जियो। तो मरण लखाया गुरमुख सोहाया जन उबरे हर हर ध्यान जियो। हर शोभा पाई हर नाम वड्याई हर दरगे पैदे जान जियो। हर दरगे पैदे हर नामे सीधे हर नामे ते सुख पाया जन्म मरण दोवें दुख मेटे। हर रामे नाम सुमाया हर जान प्रभ रल एको होए हर जान प्रभ एक समान जियो। तुर मनन लखाया गुरमुख सोहाया जन उबरे हर हर ध्यान जियो। जग उपजे बिन से बिन सुबिनासे लग गुरमुख अस्थिर होए जियो। गुरमंत्र दृढ़ाए हर रस करसाए हर अमृत हर मुख चोए जियो। हर अमृत रस पाया मुआ जीवाया फिर भौड़ मरण ना होई। हर हर नाम अमर पद पाया हर नाम समावे सोई। जन नानक नाम आधार टेक है बिन नावे अवर न कोए जियो। जग उपजे बिन सह बिन सुबिनस लग गुरमुख अस्थिर होए जियो। आसा महला चौथा शंत वड्डा मेरा गोविंद अगम अगोचर आद निरंजन निरंकार जियो। ताकीगत कही ना जाई अमित वड्याई मेरा गोविंद अलख अपार जियो। गोविंद अलख अपार अपरंपर आप अपना जाने क्या ए जंत विचारे कहिए जो तुद आख मखाने। जिसनु नदर करे तू अपनी सो गुरमुख करे विचार जियो। वड्डा मेरा गोविंद अगम अगोचर आद निरंजन निरंकार जियो। तू आद पुरख परंपर करता तेरा पार न पाया जाए जियो। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर सब मैं रहा समाए जियो। घट अंतर पार ब्रह्म परमेश्वर ताका अंत न पाया तिस रूप न रेख अदृष्टया गोचर। गुरमुख अलख लखाया सदा आनंद रहे दिन राती सहजे नाम समाए जियो। तू आद पुरख अपरंपर करता तेरा पार न पाया जाए जियो। तू सद परमेश्वर सदा अविनाशी हर हर गुणी निधान जियो। हर हर प्रभ एको अवर न कोई तू आपे पुरख सुजान जियो। पुरख सुजान तू प्रधान तो देवड अवर ना कोई। तेरा शब्द सब तू है वरते तू आपे करे सोई। हर समय रविया एको सोई गुरमुख लखिया हर नाम जियो। तू सद परमेश्वर सदा अविनाशी हर हर गुणी निधान जियो। तब तू है करता सब तेरी वड्याई जो भावे तिवे चलाए जियो। तुद आपे भावे तिवे चलावे सब तेरे शब्द सुमाए जियो। सब शब्द सुमावे जंत पावे तेरे शब्द वड्याई। गुरमुख बुद्ध पाइगे आप गवाइये शब्द रहा सुमाई। तेरा शब्द अगोच गुरमुख पाइये।

तेरे चरण धूड़ वड़भागी पावां राम। हर तूड़ी नहाइए मैल गवाइए जन्म मरण दुख लाथे अंतर बार सदा हदूरे परमेसर प्रसाथे मिटे दुख कल्याण कीर्तन बोड़ जून ना पावा। बिनवंत नान गुरसरण तरिए

प्रयो सह सुभाई छोड़ न जाई, मन लागा रंग मजीठा। हर नानक बेदे चरण कमल किश आन ना मीठा, ज्यों राती जल माशली त्यों राम रसमाते राम राजे। गुरपूरे उपदेसया जीवन गद पाते राम राजे, जीवन गद स्वामी अंतर जामी आप लिगे लड़ लाए। रतन पदार्थो प्रगटो पूर्णो चोड़ न कत हो जाए, प्राभ सुगर स्वरूप सुजान स्वामी ताग की मिटे ना दाते। जल संग राती माशली नान कर माते, चातक जाचे बूंद ज्यों, हर प्राण अधार।

मोर चायो नंगे आमन जामने आ। फिर साधु सरणी पड़ी गए चरणी अब टूटस मोजो किती है। को नानक शांत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत तब दिनियर देखिए। निष्कुरंक जैसे नाद सुन श्रवणी ही ओ डेवे। मन ऐसी प्रीत कीजे जैसी तरण पतार उर्जी तेरे सिवे। इहो मन लाल दीजे।

बिनवंत नानक रंग राती प्रेम सहज सुमानी सुख सोहलड़े हर गामन लागे साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन पागे सुख सहज सरसे हर नाम रहसे प्रभु आप कृपा तारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया शुभ दिवसे आए सहज पाए सगल निध प्रा पागे बिनवंत नानक सरण स्वामी सदा हर जन तागे आसा महला पंजवा उठ वंज वटाउड़िया तै क्या चिर लाया मोलत पुनड़िया कित कूड़ लुभाया कूड़े लुभाया तो माया

संताप चितवो चितनाथ चितवो चितनाथ रे रख ले वो शरण अनाथ रे मिल चाओ चाइले प्राण सुंदर तन ध्यान सुंदर तन ध्यान हे मन लब्ध गोपाल ज्ञान हे जाचक जन राखत मान प्रामाण पूर्ण दुख बदीरन सगल इश पूजंतिया हर कंठ लागे दिस भागे मेरे नहा सेज सोहंतिया प्रभ दृष्ट धारी मिले मुरारी सगल करमल पय खान बिनवंत नानक मेरी आस पूरन।

खेते अंदर छुटिया को नानक सो नाहा फलगे फुलगे बपड़े पीतन विच स्वाहा पौड़ी आपी ने आप

सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच।

पूर सगलिया पौलिखिया सिरलेख नानक निरभउ निरंकार सच एक महला पहला नानक निरभउ निरंकार पुर केते राम रवाल केतिया कन कहानिया केते वेद विचार केते नचे मंगते गेड़ मुड़ पूरे ताल बाजारी बाजार में आए कटे बाजार गावे राजे रानिया बोले आलपताल लखटकिया के मुंदड़े लखटकिया के हार जित तन पाई है नानका से तन होवे शार ज्ञान ना गले टूडिये कतना करड़ा सार कर्म मिले ता पाईए होर हिकमत हुकम खुवार पौड़ी नदर करे जे अपनी ता नदरी सतगुर पाया एहो जियो बहुते जन्म भरमया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जेवड़ दाता को नहीं सब सुनेहो लोक सवाया सतगुर मिले सज पाया जिनी विच्चों आप गवाया जिन सच्चो सच बुझाया सलोक महला पहला कड़िया सबे गोपियां पैर कन गोपाल गहने पौन पानी बै संतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल धन वर्त।

तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास बहकार जोगी सुन त्यावन जेते अलख नाम करतार सूखम मूर्त नाम निरंजन काया का आकार सतिया मन संतोष उपजय।

पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो, बिन सतगुर किने न पाया। सतगुर विच आप रखियो न कर प्रगट आख सुनाया। सतगुर मिले है सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया। उत्तम यो विचार है जिन सच्चे स्यो चितलाया। जग जीवन दाता पाया। सलोक महला पहला हौ मिच आया हौ मिच गया। हौ में जमया हौ मिच मोआ। हौ मिच दिता हौ मिच लया। हौ मिच खटिया हौ मिच गया। हौ मिच सचियार कूड़ियार। हौ मिच पाप पुन विचार। हौ मिच नरक सुरग अवतार। हौ मिच हसे हौ मिच रोवे। हौ मिच परिये हौ मिच तोवे। हौ मिच जाति जिनसी खोवे। हौ मिच मूर्ख हौ मिच सियाणा। मोह मुक्त की सार न जाना। हौ मिच माया हौ मिच छाया। हौ में कर कर जंते उपाया। हौ में बूझे तांदर सूझे। ज्ञान विहूणा कथ कथ लूझे। नानक हुक्मी लिखिए लेख जेहा वेखे तेहा वेख। महला दूजा हौ में एहा जात है। हौ में कर्म कमाहे। हौ में एही बंदना फिर जो नी पाहे। हौ में किथों उपजे कित संजम ए जाए। हौ में एहो हुक्म है पये किरत फिराहे। हौ में दीर्घ रोग है दारू पी इस माहे। कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कुमाहे। नानक कह सुनो जनो एत संजम दुख जाहे। पौड़ी सेव कीती संतोखी जिनी सचो सच तिहाया। ओ नी मंदे पैर ना रखियो कर सुकृत तर्म कमाया। ओ नी दुनिया तोड़े बंधना अन पानी थोड़ा खाया। तू बगसी सी अगला निर देवे चढ़े सुवाया। वड्याई वड्डा पाया। श्लोक महला पहला।

लग तब उपर तीर्थ सहज जोग बेबाण, लग सूरतन संग्राम रण में छुटे प्राण। लह सुरती लह ज्ञान ध्यान पढ़ गए पाठ पुरा।

पौड़ी सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू देह तिस मिले सच ता तिनी सच कमाया सदगुर मिले सच पाया जिन कै हिरदय सच वसाया मूर्ख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया। श्लोक महला पहला पढ़ पढ़ गड्डी लभदी है पढ़ पढ़ परिए साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डिए खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आरजा पढ़िए जेते सास नानक लेख एक गल होर होमे चखना चाख महला पहला लिख लिख पढ़िया तेता कढ़िया बहु तीर्थ पव्या ते तो लव्या बहु पेख किया देही दुख दिया सौवे जिया अपना किया अन न खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया बस्तर न पहरे अहनस तहरे मोन विभूता क्यों जागे गुरबिन सूता।

रसवा हो, कलयुग रास अगन का कूड़ अगे रसवा हो। महला पहला साम कैसे तंबर स्वामी, सच में आछे साच रहे सब को सच समावे। रेग कह रहया परपूर, राम नाम देवा मैं सूर, नाए लय प्राशित जाहे, नानक तो मोख अंतर पाहे। जुज में जोर शली चंद्रावल, कान कृष्ण जादम पया, पार जाद गोपी ले आया, बिंद्रावन में रंग किया, कल में वेद अथर्वण हुआ।

पईया पित जित मुख नाम ना ऊचर है बिन नावे रस खावे नानक एवै जानिए तित मुख तुका पाहे महला पहला पंड जमीए पंड निमीए पंड मंगण वी आहो पंडो होवे दोस्ती पंडो चले राहो पंड मुआ पंड पालिए पंड होवे बंधान सो क्यों मंदा आखिए जित जा

करना कियो, कल आपे ही ते तारिये, देखे कीता अपना तर कच्ची पक्की सारी है, जो आया सो चलसी सब कोई आई वारी है, जिसके जी प्राण है क्यों साहेब मनो वसारी है, आपन हथी अपना आपे ही कासवारी है। श्लोक महला दूजा, एक ने ही आस की दूजे लगे जाए, नानक आस कंडी है,

गोर चरण लाघम बिनवता पूछत कह जियो पाया, कामन काज जब उपजे बिनस कहो मोहे समझाया। देव करो दया मोहे मार्ग लाभो,

तपी सन्यासी बो तीर्थ प्रमना लुंजत मुंजत मोन जटा तर अंत तऊ मरना ताते सेवियले राम ना रसना राम नाम हित जाके कहां करे जमना अरहाओ आगम निर्गम ज्योतक जाने बहु भव्या करना तंत मंत्र सब औखद जाने अंत तऊ मरना राज भोग अरशद सिंघासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुभाषक चंदन अंत तऊ मरना वेद पुराण सिमर सब खोजे कहू ना उबरना कहो कबीर।

हंस अकेला जाई, कहेत कबीर सुनो रे संत, ऐसा गर कहताई। इस बंदे सिर जुल्म होत है,

फिर पछताना बिरध पायो मेरी मेरी करते जन्म गयो सायर सोख भोजंग बलयो अरहाओ चूके सर्वर पाल बंधावे लूणे खेत हथवार करे आयो चोर तुरंत ले गयो मेरी राखत मुग्ध फिरे चरण शीस कर कंपन लागे नैनी नीर असार बहे जेवा बचन शुद्ध नहीं निगसे ताबरे तर्म की आस करे

आए। राम राम राम रमे रम रही है, साग स्यों पूल नहीं कही है रघाओ। कौआ कांक पूर चिराए, कह बिशियर को दूध पियाए। सत संगत मिल बबेक बुद होई, पारस परस लोहा कंचन सोई। साकत

भय सचिरामन जाई, बार बैल गोन कर आई। कहत कबीर जो इस पद बुझे, राम रमत तिस सबके सूझे। बाईस चौपद तथा पंच पदे, आसा श्री कबीर जीओ के तिपदे अठ, दो तुके सत।

की आस करे जम निहारे ससा। बारी गरी संसार कबीरा चेत टाल पासा आसा। तन रैनी मन पुनरभ कर हो

आस बड पाग हमारा तुर नर मुनजन कौतक आए कोट ते तीस उजाना कह कबीर मोए ब्याए चले हैं पुरख एक भगवाना आसा सास की दुखी ससुर की।

करे लड़ाई माया सद मतवारी। बड़े पाई के जब संग होती तब हो ना प्यारी। कहत कबीर पंच को चगर जगरत जन्म गवाया। झूठी माया सब जग बाध्या मैं राम रमत सुख पाया।

नैन देख पतंग उर्ज पसना देख आग काल फास ना मुग्ध चेत कनक का मन लाग कर विचार विकार परहर

अस देखियो जग मेरा समाई गुप्ता हीरा प्रगट पयो जब गुर गमदिया दिखाई आसा पहली क्रूप कुजात कुलखनी सौरे पेई है बुरी आपकी स्वरूप सुजान सुलखनी सहजे उदर तरी पली सरी मोई मेरी पहली बरी जुग जुग जीवो मेरी अब की तरी रहाओ को कबीर जब लौरी आई बड़ी का सुहाग टरे हो लौरी संग पई अब मेरे जेठी और तरे।

देखै देखै सुनै बोलै, दौड़ो फिरत है रहाओ, जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोमन लगत है, मान बज क्रम रस कसे लोभाना, बिनस गया जाए कहूं समाना, कहे रविदास बाजी जग पाई, बाजी गर सौ मोहे प्रीत बन आई। आसा बाणी भगत तन्ने जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, प्रामत फिरत बो जनु बेलाने, तन मन तन नहीं तीरे, लालच बिख काम लुभ दराता, मन बिसरे प्रभ हीरे, अरहाओ बिख बल मीड लगे मन बौरे, चार विचार न जानिया, गुणते प्रीत बड़ी अनपांती, जन्म मरन फिर तानिया, जुगत जान नहीं रिदे निवासी, जलत जाल जम फंद परे, बिख पल संच परे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे, ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया, ध्यान मान मन एक मये, प्रेम भगत मानी सुख जानिया, तृप्त अगाने मुक्त पये, जोत समाए समानी जाके, असली प्रभ पहचानिया, तन्ने तन पाया तरणी तार, मिल जन संत समानिया, महला पंजवा, गोविंद गोविंद गोविंद संग।

पूर्ण परमानंद मनोहर समझ देख मनमाही पाखण कीट गुप्त होए रहता ता चो मार्ग नाही कह तन्ना पूर्ण ताहू को मात्रे जी डराही आसा शेख फरीद जियो की बाणी एक ओंकार सदगुर प्रसाद दिलो मोहब्बत जिन से ही सचया जिन मन होर मुख होर ते कंडे

रीत है हर मेरी हर मेरी कथा कहानी जी, गुर प्रसाद मेरा मन पीजे एहा सेव बनी जियो अरहाओ। हर मेरा सिमरत हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंदप हर मेरा पाई, हर की मैं भूख लागे हर नाम मेरा मन तृप्त, हर मेरा साक अंत होए सगाई, हर बिन होर रास कूड़।

फिर दे जिनके कपट बस बाहरों संत कहाहे तिसना मूल ना चुकई अंत गए पछताहे अनेक तीर्थ जे जतन करे ता अंतर की होम में कदे ना जाए जिस नर की दुबदा ना जाए तर्म राय ते देश जाए कर्म होवे सोई जन पाए गुरमुख बूझे कोई नानक विचो होमे मारे ता हर पेटे सोई गुजरी महला तीजा ते जन सांत सदा मत निचल जिसका अवमान गवाए सो जन निर्मल जे गुरमुख बूझे

जो उस पूजे सो फल पाए, दीख्या देवे साच बुझाए, विण पार से पूज न होवई, विण मन परते अवरा समझाए, गुरु सदाए अज्ञानी अंधा, केसो मार्ग पाए, नानक विण नदरी किशु ना पाईए, जिस इंद्र करे सो पाए, गुर प्रसादी देव डियाई, अपना शब्द वरताए, गुजरी महला तीजा पंच पद, ना कासी मत उपजे, ना कासी मत जाए, सदगुर मिले मत उपजे, ताए सोजी पाए, हर कथा तू सुन रे मान, शब्द मन नमसाए, ए मत तेरी थिर रहे, ता परम विच्चों जाए, अरहाओ, हर चरण रे वसाए तू, केलबख होवे नास, पंच पू आत्मा वस करे, ता तीर्थ करे निवास, मन मुग्ध है, तो जी किशु ना पा।

लाले गोले गुरसिखा के जिन्ना अनदिन हरपरा पुरख ते आया मेरे मन तन बिरो गुरसिख पगलाया मेरे प्राण सका गुर के सिख भाई मोको करो उपदेश अगर मिले मिलाया अरहाओ क्या हरपरा पावे ता गुरमुख मिले जिन वचन गुरु सदगुर मन पाया वड़भागी गुर के सिख प्यारे हर निर्वाणी निर्वाण पद पाया सत्संगत गुर की हर प्यारी जिन हर हर नाम मीठा मन पाया जिन सदगुर संगत संग न पाया से पाहीन पापी जम खाया आप कृपाल कृपा प्रतारे हर आपे गुरमुख मिले मलाया जन नान

अंतर मैल न उतरे हो मैं बिन गुरबाजी गारी मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा थारी। कोड़ मदे को विरला सेवक होर सगले ब्योहारी अरहाओ सात वेद सिमर सब शुद्ध सब एका बात पुकारी। बिन गुर मुक्त न को पावे मन वेखो कर बिचारी अड़ सरमजन कर इस नाना परम आए तर सारी। अनक सोज करे दिन राती बिन सतगुर अंधियारी धावत धावत सब जगत आयो अब आए हर द्वारी। दुरमत मेट बुद्ध परगासी जन नानक गुरमुख तारी गुजरी महला।

सागल सिट को तनी कहीजे, जन को अंग निरारो रहाओ। साध संग नानक बुद्ध पाई, हर कीर्तन आधारो। नाम दियो त्रिलोचन कबीर दासरो, मुक्त पयो चम्यारो। गुजरी महला पंजवा, है नाही को बूजन हारो। जाने कमन पता, शिव बरंज अर सगल मोन जान, गहे ना सकाहे गता। प्रभ की

कल्याण आनंद रूप होई है। उबरे बाल गोपाल हरहाओ मिलवर नारी मंगल गाया ठाकुर का जयकार। कहो नानक तिस गुर बलिहारी जिन सब का किया उधार। गुजरी महला पंजवां माता पिता भाई सुध बंधप।

साध संग नानक दर्श पायो बिनसो सगल नेहोरा गुजरी मोहल्ला पंजवां आल जाल प्रमोत जावे प्रसे तीरंग लाई मन को ए उपदेश दृढ़ावे सहज सहज गुण गाई साजन ऐसो संत सहाई जे भेटे टूटे माया बंद बिसर ना कब हूं जाई हराओ करत करत अनक बो पाती नीकी ए ठहराई मेर साधु हर्ष।

अनेक करणी सबल सिमरत नाम कर अनुग्रह आप राखे भय पूर्ण काम सास सासना बिसर कब हूँ।

आराध श्री तर सबल मूर्त करण कारण जोग गुण रमण श्रमण अपार महिमा फिर न होत बियोग मन चरणार बिंद उपास कल कलेश मिटंत सिमरण

परे गुर शरण तुम्हारी, मैं अवर न दूजी पाई। आप तब एको एक पुकारो, आद जुगा सिखाई। ऐ जी राखो पैज नाम अपने की, तुझ की स्यों बने आई। कर कृपा गुर दर्श दिखावो, हम में शब्द जलाई। ऐ जी क्या मांगो, किस रहे ना दिसै,

सिद्ध साधक लिवलागी नाचे, जिन गुरमुख बुद्ध विचारी, खंड ब्रह्मांड त्रैगुण नाचे, जिन लागी हर लिव तुम्हारी, जी जंत सवे ही नाचे, नाचे खानी चारी, जो तुद भावे से ही नाचे, जिन गुरमुख शब्द लिवलाए, से भगत से तत ज्ञानी, जिन कहु गुमनाए, एहा भगत सच्चे।

दुर्मत व्यापे जिन अंतर्म हो गुबारी। संत जिना की कथा ना पावे ओए डूबे सान परवारी। निंदक निंदा करमल तोवे ओ माल पग माया तारी। संत जिना की निंदा व्यापे ना उरवार ना पारी। यो प्रपंच खेल किया सब करते हर करते सब कल तारी। हर एको सूत

काम क्रोध हरन मद मोह दैन मुरार मन मकरंद जन्म मरने वार धरणी तर पत रख परमानंद जलत अनक तरंग माय गुर ज्ञान हरिद मंत छेद अंग बुद्ध करना मैं चिंत मेट पुरख अनंत सिमर समर्थ पल मुहूर्त प्रत्यान सहज समाद दीन दयाल प्रसन्न पूर्ण

ऐसा सदगुर सोई पाए, जिस तुर मस्तक हर लिख पाया। जन नानक बलिहारी गुर अपने विटो, जिन प्रफुल्ला मार्ग पाया। महला तीजा, त्रैगुण माया वेख भुले, जो देख दीपक पतंग पचाया। पंडित पुल पुल माया वेखे, दिखा किने क्यों आन चढ़ाया। दूजे पाए पड़े नित बिखया, नावो दिए खुआया। जोगी जंगम सुनयासी पुले, ओना अहंकार बो गर्भ वधाया। साधन भोजन ना ले सद पिखया, मन हठ जन्म गवाया। एतड़िया विचों सो जन समदा, जिन गुरमुख नाम ते आया। जन नानक किस नू आग सुनाई है, जा कर दे सब कराया। पौड़ी माया मोह प्रेत है, काम क्रोध अहंकारा। ए जम की सरकार है, इन्ना उपर।

करे सही जन सोने तिन को परजा पूजने आई। वाह वाह कर्म प्राप्त होवे नानक दर सच्चे सोभा पाई पौड़ी। बजक पाट काया गढ़ पीतर कूड़क सत अभवानी। परम फूले नदर ना आवनी मानमुख अंध अज्ञानी। उपाय किते ना लभनी कर पेख थके पेखवानी। गुर शब्दी खोलाइयन हर नाम जपानी। हर जीव अमृत बिरख है जिन पिया ते तृप्तानी। श्लोक महला तीजा वाह वाह करते हैं रैन सुख विहाए। वाह वाह करते हैं सदा आनंद होवे।

अमृत नाम है गुरमुख पावे कोय वाव कर्मी पाई है आप दया कर दे नानक वाव गुरमुख पाई है अनदिन नाम लए मोहल्ला तीजा बिन सतगुर सेवे सांत न आवई दूजी ना ही जाए जे बो तेरा लोची है विण कर्मे ना पाया जाए जिन्ना अंतर लोभ विकार है दूजे पाए खुआए जमन मरण ना चुकई होमे विच दुख पाए जिन्ना सतगुर सिउ चित लाया सो खाली कोई ना है तिन जम की तलब ना होवई ना ए दुख सहा है नानक गुरमुख उभरे

क्रोध लोभ छोड़िए दीजे अग्न जलाए जीव दया नित जापिए नानक साचा नाओ मोहल्ला पंजवा सिमरत सिमरत प्रभ अपना।

मन की कटिए मैल, साध संग उठिया जन मरण पौ कटिए, जन का शब्द जप बंधन खोलन संत दूत सब जाए छप, इस्यो लायन रंग जेदी सब तारिया, ऊंची ऊंचा थान अगम अपारिया, रैन दिनस कर जोड़ सास सास ते आई है, जा आपे होए दयाल ता भगत संग पाई है। श्लोक महला पंजवा, बार विडानड़े होमस तुमस कूका पईया राही, तौ सह सेती लगड़ी डोरी नानक अंध सेती बन गाही। महला पंजवा, सच्ची बैसक तिना संग जिन संग जपिए नाओ, तिन संग संग न कीचई नानक जिन्ना अपना स्वाओ पौड़ी। सावेला परवान जित सतगुर फेटिया, होआ साधु संग फिर दुख न तेटिया, पाया नेचल थान फिर गर्भ न लेटिया, नदरी आया एक सगल ब्रह मेटिया, तत ज्ञान लाए ध्यान दृढ़ समेटिया, सबो जपिए जाप जे मुखों बोलेटिया, हुक्मे बुझ निहाल सुख सो खेटिया, परख खजाने पाए से बौड़ना खोटिया। श्लोक महला पंजवा, वेशो हुए जंबूर खवे न वंजन गाखड़े, जे सो तनी मिलन नानक सुख समूह सच महला पंजवा, जिमी विसंदी पानी है ईदन रखे पाहे, नानक सो आहे जाके अडल हब को पौड़ी। तेरे कीते कम तुदे ही गोचरे, सोई वरते जग जे किया तुद तुरे, बिस्म पै बिस्मार दे कुदरत तेरिया, सरन परे तेरी दास कार गत होए मेरिया, तेरे हथ निदान भावे तिह देह, जिसनु होए दयाल हर नाम से लेहे, अगम अगोचर बेअंत

आमन जान रहे जन्म न तहा मर। साहेब सेवक एक एक दृष्टाया, गुर प्रसाद नानक सत्य समाया। शुद्ध अराग गुजरी भगतां की बाणी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्री कबीर जीओ का चौपदा कर दूजा दूजा, चार पाव दो सिंह गुंग मुख, तब कैसे गुण गई है। उठत बैठत ठेगा पर है, तब कत मूंड लुकई है। हर बिन बैल बेराने होई है, फाटे नाकन टूटे कदन, कोदो को पुस गई है रखाओ। सारो दिन डोलत बन मैया, अजो ना पेट अगई है। जन भगतन को कहो न मानो, कियो अपनो पई है। दो सुख करत महाप्रभुडो, अनक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभिसरयो, यो अवसर कद पई है। प्रमत फिरत तेलक के कप ज्यो, गात बिन

देत जप नर सगल सिद्ध पदं जय देव आयो तस सबटं पाव भूत सर्वगतं एक ओंकार सत

निर्गुण निबाणी अनाथ बिनवै मिलो प्रभ कृपा निधे। प्रम पीत खोइये सहज सोइये प्रभ पलक पेखत नव निधे। गृह लाल आवै महल पावै मिल संग मंगल गाइय। नाक पैम पै संत सरणी मोहे दर्श दिखाइए। संतन कै प्रसाद हर घर पाया राम। इश पुनी मन शांत तप्त बुझाया राम। सबला सो दिनस रहने सुहावी अंध।

प्रीतम समरथ कारण करना। नानक चातरक हर बूंद मांगे जब जीवा हर घर चरना। अमे सरोवरो पियो हर घर नामा राम। संत संग मिले जब पूर्ण का माराम। सब काम पूर्ण दुख बदीरन हर निमख मनो ना बिसरै। आनंद अनदन सदा साचा सर्व गुण जगदीसरै।

देश वेश स्वर्ण रूपा सगल ऊने कामा पुत्र कलतर ना संग शोभा हस्त कोर विकारी बिनवंत नानक बिन सा संगम सब मिथया संसारी। राजन क्यों सोया तू नींद परे जा

तेरे मन सच्चे पाने, जिन्ना आपे गुरमुख देव डियाई, ते जन सच्ची दरगे जाने। सलोक मर्दाना पहला, कल कलवाली काम माद, मनुआ पीवन हार, क्रोध कटोरी मुहे परी,

राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। अगमे गोचर अत वड्डा, अतुल न तुले आ जाए। कीमत कने न पाईया, किते न ले आ जाए। गुर कै शब्द पेदया, इन बिद वसया मने आए। नानक आप अमेओ है, गुर कृपा ते रहया सुमाए। आपे मिलया मिल रहे, आपे मिलया आए। महला तीजा, ए मन यो तन नाम है। जित सदा सदा सुख होए, टोटा मूल न आवई। लाहा सदगी होए, खाद है खर्चे तोट न आवई। सदा सदा ओ दे, सहसा मूल न होवई। हांत कदे न होए, नानक गुरमुख पाई है। जा को नदर करे पौड़ी, आपे सब कट अंदर, आपे ही बाहर। आपे गुप्त वर्तदा, आपे ही जहर। जो शक्ति गोबार कर, वर्त्या सुना।

सदगुण मिले अंतर रव रहे सदा रहा लिवलाए दम दम सदा समाल दा दम ना बिरथा जाए जन्म मरण का पौ गया जीवन पदवी पाए नानक ओ मर्तबा तिसनू दे

हिंदू मूले पूले अखुट्टी जाही, नारद कया से पूज कराही, अंधे गुंगे अंध अंधार, पाथर ले पूजे मुग्ध गवार, ओए जा आव डुबे तुम कहां तरनहार पौड़ी, सब क्यों तेरे वस है तू सच्चा साहो, भगतर ते रंग एक कै पूरा वे साहो, अमृत भोजन नाम हर राज्य राज जन खाहो, सब पदार्थ पाइयन सिमरन सच लाहो, संत प्यारे पार ब्रह्म नानक हर अगम अगाहो, श्लोक महला तीजा सब किस हुक्मे आमदा सब किस हुक्मे जाए, जे को मूर्ख आपो जाने अंधा अंध कुमाए, नानक हुक्म को गुरमुख बुझे जिसनु कृपा करे रजाए, महला तीजा सो योगी जुगत सो पाए, जिसनु गुरमुख नाम प्राप्त होए, ए योगी की नगरी सबको वस पेखी जोग ना होए, नानक ऐसा विरला को जोगी जिस कट प्रगट होए पौड़ी, आपे जंत उपायन आपे आधार, आपे सुखम पालिए आपे पासार, आप एकाती होए रहे आपे वड़ परवार, नानक मंगे दान हर संतारे नार, होर दा तार ना सुजई।

सब सईया सौ रावण गईया हो दादी कै दर जावा अमाली हो खरी सुचजी तैस एक न पावा माठ गुदाई पट्टिया भरगे मांग संधूरे अगे गई ना मनिया मरो वसूर।

निर्मल नाम से मन आए पर में भूला फिरे संसार मर जन्मे जम करे खुवार नानक से बड़ भागी जिन घर नाम के आया गुर प्रसादी मन मसाया वढ़हंस महला तीजा हौ में नावे नार विरोध है दोना वसे इक ठाए हमे जो सेवा ना हो वही कामन बिरथा जाए हर चेत मन मेरे तू गुर का शब्द कमाए हुक्म मने ता हर मिले ता विचो होमे जाए रखाओ होमे सब शरीर है होमे ओपत होए होमे वड़ा गुबार है होमे विच बुझ न सके कोए होमे विच भगत न हो वही हुक्म ना बुझिया जाए होमे विच जियो बंद है नाम ना वसे मने आए नानक सतगुर मिले होमे गई ता सच वसया मन आए सच कमावे सच रहे सच्चे सेव समाए वढ़हंस महला चौथा कार पहला एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद सेज एक को प्रभ ठाकुर गुरमुख हर रावे सुख सागर।

नित पखा फेरी सेव कमावा, इस आगे पानी टोवा। नेतन सेव करी हर जन की, जो हर हर कथा सुनाए। तन तन गुरु गुर सदगुर पूरा, नानक मन आस पुजाए। गुर सज्जन मेरा मेल हरे, जित मिल हर नाम त्यावा। गुर सदगुर पासो हर गोष्ट पूछा, कर सांझी हर गुण गावा। गुण गावा नित नित सद हर के, मन जीवे नाम सुन तेरा। नानक जित वेला।

सो हर घर सदा संभाले, सो हर घर नाम सदा सदा संभाले। जिस सतगुर पूरा मेरा मिलिया, नानक हर जान हर इक्के होए, हर जप हर सेती रलिया। वढ़हंस महल

कोट कोट लख तावे एक तिल ताका मैल न पावे सुहावी कौन सो वेला जित प्रा मेला रहाओ लाख भगत जा को आराध लाख पीसर तब ही साध।

पूरे मन निर्मल कोई संता तूरे चरण कमल हिरदे उर तारे तेरे दर्शन को जाई बलिहारे कर कृपा तेरे गुण गावा नानक नाम जपत सुख पाव वढ़ांस मगल्ला पंजवा सार संघर अमृत पीजे ना जू मरे न कबहू चीजे वड़भागी गुर पूरा पाई है गुर कृपा ते प्रभु त्याई है रखाओ रतन।

अमृतसर का नाम मेरे मन पाया, नाम मीठा मन लागा, दुख डेरा ठाया, सुख मन में आय बसया, जाम तय फुरमाया, नदर तुद अरदास मेरी जिन आप उपाया, ता मैं कहया कहन जा तुझे कहाया, वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना, न पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आप मनावना, जिस नाल संगत कर से

ब्राह्मणा साभ्यो पाई ने आप आपे नजर करे, कौड़ा कोई ना मांगे, मीठा सा मांगे, सब कोई मीठा मांग देखे, खसम पावे सो करे, किस पुन दान अनेक करनी, नाम तुल ना समसरे, नानका जिन नाम मिले कर्म हुआ तुर कदे, सब उपाय ने आप आपे नजर करे, वढ़ांस महला पहला करो दया तेरा नाम खाना, सब उपाय गे आप आपे सर्व सुमाना, सर्वे सुमाना आप तू है, उपाय तंदे लाइया, एक तुझ ही किए राजे, एक ना पेख पवाइया, लोभ मोह तुझ किया मीठ, एत परम फुलाना, सदा दया करो अपनी, ताम नाम खाना, नाम तेरा है सच्चा सदा, मैं मन पाना, दुख गया सुख आए सुमाना, गावन सुरनार सुगड़ सुजाना, सोर नार सुगड़ सुजान गावे, जो

बीज मन अंदर सत्य शब्द सुखाए, हर व्यापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वडभागो राम। गुरमति मन कर वसया सत्य शब्द बैरागो राम, मुख मस्तक भागो सत बैरागो ताचरते विचारी। ना बिना सब जग बौराना सब देखो में मारी, साचे शब्द लाग मत उपजे गुरमुख नाम सुहागो। नानक शब्द मिले पो पंजन हर आवे मस्तक भागो, खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वडया ई राम। गुरमति हुक्म बूझिए हुक्मे मेल मिलाई राम, हुक्म मिलाई सह समाई गुर का शब्द अपारा। सच्ची वडयाई गुर ते पाई सच सवारण हारा, पाओ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई। कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर, हुक्मे रहया सुमाई वढ़ांस महला तीजा। मन मेरिया तू सदा सच समाल जियो, अपने कर तू सुख वस ओए न सके जम काल जियो। काल जाल जम जोए न सके साचे शब्द लिवलाए, सदा सच रत्ता मन निर्मल आमन जान रखाए। दूजे पाए परम विगुति मन मुखमोही जम काल, कहे नानक सुन मन मेरे तू सदा सच समाल। मन मेरे अंतर तेरे निधान गए बाहर वस्त ना पाल, जो पावे सो पूछ तू गुरमुख नदर निहाल। गुरमुख नदर निहाल मन मेरे अंतर घर नाम सिखाई, मनमुख अंदले ज्ञान में गुणे दूजे पाए खुवाई। बिन नावे को छूटे नाही साबादी जमकाल, नानक अंतर तेरे निधान है तू बार वस्त ना पाल। मन मेरे जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे वापारा, सदगुरु सेव ने अपना अंतर शब्द अपारा। अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा नामे नौन दपाई, मन कुमाया मोवे आपे दू संतापे दूजे पद गवाई। होमे मार सच शब्द सुमाने सच रते अदकाई, नानक मानस जन्म दुलंब है सदगुर बूझ बुझाई। मन मेरे सदगुर सेवन अपना से जन्मड भागी राम, जो मन मारे अपना से पुरख बैरागी राम। से जन्म बैरागी सच लिव लागी अपना आप पछाणिया, मत नेचल अत गूढ़ी गुरमुख सहजे नाम खाणिया। एक कामन हितकारी माया मुहे प्यारी, मनमुख सोए रहे अपागे। नानक सहजे सेवे गुर अपना से पूरे वडभागे। वढ़ांस महला तीजा रतन पदार्थ वणजी है सतगुर दिया बुझाई राम। लहा लाभ हर भगत है गुण में गुणी समाई राम, गुण में गुणी समाए जिसे आप बुझाए। ला भगत सह सारे बिन भगती सुख ना होई, दूजे पद खोई गुरमत नाम आधार। वखर नाम सदा लाभ है जिसनु एत वापार लाए, रतन पदार्थ वणजिए जा सतगुर दे बुझाए। माया मोह सब दुख है खोटा यो वापार राम, कूड़ बोल बिगकावणी बहु वधे विकारा राम। बहु वधे विकारा सहसा यो संसार बिन नावे पद खोई, पढ़ पढ़ पंडित वाद वकाणे बिन बूझे सुख ना होई। आमन जाना कदे ना चूके माया मोह प्यारा, माया मोह सब दुख है खोटा यो वापारा। खोटे खरे

गुण छोड़ बिखल दिया अब गुण का बनजारो सदड़े आए तिना जानिया हुसते करतारो नारी पुरख विछुनिया विछड़िया मिलन हारो रूप ना जाने सोनिए हुगबदी सिरकारो बालक बिरद ना जाननी तोड़न खेत प्यारो नाउदर ठाके हुगुण सच्चे हंस गया गैनारे सातन छुट्टी मुठी झूठ विदनिया मितकड़ा अंगरड़े बारे सुरतमुई मर माइये मैरुनी दरबारे रोवो कंत मिहे लियो सच्चे के गुण सारे जाल माल जानी ना भालिया कपड़ पट अंबारे वाजे वजे सच्ची बाणिया पंच मुए मन मारे जानी विछुनड़े मेरा मरण भया त्रिग जीवन संसारे जीवत मरे सो जानिए तेरे सचड़े खेत प्यारे तुसी रोवो रोवन आई हो झूठ मुठी संसारे हो मुठड़ी तंदे तामणिया तेरे छोड़ी विदन कार कर कर कंत महेलिया रूड़े गेत प्यारे मैं पिर सच सालाना हो रैसेड़ी ना पतारे गुरमिलिया वेस पलटिया सातन सासी गारो आवो मिलो सहेली हो सिमरो सिरजन हारो बैयर नाम सुहागनी सच सुवार नहारो गावो गीत ना बिरहड़ा नानक ब्रह्म विचारो वढ़ांस महला पहला जिन जग सिरज समाया सो साहेब कुदरत जानो वा सचड़ा दूर ना पालिए काड़ काड़ शब्द पछाणो वा

अंतर सहज समाधि तिर रहया पर पूरे वेख हदूरे रंग माने सहज सुपाए जिन्नी अपना कंत पछाणिया हों तिन पूछो संता जाए।

तेत पै दे पखिस तेर रंग राता सो सच्चा चोला तेत पै दे तिखा निवारे प्रा मेरा साहिब सबदु ऊचा है क्यों मिला प्रीतम प्यारे मैं प्रभ सच पछाणिया होर फूली अवगुणियारे मैं सदा रावे तेरे अपना सचड़े शब्द विचारे।

तू करण कारण समर्थ है सह सृजनहारे जिस तू मिले प्यारिया सो तुद मिले गुरमुख विचारे हों बलिहारी सतगुर अपने जिन मेरा

प्रीत जित साहिब सेती पत रहे पौड़ी हर इको दाता सेवीए हर इक त्याईए हर इको दाता मंगीए मन चिंदिया पाईए जे दूजे पासो मंगीए ता लाज मराईए जिन सेविया तिन फल पाया तेस जन की सा भुख गवाईए नानक तिन मिट्टों वारिया जिन अन दिन हिरदै।

प्रसन्न कोई न किसी जेहा अंडज जेरज उत्कुज सेतज तेरे की तेजनता। एक पुरब मैं तेरा देखिया तू सबना महेरवंता तेरे गुण बहुते मैं एक न जानिया मैं मूर्ख किसी दीजै परमत नानक सुन मेरे साहिबा डुबदा पत्थर लीजै। सोरठ महला पहला हौ पापी पतत परम पाखंडी तू निर्मल निरंकारी अमृत चाख परम रस राते ठाकुर शरण।

प्रभाते हरसना जाप मनरे तुम साचे हम तुम ही राचे शब्द भेद फुन साचे ऐनस नाम रते से सूचे मर जन में से काचे अवर ना दिसे किस सालाही किसे सरीक न कोई प्रणत नानक दासन दासा गुरमत जान्या सोई सोरठ महला पहला अलख अपार अगम अगोचर नाथ काल न कर्मा जात जात अजोनी संपो नाथ पाओ न परमा साचे सचियार मिटो कुर्बान नाथ रूप वर्ण नहीं रेखिया साचे शब्द निशान रखाओ नाथ माद पिता सुध बंधव नाथ काम न नारी अकोल नरंजन अपर परंपर सगली ज्योत तुम्हारी कड़कड़ अंतर ब्रह्म लुकाया कड़कड़ ज्योत सबाई बजर कपाट मुक्ते गुरुमति निर्भय ताड़ी लाई जन तो पाए काल सिर जनता वस गत जुगत सुबाई सदगुर से पदार्थ पावे टूटे शब्द कमाई सूचे पांडे साच समावे विरले सूचा चारी तंते कौ परम तंत मिलाया नानक शरण तुम्हारी सोरठ महला पहला जो मीना बिन पानी है त्यों सागत मरे प्यास त्यों हर बिन मरिगे रे मना जो बिरथा जावे सास मान रे राम नाम जस ले बिन गुर यो रस क्यों लहो गुर में ले हर दे रहाओ संत जिना मिल संगति गुरमुख तीर्थ होए अड़सर तीर्थ मजना गुर दर्श प्राप्त होए ज्यो जोगी जत बारा तप नाही सत संतोख त्यों नामे बिन दिहोरी जा मारे अंतर दोख साकत प्रेम न पाईए हर पाई गे सदगुर पाए सुख दुख दाता गुर मिले कहो नानक सिफत सुमाए।

न जाने हे फिर कीच बुढ़ा ही जीव अंतर मैल लोभो झूठे बार नहावो काही जीव निर्मल नाम जपो सद गुरमुख अंतर की गत ताही जीव पर हर लोभ निंदा कूड त्याग हो सद गुरबचनी फल पाही जीव जो पावे त्यों राखो हर जीव जन नानक शब्द सलाही जीव सोरठ महला पहला पंच बदे

मन रे समझ कम मत लागा नाम सार अनस लोप हन हे पछताए अभागा रखाओ आपत को हरख जाद को रोवे ए दुसुख ना लेन लागा आपे दुसुख भोग पुगावे गुरमुख सु अनरागा हरस ऊपर अवर क्या कहिए जिन पिया सो तृप्तागा माया मोहित जिन इवरस खोया क्या साकत दुर्मत लागा मन का जियो पावन पात देही देही मैं जियो सुमागा जो तू दे हरस गाई मन तृप्ते हर ले लागा साध संगत में हरस पाई है गुर मिले जम पो पागा नानक राम नाम जब गुरमुख हर पाए मस्तक पागा सोरठ महला पहला सर्व जिया सिर लेख तुराहू बिन लेखे नहीं कोई जियो आप लेख कुदरत कर देख हुक्म चलाए सोई।

मन मेरे गुरबचनी निद पाई ताते सच मैं रहा समाई रहाओ। गुरसाखी अंतर जागी ता चंचल मत त्यागी गुरसाखी का उजियारा ता मिटिया सगल अंधियारा गुरचरणी मन लागा ता जमका मार्ग भागा

हर पाया सच सोए, मन मेरे गुर शब्दी हर पाया जाए, बिन शब्दे जग भुलदा फिरदा, दरगह मिले सजाए रखाओ। ए देही अंदर पंच चोर वसे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा, अमृत लूटे मनुख नहीं बूझे, कोई न सुने पुकारा, अंधा जगत अंध वरतारा, बाज गुरु गुबारा, ओमे मेरा कर कर विगुते, किहो चले न चल दिया नाल, गुरमुख होवे सो नाम ते आवे, सदा हर नाम समाल, सच्ची बाणी हर गुण गावे, नदरी नदर निहाल, सदगुर ज्ञान सदा कर चानन,

सब जग मछली हर आपे, आप पुल न पुल ही प्यारा, अवर न दूजा जापे, आपे सिन्नी नाद है प्यारा, तुन आप जाए आपे, आपे जोगी पुरख है प्यारा, आपे ही तवता पे, आपे सदगुर आप है चेला, उपदेश करे प्रभ आपे, आपे नाउज पाएंदा प्यारा, आपे ही जप जापे, आपे अमृत आप है प्यारा, आपे ही रस आपे, आपे आप सलांदा प्यारा, जन नानक हर स्थापे, सोरठ महला चौथा, आपे कंडा आप तराजी, प्रभ आपे तोल तुलाया, आपे सौ आपे वणजारा, आपे वणज कराया, आपे धरती साजियन प्यारे, पिछे टंक चढ़ाया, मेरे मन हर घर त्याए सुख पाया, हर घर नाम निधान।

आद एक पिता एक के हम बारिक तू मेरा गुरहाई तुण मीता जियो हमारा बल बल जासी हर दर्शन दियो दिखाई सुन मीता तूरी कौ बल जाई यो मन तेरा पाई रहाओ पा मलोवा मल मल तोवा यो मन तय को दिशा सुन मीता हो तेरी शरणाई आया प्रा मिलो देव उपदेशा मां ना कीजे शरण परिजे करे सो पला मनाई है सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पीजे क्यों दर्शन हर जियो पाई है पयो अनुग्रह प्रसाद संतन कै हर नामा है मीठा जन नानक कौ गुर कृपा थारी साब अकुल निरंजन डीठा सोरठ महला पंजवा कोल ब्रह्मण को ठाकुर स्वामी सर्व जिया का दाता रे प्रदपाले निसार समाले एक गुण मूर्ख जाता रे हर आराध

तूं दाता मांगन को सगली दान दे प्रापन खिर मैं अवर खिने मैं अवरा आचरज चलत तुम्हारे रूड़ो गूड़ो गैर गंभीरो ऊंचो अगम अपारे साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी अंध पया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी। सोरठ महला पंजवा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की सरणा संत हमारी ओर सतानी संत हमारा गहना हम संतन स्यों बने आई पूर्व लिखे पाई यो मन तेरा पाई रखाओ संतन स्यों मरी लेवा देवी संतन स्यों ब्योहारा संतन स्यों हमला खाटिया हर भगत परे पंडारा संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का धोखा धर्म राय अब कहां करे गो जो वाट्यो सगलो लेखा महा आनंद पये सुख पाया संतन कै परसादे कहो नानक हरसो मन मानिया हरंगरते विस्मादे। सोरठ महला पंजवा जेती समगरी देख

सुखदाता गुर पूरे दिया उपदेशा तुम्हें संग पराता रहाओ काम क्रोध लोभ मोह अवमहाना ता मैं सुख नहीं पाई है हो रे तू सगल की मेरे मान तो अनद मंगल सुख पाई है काल न पाने अंतर विद जान ताकि कर मन सेवा कर पूजा होम ओ मनुआ अकाल मूर्त गुरुदेवा गोविंद दामोदर दयाल माधव पार ब्रह्म निरंकारा ना वर्तन ना मुवा लेवा नाम नानक प्राण अधारा सोरठ महला पंजवा मृतक कौ पायो तन सासा विशिरत आन मिलाया पशु प्रेत मुग्ध पै स्रोते हर नामा मोह गाया पूरे गुर की देख वडाई ताकि कीमत कहन न जाई रहाओ दू सो काटायो डेरा अंध मंगल बिसरामा मन बांचत फल मिले अचिंता पूर्ण होए कामा ईहा सुख आगे मुख उजल मिट गए आवन जाने निरपो पै हृदय ना मसिया अपने सदगुर कै मन पाने उठत बैठत हर गुण गावे दुख दर्द परम भागा कौ नानक ताके पूर करम्मा जाका गुर चन्नी मन लागा सोरठ महला पंजवा रतन छाड़ कौडी संग लागे जाते कछु न पाईए पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदा त्याई है सिमरहो हर हर नाम परानी दिल से काची दे अज्ञानी हरहाओ मृत्युना अर स्वप्न मनोरथ ताकि कछ ना वडाई आराम भजन बिन काम न आवस संग न काहू जाई हो करत बिखाए अवरदा जी को काम न कीना धावत धावत न त्रिवतासिया आराम नाम नहीं चीना साध विकार विखे रस मातो असंख खते कर फेरे नानक की प्रापाए बेनंती काटो अवगुण मेरे सोरठ महला पंजवा गुण गावो पूर्ण अवनाशी काम क्रोध बिख जारे महाबिघम अगन को सागर साधु संग उधारे पूरे गुर मिट्यो परम अंधेरा पाय प्रेम भगत प्रभ नेरा रहाओ हर हर नाम निधानस पिया मंत न रहे अघाई जद कद पूर रहे हो परमेश्वर कत आवे कद जाई जब तब संजम ज्ञान तद बेता जिस मन वसे गोपाला नाम रतंजन गुरमुख पाया ताकि पूर्ण काला काल कलेश मिटे दुख सगले काटी जम की वासा कहो नांग प्रो कृपा तारी।

कर लीना मनव से अविनाशी ताको बिघन न को लागे जो सदगुर अपने रखे चरण कमल बसेर अंतर अमृत हरस जाके हर सेवा सेव प्रव्यापने जिन मन की इच्छ पुजाई नानक दाता के बलिहार है जिन पूर्ण पैज रखाई सोरठ महला पंजवा माया मोह मगर अंधियार है देव न हार न जाने जियो पिंड साजन रचिया बल अपनो कर मान मन मूड़े देख रहे हो प्रस्वामी जो करे सोई सोई जाने रहे न कछुए शानी रखाओ के बा स्वाद लो मद मातो उपजे अनक बेकारा बहु जून परम दुख पाया होमे बंधन के पारा दे किवाड़ अनक पड़दे मह पर दारा संग फक है चित्र गुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पड़दा तेरा ठाक है दीन दयाल पूर्ण दुख पंजन तुम बिन ओट न काई काढ़ लियो संसार सागर में नानक प्रभु शरणाई सोरठ महला पंजवा पार ब्रह्म हुआ सखाई कथा कीर्तन सुखदाई गुरपूरे की बाणी जप अंध करो नित प्राणी हर साचा सिमर हो पाई साध संग सदा सो पाईए हर बिसरना कब हो जाई हरहाओ अमृत नाम परमेश्वर तेरा जो सिमरै सो जीवे जिसनु कर्म प्राप्त होवे तो जन निर्मल जीवे विघ्न विनाशन सब दुख नाशन गुर